0: आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को। हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
1: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग।
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
1: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
0: क्यों?
1: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
0: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
0: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
0: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
5: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
0: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
5: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: इट्स लॉसन।
6: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
7: इट्स लॉसन।
6: डैडी व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन।

0: Hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: डैलस की जनता, क्या हाल है आप सभी के? मेरे हाल तो ठीक है. अभी पता है कौन सा टाइम है? इट इज द टाइम फॉर एबी द हिप्पी ऑन एन इवनिंग इन डैलस, ओनली हियर ऑन फनीशर रेडियो 104.9 FM. गाइस, मैं आ गई हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. आपको आवाज़ मेरी जा रही है कि नहीं? अगर है तो कॉल करके मुझे बताइए, और नहीं भी है तो भी कॉल करके मुझे बताइए. आई एम श्योर वैसे तो जा ही रही होगी, लेकिन आगे बढ़े आज का शो करें. आज हमारे पास बहुत अमेजिंग चीज़ें डिस्कस वाला करने के है. आज टुडे इज़ लाइक ए डिस्कशन डे. टुडे आज मेरे ना इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे बहुत कुछ चीज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा टुडे इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डेज वेयर वी आर जस्ट गोना हैव अ लिटिल हार्ट टू हार्ट. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी गो. पहले गाना एंजॉय करते हैं, देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर.

भाई आज का हमारा टॉपिक है कि प्यार है जिंदगी का, कि प्यार का दूसरा मतलब है धोखा, दर्द एंड बिट्रेयल. यू नो व्हाई आई एम कमिंग अप विद दिस टॉपिक? बिकॉज दीज डेज माई इंस्टाग्राम इज लिटरली फ्लडेड विथ वो जो नई स्टोरी नहीं आई है, वे दिस गर्ल शी इज एंगेज टू दिस गाय और उसने अपने होने वाले हस्बैंड की उनको धक्का मार के क्लिफ से गिरा दिया. एंड वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट अप टू द मार्क एज शी एक्सपेक्टेड, इवन दो ही इज एक्सट्रीमली वेल्थी एंड अ वेरी गुड फियॉन्से. तो हम उसके बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे. इफ़ यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल ओवर द न्यूज़ इन इंडिया एंड आई हैव जस्ट कम अक्रॉस दिस एंड आई एम लाइक, यार कैसा ज़माना आ गया है. मतलब आप किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते. अरेंज मैरिज में भी यही हो रहा है, लव मैरिज में भी यही हो रहा है. लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं बिकॉज इट्स ईजी, इट्स कन्वीनियंट. इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग एंड ओपनिंग अप एंड टेलिंग द ट्रूथ, आई फील लाइक मोस्ट पीपल आर गोइंग विद द अजम्पशन दैट किसी को धोखा दे के किसी की हत्या कर दो या फिर किसी को ऐसे गोस्ट कर दो या फिर वगैरह वगैरह इज़ सो मच मोर ईजियर देन टू जस्ट से नो, आई डोंट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो आगे बढ़ते हैं.

गाइज, कुछ लोग हुसन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि तौबा तौबा ही होता है. मतलब सीरियसली, आप अगर सोचो कितने सारे लोग, लड़के लड़कियां दोनों, दे चेज द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल बिकॉज उनकी शक्ल सूरत थोड़ी ज्यादा अच्छी थी. मे बी दे चूज द रेड फ्लैग, मे बी दे चूज लाइक दिस, आई डोंट नो, बाइकर डूड, कोई गैंगस्टर आदमी. कितने सारे तो हैं, हमारी हीरोइंस भी कम नहीं है. दे हैव ऑल्सो बिन एसोसिएटेड विद मैनी ऑफ दीज डॉन शॉन टाइप पीपल जस्ट बिकॉज यू नो उनकी शक्ल सूरत थोड़ी ठीक ठाक थी या जैसे भी है. कोई बात नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. लेकिन उसके पहले गाइज, डिनर टाइम हो चुका है. आप लोगों ने खाना खाया? नहीं खाया? अगर नहीं खाया देन प्लीज मेक योर वे डाउन टू पेज 3 ईटरी. उनके पास पता क्या है, कबाब्स है, चाट है, फ्यूजन बाइट्स है. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द मेन्यू अर्लियर टुडे, मुझे आते हुए ना बड़ी भूख लग रही थी. आई हैव दिस लाइक बोरिंग सा सैलड, लेकिन मेरा मन किया यार कुछ मज़ेदार खाते हैं. लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना सैलड ही खा लिया, नहीं तो वो ख़राब हो जाता. लेकिन अगर आप मेरी तरह नहीं है एंड यू डोंट हैव ए मील प्रेप सैलड, देन यू शुड मेक योर वे डाउन टू पेज 3 ईटरी. दे आर एट हब 121. दिस इज़ वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. तो भाई, देसी फ्लेवर विथ परदेसी परदेसी स्वाद, देसी फ्लेवर विथ परदेसी स्वाद. आई थिंक बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग, बट इट इज़ ओके. विजिट पेज 3 ईटरी एट हब 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट page3eatery.com बिकॉज दे आर परफेक्ट, वेदर इट्स ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट या फिर जस्ट अ फ्रेंडली हैंग विथ ऑल योर फूडी बडीज. ठीक है, तो लेट्स गो टू ए सॉन्ग एंड देन वी कम बैक एंड लिसन टू टॉक सम मोर.

एंड गाइज वी आर बैक. आज हम बात कर रहे हैं प्यार या धोखा या बिट्रेयल. धोखा, दर्द, बिट्रेयल मतलब प्यार का दूसरा साइड है. ठीक है, मुझे तो लगता है ये दोनों जो चीज़ है ना, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं. और हम क्यों बारे में इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही स्टोरी बार बार बार बार बार बार आ रही है. ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम आल्सो रीडिंग द स्टोरीज, लेकिन वो स्टोरी आ रही है द लव ट्रायंगल बिटवीन सिया, चेतन एंड केतन. व्हाट इज़ द आयरनी कि दोनों लड़कों का नाम भी राइम होता है, चेतन मीट्स केतन. आई डोंट नो इफ दे मेट, बट अकॉर्डिंग टू द पुलिस दे डिड मीट. सो आई विल टेल यू लिटिल मोर अबाउट दैट स्टोरी. आई थिंक इफ यू गाइज आर फॉलोइंग द न्यूज़ तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. लेकिन उसके पहले गाइस, आपको पता है क्या, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स यहाँ पे खुल चुका है. सो इफ़ यू नीड सम ज्वेलरी एंड इफ़ यू वांट टू लाइक स्पॉइल योरसेल्फ, देन यू शुड डेफिनेटली हेड डाउन टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इन फ्रिस्को. दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. मतलब दे हैव ब्यूटिफुल नेकलेसेस, ब्यूटिफुल इयररिंग्स, रिंग्स एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, एंड फाइंड द परफेक्ट पीस. अगर आपकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर आपको सैलरी मिल गई है, मैं तो उसी खुशी में जाके खरीद लेती अपने लिए. काश अगर मेरे पास उतने पैसे होते, पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं. तो जब आएंगे तब मैं ज़रूर जाऊँगी. एक्सपीरियंस दी अनमैच क्राफ्ट्समैनशिप एंड ब्रिलियंस एट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इन फ्रिस्को. एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं देन यू कैन सी द लेटेस्ट कलेक्शन अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स. वी विल टॉक मोर अबाउट द लव ट्राइंगल वेन वी कम बैक. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

गाइज, अगर आपको पता नहीं है कि ये लव ट्राइंगल कौन सी है, तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट. ठीक है, तो बेसिकली देर वॉज दिस रियली रियली यंग स्वीट सी लड़की, उसका नाम है सिया. और सिया ने ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, उसने अपना 12th भी नहीं प्रॉपरली दिया, मतलब समहाउ दे दिया. वो कोई कॉलेज नहीं जाती थी, उसने अपना कोई बेकरी का बिजनेस शुरू किया था. एंड सिया कम्स फ्रॉम दिस वेरी वेल्थी इन्फ्लुएंशियल फैमिली इन महाराष्ट्र. तो सिया की जो फैमिली जिस कम्युनिटी में थी, दे आर प्रिटी क्लोज कम्युनिटी, वो लोग अपनी कम्युनिटी के बाहर वैसे शादी वादी नहीं करते थे. तो इसीलिए उसके पेरेंट्स ने बोला कि भाई तुम तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हो, चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं, 20 ईयर्स की हो गई और ठीक है शादी की उम्र हो गई, कर लो. तो सिया ने बोला अच्छा ठीक है कर लेते हैं. तो सिया का रिश्ता तय हुआ चेतन से. विच वन वॉज इट, चेतन या केतन? एनी वेज, चेतन या केतन में से किसी का उसका अरेंज मैरिज शुरू हुआ. ठीक है, एंड वहाँ पे बोथ द फैमिलीज मेट, दोनों को पसंद आ गए. एंड दिस गाय जो उसका मंगेतर था, हर फियांसे, अरेंज मैरिज वाला, ही वॉज अपेरेंटली दी ओनर, और ही वुड इनहेरिट बेसिकली ऑलमोस्ट 600 करोड़ वर्थ ऑफ यू नो प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड एवरीथिंग. हिज नेटवर्थ एंड हिज एंटायर फैमिली वॉज 600 करोड़. सो सिया ने बोला कि हाँ बड़ी अच्छी फैमिली है, शादी वादी होगी. ये बंदा US से अपना MBA वगैरह करके आया था, एंड ही वॉज रनिंग हिज फैमिली बिजनेस. एंड देन यू नो एवरीथिंग हैपेंड. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म, जैसे हम साथ साथ हैं में अरेंज मैरिज नहीं देखते हम लोग, वैसी वाली, बिल्कुल वैसी एकदम अरेंज मैरिज हुई. दे वर प्लानिंग टू बुक आउट जयपुर का एक बड़ा सा पैलेस जिसमें उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी वगैरह वगैरह. आगे जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसके पहले ये गाना.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहाँ हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग है।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
16: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
17: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
19: And guys, गाइज वी आर बैक भाई 7:30 बज चुके हैं एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू फन एजर रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज योर बेस्टी इपी द हिपी एंड वी आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस. लेकिन आज डैलस की बातें कम, आज हम थोड़ी बातें करेंगे लिटिल बिट ऑफ यू नो प्यार, रोमांस, दर्द और धोखा. तो लाइक आई वाज सेइंग, अगर आपने पहले वाला बिट सुना है, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस लव ट्रायंगल व्हिच इज ऑल ओवर माय इंस्टा दीस डेज. इट्स अबाउट सिया, चेतन एंड केतन. ओके, सो हु आर दीस पीपल? सिया वाज द डॉटर ऑफ दिस रियली वेल्थी फैमिली इन पुणे एंड देन केतन वाज हर फियांसे आल्सो फ्रॉम दिस सुपर वेल्थी सुपर ट्रेडिशनल फैमिली इन पुणे. दे वर बोथ अबाउट टू गेट मैरिड और चेतन जो था वो सिया का साइड पीस था बेसिकली. आई मीन ही वॉज हर लवर, यू नो. लेकिन उसके बाद भी सिया ने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दी टू चेतन, सॉरी टू केतन. अरे नाम इतने दोनों सिमिलर है ना, कन्फ्यूज होता था कई बार. तो बेसिकली स्टोरी ऐसा होता है कि दे बोथ कम फ्रॉम दिस सुपर वेल्थी फैमिली, अरेंज मैरिज होती है. सिया कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं करी होती है. केतन जो है वो US से अपना MBA करके लौटता है टू पुणे टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली बिजनेस एंड उसके बीच में इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है. सिया लाइक्स ऑल द अटेंशन, ऑल द फ्लावर्स, ऑल द लव दैट केतन वॉज शावरिंग ओवर हर. इन फैक्ट सिया ने केतन से 1 करोड़ भी लिए थे फॉर वेडिंग शॉपिंग और केतन ने आंखें बंद करके उसे बोला कि ये ले भाई, तू जा, तू शॉपिंग कर, तुझे जो खरीदना है, मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा खरीदना है, सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा खरीदना है, तू जा खरीद. एंड सिया टुक द मनी बट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन हर ओन वेडिंग शॉपिंग उसने वो पैसे अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए जिसने अपना करियर बढ़ाने के लिए उसको यूज किया. OMG, लुक एट द स्कूप. एक गाना सुनते हैं, आगे आते हैं एंड देन वी विल लिसन टू सम मोर ऑफ व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी.

ऑलराइट गाइस, वी आर बैक। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपने कभी यू नो हैव यू एवर बीन स्टक इन सम काइंड ऑफ अ कार एक्सीडेंट या कोई भी ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट? भाई देन यू नीड टू कॉल समबडी हु नोज दिस स्टफ रियली रियली वेल, बिकॉज खुद से ये सारा डील करना ना, आई हैव डन इट एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एंड उस टाइम पे जब आपकी गाड़ी टूटी फूटी होती है, यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द हाईवे, कोई आपको बोल रहा है भाई मैं आपको मसाज दे दूंगा, प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दो, मेरे पास मेरे इंश्योरेंस पेपर्स नहीं है, ऐसे नहीं होता है। यू नीड समबडी रियल हु कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ केस। दैट्स वाई ओमर ख्वाजा कम्स इन टू द पिक्चर एंड ही विल हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन यू डिजर्व। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज पता क्या कहती है, वो कहती है नहीं ये आपकी फॉल्ट थी, जो भी है तो हम लोग इसमें कोई आपको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, एंड इट कैन बी सुपर स्ट्रेसफुल। सो ओमर ख्वाजा इज गोन अ टॉक टू योर इंश्योरेंस कंपनी एंड ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू एक्चुअली विन। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो सिया और इसकी स्टोरी में हुआ क्या? सिया और उसके एंगेजमेंट, उसकी जो फियांसी थी, फियांसे था केतन, उसके बीच में हुआ क्या? तो केतन वॉज अ वेरी वेरी नाइस बॉय, बट केतन की प्रॉब्लम पता है क्या थी? केतन वॉज स्लाइटली यू नो गोइंग बॉल्ड बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। तो फिर भी सिया ने बोला, उसकी फैमिली ने बोला, बेटा देखो ये सर के बाल बाल तो आते जाते रहते हैं, बाद में विग पहन लेगा, जो भी है। विग वो वैसे भी पहनता था अकॉर्डिंग टू सिया, सर पे वो टूपे लगाता था, एक वो छोटा सा वो हेयर पीस नहीं आता, तो वो सिया को अपेरेंटली पसंद नहीं आया। प्लस सिया किसी और बंदे को भी चाहती थी और उसका नाम था चेतन। चेतन क्या करता था? लेकिन चेतन अपना रियल एस्टेट का बिजनेस कोश संभाल रहा था, अपनी कोशिश कर रहा था। उसकी साइड में एक रियल एस्टेट की ऐसी दुकान थी, वॉज अ ब्रोकर बेसिकली एंड नॉट वेरी वेल ऑफ ऑनेस्टली। तो इन लोगों ने डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ सिया टेलिंग हर पेरेंट्स स्ट्रेट अवे टू हर फेस कि भाई मम्मी पापा मुझे ना चेतन से प्यार है, मुझे केतन से नहीं प्यार है, उसके पैसे से भी मुझे प्यार नहीं है, मुझे ना चेतन से प्यार है, वो डूड लगता है बंदा, उसके बाल इतने अच्छे हैं, वो जिम जाता है, ही इज़ अ मच बेटर लुकिंग गाय एंड आई एम अ 20-year-old गर्ल हु कैन नॉट लुक बियॉन्ड हर हॉर्मोन्स एट दिस पॉइंट। आई मीन ऑफकोर्स शी इज़ नॉट गोना से दैट, बट यू नो ऑनेस्टली इफ यू थिंक अबाउट इट दैट्स वॉट प्रॉबेबली इट वॉज। एंड शी बेसिकली डिसाइडेड कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगी और वो शादी नहीं तोड़ेगी, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी। प्लस शी वॉज इन्जॉइंग द अटेंशन एंड द मनी एंड द प्रिंसेस ट्रीटमेंट दैट केतन वॉज गिविंग हर, तो क्यों वो शादी तोड़े, है ना? तो इसीलिए उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर बाद में बताती हूँ।

तो हुआ ये कि सिया का 20th बर्थडे आया। उसके पहले तक सिया केतन से बहुत पैसे ले रही थी, अराउंड क्लोज टू 1 करोड़, सो शी कुड फंड हर बॉयफ्रेंड्स बिजनेस बेसिकली। तो केतन उसको पैसे दे रहा था एंड ही वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग इट एंड शी वॉज एन्जॉइंग द अटेंशन टू। फिर सिया का 20th बर्थडे आया एंड केतन डिसाइडेड कि महाबलेश्वर में एक होटल या रिजॉर्ट के पूरे 31 कमरे वो बुक करके दे'ल कॉल ऑल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सेलिब्रेट सियाज 20th बर्थडे। ओके, एंड इट वॉज सो ग्रेट। आप अगर खोलोगे ना अपना इंस्टाग्राम, यू विल सी ऑल दीज वीडियोज ऑफ यू नो ही इज ऑन हिज नीज एंड ही इज गिविंग हर फ्लावर्स एंड यू नो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट, एवरी गर्ल्स ड्रीम एट दिस पॉइंट, यू नो। तो वो कैसे मना करेगी उसको? वो मना ही नहीं कर पाएगी। पेरेंट्स का प्रेशर तो अलग बात था, वो खुद ही नहीं मना कर पाएगी। तो फिर उसने डिसाइड किया महाबलेश्वर में पूरा होटल रूम बुक करके, होटल ही पूरा बुक करके, नॉट जस्ट रूम, पूरा होटल बुक करके, दी ही विल कॉल ऑल सियाज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं, दे विल हैव लाइक दिस बिग वीकेंड पार्टी, पूरे वीकेंड में पार्टी करेंगे। लेकिन सिया वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, वी नीड टू गो टू दिस फोर्ट कॉल्ड लोहारगढ़ फोर्ट, आई वॉन्ट टू डू अ बर्थडे ट्रैक बिकॉज आई एम वेरी एडवेंचरस लाइक दैट, सो लेट्स ऑल डू अ ट्रैक। तो सिया बेसिकली इंसिस्टेड केतन की लेट्स डू अ ट्रैक। तो केतन ने बोला चलो ठीक है वट एवर। बहुत सारे स्टेप्स थे, इट ऑलमोस्ट लाइक 400 फीट और समथिंग। दे क्लाइम्ड अप क्लाइम्ड अप क्लाइम्ड अप एंड गेस वॉट हैपन्स, वहाँ पे खड़े होके वंस दे रीच द टॉप ऑफ दैट फोर्ट, दे स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स, एकदम एज के पास जाके फोटोज वगैरह ले रहे थे। उसके बाद आई विल टेल यू वॉट हैपन्स आफ्टर दैट, आफ्टर दिस सॉन्ग। आई एम श्योर केतन वॉज सिंगिंग दिस फॉर हर।

तो सिया एंड केतन फाइंड देयर वे टू दैट ट्रैक लोहारगढ़ फोर्ट, और वो लोग 400 फुट ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ते चढ़ते फिर वहां पे फोटोज खींचते खींचते समहाउ केतन का पैर फिसल जाता है एंड ही फॉल्स इनटू द खाई, एकदम सीधा फट से नीचे एकदम करके, एंड ऑब्वियसली ही डज नॉट सर्वाइव, अनफॉर्चुनेटली ही पासेस अवे। एंड ऐसे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं, 4 days go, मातम का माहौल छाया रहता है, एवरीबडी इज क्राइंग, दिस बॉय इज ओनली लाइक 26 years ओल्ड, यू नो ही इज सो यंग, उसकी शादी होने वाली होती है, सिया भी बहुत रोती है, यू नो शी इज लाइक शी इज पुटिंग ऑल दीज लाइक इमोशनल मैसेजेस एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, एंड शी इज लाइक ओ वाई डिड यू लीव मी लाइक दैट, वी हैवेंट इवन स्टार्टेड आर लाइफ टुगेदर, ऐसे ऐसे करके ना उसने बहुत सारे ऐसे इमोशनल पोस्ट डाले, फोटोज डाली, एंड बेसिकली एवरीबडी थॉट दैट येस शी इज एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी वेरी वेरी सैड। लेकिन आफ्टर द अंतिम संस्कार, जब केतन की बॉडी को जला दिया जाता है, शी इज स्टिल कॉन्स्टेंटली विजिटिंग केतन्स फैमिली, यू नो शी इज ऑफरिंग हर सपोर्ट, और मतलब उसकी मम्मी पापा से जाके मिल रही थी वो रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे शी इज लाइक ऐसे ऐसे करके। समहाउ केतन की जो बहन थी शी कुडंट डाइजेस्ट द स्टोरी बिकॉज शी वॉज लाइक माई ब्रदर वॉज इन द कब स्काउट्स एंड ही नोज हाउ टू ट्रैक एंड ही वॉज वेरी एडवेंचरस, देर इज नो वे ही इज गोइंग टू स्लिप एंड फॉल जस्ट लाइक दैट फ्रॉम अ माउंटेन, ही इज नॉट दैट मतलब स्टूपिड कि वो खाई के कोने में जाके इतनी फोटो लेगा कि और उसके पैर ऐसे फिसल के जाएंगे, इतना तो कमजोर भी नहीं कि हवा का इतना तेज झोंका आया और वो उड़ता हुआ चला गया मतलब खाई के नीचे, नहीं हुआ ना ऐसा, ऐसा नहीं होता है। तो शी केप्ट आस्किंग सिया अ लॉट ऑफ फॉलो अप क्वेश्चंस, हर बारी वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रही थी, सिया कुछ और नई स्टोरी बनाती थी एवरी टाइम शी वुड आस्क, दैट्स वेन दे ऑल स्टार्टेड डाउटिंग सिया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो चक्कर है इसमें, इसको थोड़ा और पता करते हैं।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
5: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी।
10: आर यू गेटिंग द बेस्ट वैल्यू ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस और एन्युइटी नीड्स? एट shopcompareinsure.com, वी हेल्प यू कंपेयर ऑप्शंस फॉर टर्म लाइफ, होल लाइफ, IUL एंड गारंटीड इनकम एन्युइटीज फ्रॉम हाईली रेटेड कैरियर्स, सो यू कैन चूज कवरेज दैट फिट्स योर गोल्स एंड बजट। नो प्रेशर, नो कंफ्यूजन, जस्ट स्मार्ट चॉइसेस।
8: विजिट shopcompareinsure.com टू गेट स्टार्टेड। कॉल 4697893603. दैट्स shopcompareinsure.com, योर 360 इंश्योरेंस सॉल्यूशन।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल jewelry, men's and kids wear.
15: Wait, na sab aur price?
4: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
16: Main hero in hoon.
17: Hari chota sa mero madan gopal.
18: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
19: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में? सब संभाल लेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: तो गाइस मैं आपको वो स्टोरी बता रही थी, लेकिन अभी स्टोरी पे थोड़ा सा हमें पिन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम तो है गिव अवे का. आपको पता ही है 8 बजे हमारा होता है द कॉपी कैट गेम. तो अगर आपने पहले नहीं खेला है देन यू शुड नो व्हाट दिस गेम इज ऑल अबाउट. तो मैं एक बार और बताती हूँ. आई विल प्ले ए सॉन्ग फ्रॉम एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. हम देखते हैं कितने दिनों तक हम ये गेम खेल पाए, मतलब इतने कॉपी कैट गाने होंगे कि भी नहीं होंगे, हैं कि नहीं होते हैं. पता नहीं क्या हो रहा है मेरी भाषा को, मेरे वर्ड्स आज स्लर हो रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कुछ पीके पाके नहीं आई हूँ. मैं सिर्फ यहाँ पे लेमनेड पी रही हूँ, FYI, जस्ट सो यू नो. लेकिन आगे बढ़ते हैं. सो द गेम इज बेसिकली यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. और अगर आप थोड़ा सा गा भी देंगे तो आपको स्पेशल प्यार वाले पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड. तो लेकिन गिव अवे है क्या? आवर फर्स्ट गिव अवे फॉर टुडे इज ए ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर दाल मखनी फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ओनली. प्लीज मेक श्योर आपने पिछले एक महीने में ये गिव अवे नहीं जीता है, नहीं तो इट्स अनफेयर टू द अदर पीपल. एवरीवन शुड गेट अ चांस टू यू नो ट्राई एंड विन दिस गिव अवे. एंड बस इतना ही है. माई नंबर इज 972-235-5555 एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू एन इवनिंग इन डैलस विथ मी इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. तो विदाउट फर्दर अडू खेलते हैं ये गेम. तो ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका बॉलीवुड कॉपी आपको बताना पड़ेगा.

0: caller. Hi, can you hear me?
1: Hi.
0: Hi, can you hear me?
1: Yeah, I can hear you. Can you hear me?
0: Okay, yes. First, tell me your name and then tell me the
1: My
0: correct answer.
1: name is Jatin.
0: Hi, Jatin. Okay, do you have the answer?
1: Yeah,
0: Go for it.
1: अक्सर दुनिया में अनजाने नज़रें
0: Very good, तालियां! आप जीत चुके हैं फ्लेवर लाउंज का ये गिव अवे. यू आर द फर्स्ट कॉलर एंड यू हैव वन. तो आप थोड़ा गा भी दीजिए भाई हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए. एक लाइन, दैट्स इट.
1: अक्सर इस दुनिया
0: दुनिया
1: में
0: में अनजाने मिलते हैं. दैट्स राइट. ओके जतिन, स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन, लेकिन तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए जो कॉपी बन चुका है. ओके जतिन, यू स्टे ऑन द
1: श्योर
0: लाइन.
1: या थैंक यू.

भाई आई होप केतन को भी सब लोग याद कर रहे हैं। हम तो याद कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्टोरी हम बोल रहे थे। तो बेसिकली केतन का पैर फिसल जाता है और फिर सिया ऐसे स्टोरी बनाती है कि उसका पैर फिसल गया था, हवा का बड़ा तेज झोंका आया और उसका बैलेंस छूट गया एंड ही फेल डाउन। लेकिन 4 दिन बाद आफ्टर रिपीटेड क्वेश्चनिंग केतन की बहन से, सिया के वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए। ठीक है, उसकी स्टोरी हर बार कुछ अलग सी थी। देन उसकी बहन को डाउट हुआ केतन की सिस्टर को, तो केतन की सिस्टर ने अपने फादर को बताया और फादर ने सीधा जाके पुलिस से कांटेक्ट किया। देन गेस व्हाट गाइस, फिर जाके पता चला दैट देयर इज समथिंग फिशी इन दिस इंटायर स्टोरी। मतलब समथिंग इज रियली कुकिंग ओवर हियर। तो क्या हुआ, द पुलिस, आई मीन आज के ज़माने में भी पीपल थिंक दैट दे कैन डू अ क्राइम लाइक दैट एंड गेट अवे विद इट विद सो मच ऑफ इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी दैट्स हैपनिंग। इट्स वेरी रेयरली यू दैट यू कैन रियली गेट अवे विद समथिंग एज ग्रेव एज लाइक अ मर्डर ऑफ समवन, यू नो। तो उसने क्या किया, सिया और उसने उसके जो बॉयफ्रेंड था चेतन, उन लोगों ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया कि समहाउ दे आर गोइंग टू बेसिकली फिनिश ऑफ केतन एंड देन आफ्टर 3 ईयर्स देन चेतन एंड सिया विल गेट मैरिड। तब तक चेतन का भी करियर सेट हो जाएगा, ये केतन की स्टोरी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी एंड देन दे विल बी यू नो फ्री टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग। लेकिन उसको अपने, मतलब सिया डिंट हैव इतना करेज कि अपने घर वालों को जाके बताया कि भैया मुझे इससे शादी नहीं करनी है, आई लाइक समबडी एल्स और आई लव समबडी एल्स। उसको उतना करेज नहीं था, उसको अपनी फैमिली की रेपुटेशन नहीं बर्बाद करनी थी, तो इसीलिए उसने मर्डर ही कर दिया। घर वालों को बताने की जगह शी थॉट इट वॉज ईजियर टू मर्डर हर फियॉन्से इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन टू हर फैमिली, क्योंकि फैमिली की बदनामी होती क्योंकि शादी बीच में टूट चुकी होती। आई मीन आर वी स्टिल लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड? बट वॉट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? देर इज सम मोर डिटेल्स टू दिस स्टोरी विच आई विल टेल यू एज टू हाउ द पुलिस एक्चुअली फाउंड आउट कि सिया एंड चेतन वर इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। बट तब तक के लिए ये गाना सुनिए।

सो देन देयर वर अदर थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग जिसको लोगों को आइडिया भी नहीं था. फॉर इंस्टेंस व्हेन केतन वाज स्टिल अलाइव दे हैड प्लान्ड लाइक अ प्री वेडिंग फोटोशूट इन थाईलैंड और समवेयर. तो इन लोगों ने सब डिसाइड किया कि केतन, केतन की सिस्टर सिया एंड केतन की सिस्टर के हस्बैंड, ये सारे मिलके जाएंगे टू थाईलैंड एंड दे विल डू अ प्री वेडिंग फोटोशूट. यू नो जो लोग करते हैं बीच बीच में खड़े होकर फोटो वगैरह लेते हैं एंड ऑल दैट, वेरी रोमांटिक, वेरी नाइस. लेकिन वहाँ पे वंस दे रीच्ड द एयरपोर्ट देन दे रियलाइज केतन का पासपोर्ट तो गायब. सबका पासपोर्ट है लेकिन समहाउ केतन्स पासपोर्ट विच वॉज इन हिज बैग द होल टाइम सडनली इट वैनिश्ड एंड दैट टाइम नोबडी फिगर्ड आउट हाउ इट वैनिश्ड और वाई इट हैपेंड और एनी थिंग लाइक दैट. ऑल द न्यू इज उसका पासपोर्ट वहाँ से गायब हो गया एंड देन दे कुडंट डू द ट्रिप एनी मोर. तो उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं. तब तक के लिए एंजॉय द सॉन्ग.

Well, I don't know about you guys, but this girl definitely likes to swing between her men. I mean, come on. Kabhi Ketan, kabhi Chetan. भाई लास्ट के तीन डिजिट्स वो तीन लेटर्स मैच करने चाहिए, है ना? इसके इसकी स्टोरी से तो वैसे ही लग रहा है. तो एनीवेज फिर हुआ ये कि सिया ने ऐसे सोचा कि ऐसे पासपोर्ट वगैरह छुपा देंगे, फिर वो गई नहीं प्री वेडिंग शूट पे. तो उसके बाद प्री वेडिंग शूट के बाद

की स्टोरी से तो वैसे ही लग रहा है. तो एनीवेज फिर हुआ ये कि सिया ने ऐसे सोचा कि ऐसे पासपोर्ट वगैरह छुपा देंगे, फिर वो गई नहीं प्री वेडिंग शूट पे. तो उसके बाद प्री वेडिंग शूट के बाद जब वो कैंसिल हो गया तो फिर वो होटल का बुकिंग हुआ, महाबलेश्वर का वगैरह वगैरह हुआ. तो ऐसे करके समहाउ सिया वॉज एबल टू गेट अवे विद इट. लेकिन जब केतन के पेरेंट्स ने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया, द पुलिस वॉज वेरी क्लेवर. दे यूज दिस GPS ट्रैकिंग एंड समथिंग, दे विद दैट दे वर एबल टू फिगर आउट कि दे वर एबल टू फाइंड सम CCTV वीडियोज ऑफ द फोर्ट एंड दे नोटिस देर वॉज दिस काली परछाई वॉकिंग बिहाइंड दैम द होल टाइम. इतनी गर्मी में, जहाँ पे लोग इतनी गर्मी में मतलब पानी वानी लेके जा रहे हैं, दे आर क्लाइंबिंग द फोर्ट, एक बंदा वहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का हुडी डाल के एकदम पूरा कवर्ड टॉप टू बॉटम, सन ग्लासेस डाले हुए, बड़ा सा हेडफोन डाला हुआ करके इनके पीछे पीछे जा रहा है. ही इज वॉकिंग. और हर बारी सिया मुड़ती है तो वो बंदा बैठ जाता है. हर बारी सिया टर्न्स अराउंड दिस गाय सिट्स डाउन. सो देन दे फिगर्ड आउट कि अच्छा इससे तो यू नो दिस इज समथिंग, दिस इज गॉट टू बी रिलेटेड. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे वर एबल टू फिगर आउट द हाइट एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ दैट पर्सन. एंड देन दे वेंट टू सियाज इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फिगर्ड आउट द पर्सन हु मैचेज द क्लोजेस्ट टू दैट डिस्क्रिप्शन. That's how they were able to figure out Chetan, जो सिया की नेबरहुड में ही एक छोटी सी दुकान में he used to work, but who was starting his real estate की broker वाली like business. And सिया ने और चेतन ने ये mastermind plan बनाया to finish off केतन and then pass it off as an accident. आज के ज़माने में भी people are afraid to come up clean to their parents to express कि भाई मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी है. इंस्टेड वो दे फाइंड इट ईजियर. उसके बाद ना इतनी जो सारी ये चीज़ें हुई, देर आर लॉट ऑफ कॉमेंट्रीज उसके बाद भी. आई फील लाइक देर आर सो मेनी साइकोलॉजिस्ट हुव सेड कि दिस इज़ लाइक ए मेंटल डिसऑर्डर, थिंकिंग दैट समहाउ मर्डरिंग समवन इज़ वेरी ईजियर देन कमिंग क्लीन टू योर पेरेंट्स. बट आई फील लाइक जितना हमारा डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे बढ़ता जा रहा है, our social interactions have reduced so much in life that it's often easy to just take a drastic measure instead of just learning the art of conversation and just communication. And that applies not just to Sia's story but to everything. I feel like people don't even want to break up aaj ki date pe. Log ghost kar dete hain, people become avoidants, people just avoid the whole conversation and expect ki chalo dheere dheere it'll pass, you know. So that is my opinion. आगे गाना सुनते हैं and then we'll come back and talk some more.

0: गाइस वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अगर आपको अपने टैक्सेस के बारे में कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, देन दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स। दे ऑफर इनोवेट।
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
3: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: इट्स लॉसन।
3: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
4: इट्स लॉसन।
3: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
5: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 2146312458। द ट्रेवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रेवल।
6: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
9: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
0: All right, guys, we are back and you are listening to me, Ippy the Hippie on Phoenicia Radio 104.9 FM. भाई अभी इसके पहले हम सिया, केतन और चेतन के लव ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे एंड आई गॉट अ कॉल अर्लियर जिन्होंने मुझे बोला भाई मैं आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दैट केस एंड ही सेड दैट इट वॉज बेसिकली लाइक बाजीगर स्टोरी. मतलब बाजीगर तो 90s में आई थी मूवी, याद है, जिसमें एटलीस्ट शाहरुख खान हैड अ मोटिव उसको मारने के लिए. आई मीन टू यू नो मर्डर शिल्पा शेट्टी, ही हैड दिस लाइक बदले वाली मोटिव. इसका क्या मोटिव था? इसका ये मोटिव था कि उसको किसी और से प्यार था और उसे गंजे वाले, किसी गंजे से शादी नहीं करनी थी. मतलब बिकॉज हर फियांसे वोर अ टूपे, दैट्स व्हाई शी डिड नॉट टू गेट मैरिड. आई मीन हाउ सिली इज दैट, वन. एंड टू, आई अंडरस्टैंड द फैमिली प्रेशर ऑल्सो. आई मीन ठीक है, देर आर सम कम्युनिटीज स्टिल दैट आर वेरी वेरी ट्रेडिशनल इन इंडिया एंड साउथ एशिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे एरिया में काफ़ी ऐसे हैं कम्युनिटीज. बट थैंकफुली आई डोंट बिलोंग, आई मीन आई, माई फैमिली इज़ वेरी वेरी लिबरल. माई फैमिली में माई सिस्टर, she got married to a Greek person who is an Australian, Aussie geek, Greek. And then my cousin, he got married to a Filipino girl. And one more buaji of mine got married to a British person. So my family is very global like that. So thankfully, I'm really grateful that my family is so liberal. But not all families are liberal. There are still communities which are very, very traditional. So what can we do? Such is life.

गाइस 8:30 हो चुका है। 8:30 तो 9 मिनट पहले बज चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी हूँ आपके साथ। और अभी टाइम है दूसरे गिव अवे का। आपको शायद पता ही होगा, इस हफ्ते हम दो दो गिव अवे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने दो दो गिव अवे किया था, इस हफ्ते भी दो दो गिव अवे कर रहे हैं। तो गेम सेम है, आई विल प्ले अ सॉन्ग एंड यू हैव टू टेल मी द कॉपी ऑफ दैट। हाउ एवर, आज का हमारा थोड़ा सेगमेंट हल्का सा अलग है। वो क्या है, इंस्टेड ऑफ मी प्लेइंग यू अ सॉन्ग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन यू टेल मी वॉट इज द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट, क्योंकि ये बॉलीवुड कॉपी जो है तो बॉलीवुड कॉपी वैसे, लेकिन थोड़ा यूनिक सा है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा फ्लिप करेंगे इसको। तो आई विल प्ले यू द बॉलीवुड सॉन्ग एंड यू आर गोना हैव टू टेल मी द ओरिजिनल सॉन्ग। इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। इफ यू नो, इफ यू आर फैंस ऑफ टॉम क्रूज, यू विल गेट इट। ओके, लेकिन गिव अवे है क्या भाई? गिव अवे इज फ्रॉम द फन पिज्जा किचन। अगर आपको देसी स्टाइल पिज्जा पसंद है, यू नो, अचारी पनीर या फिर तंदूरी चिकन पिज्जा स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स, देन फन पिज्जा किचन इज वेयर यू नीड टू गो, बिकॉज दे हैव दैट बिल्कुल देसी वाले फ्लेवर। पुट इट ऑन अ ब्यूटिफुल क्रिस्पी चीजी मेल्टी पिज्जा राइट देयर, एंड दिस इज फॉर यू गाइज टू एंजॉय। मैंने कुछ दिनों पहले फन पिज्जा किचन से अपना पिज्जा ट्राई किया था एंड इट वॉज सो गुड गाइज, यू हैव टू गो गिव इट अ ट्राई। तो आप जीत सकते हैं आफ्टर दिस गिव अवे ए $10 गिफ्ट कार्ड। दैट इज राइट, एंड दिस इज वैलिड ओनली एट द फ्रिस्को लोकेशन। तो गेम खेलें? आई एम गोना प्ले यू द बॉलीवुड सॉन्ग दिस टाइम, नॉट द हॉलीवुड सॉन्ग, द बॉलीवुड सॉन्ग, एंड यू हैव टू टेल मी द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन फ्रॉम विच मूवी इट इज टेकन। थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इट्स नॉट दैट ट्रिकी, इट्स वेरी इजी, सो यू विल गेट इट, आई एम श्योर यू विल गेट इट। तो आर वी रेडी? चलो इसको थोड़ा सा खेलते हैं, एंड जस्ट बी पेशेंट, लिसन टू द ट्रैक। ऑफकोर्स इट इज बाय द वन एंड ओनली अनु मलिक जी, द मोस्ट फेमस पर्सन नोन फॉर ऑल द रिप ऑफ्स इन द वर्ल्ड।

0: Okay, ready? Here we go. Come on. And we have our first caller. Hi. Can you hear me?
1: Hi, this is Srikant.
0: Hi, Srikant. How are you? Do you have the correct answer?
1: Yeah, ye movie cough se hai.
0: मूवी तो खौफ से है लेकिन व्हाट इज द हाँ व्हाट इज द ओरिजिनल हॉलीवुड मूवी जिसका थीम सॉन्ग लिया गया था दैट्स माय क्वेश्चन
1: ओहो ओरिजिनल आई थॉट यू आर आस्किंग द मूवी फ्रॉम दिस
0: कम ऑन यू नो द सॉन्ग नहीं
1: ओरिजिनल इसका ये कॉपीड है क्या
0: हाँ
1: ओके
0: नहीं कोई बात नहीं आई विल टेक अ डिफरेंट कॉल
1: ओके नो
0: वरी थैंक्स फॉर कॉलिंग दो हाय यू आर ऑन एयर थैंक यू फॉर कॉलिंग
2: यस द आंसर ऑफ द सॉन्ग इज सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज मिशन इम्पॉसिबल एंड इट्स माय फेवरेट थिंग यू नो मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ मैं फर्स्ट फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल का गाना
0: आई नो
2: इट्स सो फनी So funny, yeah, perfect.
0: I just came across this track and I was like, यार ये तो डालना पड़ेगा पर इसका question हम थोड़ा घुमा देते हैं Normally it's the other way around, but I don't think anybody knew the cough वाला song, तो इसीलिए मैंने उल्टा कर दिया इसको But congratulations. Tell me your name.
2: My name is Shweta.
0: Shweta, okay, stay on the line. I'm just going to quickly play one song and then I'll you stay online and then I'll take your information. Okay.
2: So I'm staying.
0: Okay, yeah, just stay on the line. All right, friends, okay. You enjoyed this song and I will talk to Shweta in the meantime.

0: लव
1: गाइस, वी आर बैक। तो भाई कल मैं जो हूँ मैं नहीं होने वाली हूँ आपके साथ। नॉर्मली आई एम हेयर विथ यू मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM, बट टमोरो आई एम टेकिंग अ छुट्टी बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू गो टू अ कॉन्सर्ट। हाउ एवर ड्यू टू लो टिकट सेल्स दैट कॉन्सर्ट गॉट कैंसल्ड एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन। तो इसीलिए आई थिंक यू नो व्हाट आई एम गोना डू, आई थिंक आई एम गोना गेट होल्ड ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई एम गोना गो वॉच कॉकटेल 2। आपने देखी अभी तक कॉकटेल 2? नहीं देखी? तो यार कॉकटेल 2 के तो हम फ्री में टिकट्स भी बांट रहे थे लास्ट वीक। अगर यू वर द लकी वन एट एनी ऑफ दीज लोकेशंस इन प्लेनो, फ्रिस्को या अर्विंग, देन आई एम श्योर यू मस्ट हैव प्लेड द गेम एंड गॉट सम फ्री टिकट्स टू द मूवी। बट इन केस यू हैवंट, देन यू शुड गो चेक इट आउट एट एनी ऑफ द थिएटर्स नियर यू। द ड्रामा रोमांस एंड फ्रेंडशिप अ बैक विथ ए फ्रेश ट्विस्ट। भाई लव ट्राइंगल की बात कर रहे थे, कॉकटेल 2 ऑल्सो हैज ए ब्यूटिफुल लव ट्राइंगल। आई डोंट नो इफ इट्स ब्यूटिफुल और नॉट, बट एट लीस्ट इट इज अ लव ट्राइंगल। एक्चुअली let's take the word beautiful out and let's put complicated in it. The movie is funny, the movie is entertaining, as I have been told by a lot of my friends. So you should go check it out. It features Shahid Kapoor, Kriti Shannon and Rashmika Mandanna. New story, new emotions, a brand new cocktail of love, friendship and heartbreak awaits you. Don't miss Cocktail 2 in theaters. So this song goes out to Zimran. Congratulations on your new car. And Zimran, since you requested for the song from Cocktail 2, this is for you.

गाइज दैट वॉज आज की रात कोई आने को है. वैसे तो गाना बहुत पुराना है. दैट वॉज री इमेजिंड एंड रीअरेंज्ड बाय माइकी मैक्लियरी, द गाय हु ऑल्सो कम्पोज गर्ल्स लाइक टू स्विंग एंड अ बंच ऑफ अदर ट्रैक्स विच आर वेरी वेरी पॉपुलर. आपने सुना ही होगा उनके बहुत सारे गाने आर नाउ वेरी पॉपुलर. बट द वीडियो फीचर्स शालमली खोलगड़े, हु इज ऑल्सो रियली फेमस बॉलीवुड सिंगर. And the storyline of this video in the background is actually similar to the story that we just shared. Anyways, आगे बढ़ते. Hey, that was my second anyways, you guys. I think I'm winning this game. Let's play you a different song.

नशे में जो मैं नैन, ना आना चाहे होश में, नशे में बेचैन, गलती ना कर दे। नशे में है नैन, ना आना चाहे होश में, नशे में बेचैन, गलती ना कर दे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335. Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.

0: minutes is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: Guys, kuch time pehle, I was telling you the story of Sia, Chetan and Ketan. You know, the love triangle and not being truthful with the parents. And matlab, it's easier to give somebody dhoka and kisi ko, you know, kisi ka murder kar dena is so much more easier than to actually coming clean and telling them that, hey, I do not enjoy you. I don't dig you. I don't want to get married to you. But rather, I will not say this and I would go ahead with the wedding. And then uske baad jo bhi hai, aise dekhenge. Aisi ek aur story hai, jo exactly itni gori to nahi hai. Matlab, it's not that bad. There was no murder, thankfully. But this is, it's not my story, but it is a story of somebody that I personally knew very, very well. To, ye jo person hai, iska hum naam dete hai, Mr. X. To Mr. X जो था वो कॉलेज में एक बंदी से उसको बहुत प्यार हो गया, लेकिन बंदी की फैमिली बड़ी ट्रेडिशनल थी, वो हरियाणवी थी, ये था बंगाली. तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम शादी पे, लड़की की फैमिली ने बोला हम शादी नहीं मान सकते, अब हम जाट फैमिली हैं, ये बंगाली फैमिली से हम शादी नहीं कर सकते, तो हम नहीं करेंगे. तो लड़की ने किसी और से शादी कर ली. फिर लड़का दुखी होके बोला कि रुक जा बेटे, मैं तेरे से भी सुंदर लड़की से शादी करके, मतलब गुस्से में आके उसने सोचा कि अब मैं अरेंज मैरिज करूंगा, तेरे से भी सुंदर लड़की लाऊंगा. तो उसने जीवनसाथी.com या शादी.com, पता नहीं, ऐसे कोई मैट्रिमोनी वेबसाइट था, उसमें जाके उसने एक लड़की पसंद करी. अब वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन लड़की के भी रेड फ्लैग्स थे. मतलब पहले तो उसने बोला उसने मुंबई में पढ़ाई करी है, शी डिड हर अंडरग्रेड, पता चले उसने मुंबई में अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं करी. धीरे धीरे ना ऐसी लेयर्स अनफोल्ड होती गई. फिर उसके बाद वो जो बंदा था मिस्टर एक्स, ही यूज्ड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया और ये बंदी रहती थी कोलकाता में. तो ऐसा हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स की फैमिली इस बंदी से मिलने कोलकाता गए, और पहली मीटिंग में ही लड़की की जो मदर थी, उन्होंने लॉयर वॉयर तैयार करके फर्स्ट मीटिंग में ही बोल दिया, नहीं शादी की रजिस्ट्री हम यहीं पे करेंगे. मतलब लीगल मैरिज, फर्स्ट मीटिंग में लीगल मैरिज कर दी. और पता नहीं कैसे उनको ब्रेन वॉश किया, क्या किया, दैट दे ऑल्सो अग्रीड कि नहीं नहीं हमें सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, वी विल ऑल अग्री टू दिस मैरिज. फर्स्ट मीटिंग में ही एकदम रजिस्ट्री कर दी. ना लड़के लड़की ने एक दूसरे को जाना, सिर्फ शक्ल देखी है, मतलब ढंग से मिले भी नहीं, बात भी नहीं करी. यू नो, थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है, एक महीना दो महीना. यू शुड स्पेंड सम टाइम विद द पर्सन दैट यू आर प्लानिंग टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद. एटलीस्ट गेट टू नो व्हाट डील यू आर साइनिंग बिफोर यू साइन द डील, है ना. तो एनीवेज, रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब हाँ वाह कर दिया. उसके बाद अब उसने बोला कि चलो लीगल मैरिज तो हमारी हो गई है, व्हाई डोंट यू कम टू ऑस्ट्रेलिया, लिव विथ मी फॉर अ मंथ, तो हम यहाँ पे थोड़ा इसका यू नो वाइब देखते हैं, लाइक लेट्स सी हाउ वी यू नो गेट अलोंग एंड वगैरह वगैरह. लड़की ने बोला ठीक है चलो मैं आती हूँ ऑस्ट्रेलिया. अब लड़के ने उसकी फ्लाइट्स वगैरह सब बुक कराई, वीज़ा वगैरह कराया, करा के वो लड़की गई ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे के साथ रहने. और एक महीने रहने के बाद वो वापस आई. आने के बाद चलो सारी स्टोरी में एक साथ नहीं बोलूँगी, पहले गाना सुनते हैं फिर बाकी की बाद में, ठीक है. Stay tuned. Next 1 hour, we will share more stories like this.

हुआ ये कि वो बंदी तो चली गई ऑस्ट्रेलिया 1 महीने रहने साथ में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑब्वियसली लड़का लड़की अकेले हैं, कुछ चीज़ें तो होती हैं यू नो वगैरह वगैरह, लेट्स नॉट गेट इन टू द डिटेल्स। लेकिन वो बंदी, इवन दो नाउ दे आर टेक्निकली लीगली मैरिड, उसने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट वेट टिल वी ऑफिशियली सोशली गेट मैरिड। तो बंदे ने भी बोला ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, यू नो आई एम एन इंडियन गाय, आई एम अ गुड गाय, आई रिस्पेक्ट ऑल योर विशेज। तो वो बंदी वापस आई, वापस आके उसने उस बंदे से पैसे लेना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत सारे पैसे, कि मुझे अपनी शादी में मुझे ये महंगा वाला आउटफिट चाहिए, सब्यसाची का लहंगा चाहिए, मुझे ये वाले गहने चाहिए वगैरह वगैरह, हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है, यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, तुम इसके पैसे दो। और वो जो बंदा था मिस्टर एक्स, वो भोला भाला लड़का, वैसे ही उसका दिल पहले ही टूटा हुआ था, वो तो खुंदस में वैसे शादी कर रहा था, विच इज़ इन माई ओपिनियन कम्प्लीटली रॉन्ग। खुंदस में किसी से भी शादी मत करो, अगर किसी से सच में प्यार है और यू सी अ फ्यूचर, ओनली देन मैरी, बट एनी वेज वो अलग बात है। तो फिर उसने इसको पैसे देना शुरू कर दिया, तो पैसे दे देते, बीच में एक टाइम आया कि लड़की ने लड़के को बोला कि आई एम नॉट फीलिंग दिस वेडिंग एनी मोर। तो लड़के ने बोला अरे मैंने तो तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, कार्ड्स छप गए हैं, व्हाट इज दिस, यू नो यू हैव टेकन सो मच मनी फ्रॉम मी, हाउ कैन यू बैक आउट ऑफ दिस वेडिंग लाइक दैट। अगर ऐसा था देन यू शुड हैव टोल्ड मी पहले, वी वुड हैव स्टॉप्ड इट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू और एनीथिंग। फिर बंदी ने फिर से अपना माइंड चेंज कर दिया, कहती नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके वगैरह वगैरह। फिर थोड़ा फैमिली प्रेशर भी आया लड़की की साइड से, लड़की की मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, यू विल बी वेरी हैप्पी। ऐसे करके शादी वादी तो कर ली इन लोगों ने, शादी वादी करके समहाउ लड़की फाउंड हर वे टू ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द सिटी, बट दे बेसिकली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। फिर ऐसे करके 6 महीने हुए, 6 महीने हुए, मतलब 2 महीने हुए, फिर 6 महीने हुए, 6 महीने हुए। तो ये जो लड़का था मिस्टर एक्स, धीरे धीरे ना शादी के बाद लोगों का तो हनीमून पीरियड चलता है, एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी कि ओ आई हैव अ ब्यूटिफुल न्यू वाइफ एंड यू नो यू आर इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। बट समहाउ दिस पर्सन वॉज बिकमिंग सैडर बाय द डे, हर रोज़ दुखी दुखी दुखी दुखी। तो एक दिन हम सब ने पूछा, मैंने भी पूछा, मेरी मम्मी ने भी पूछा, हम सब ने पूछा भाई ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, ऐसे नहीं, सब ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बाद में बता रहे, तो मैं भी इसीलिए इसको बाद में बताऊंगी, आप ये गाना सुनो तब तक, देन विल कम बैक एंड फिनिश द स्टोरी।

फिर क्या होता है स्टोरी में? फिर स्टोरी में ये होता है कि समहाउ वो लोग शादी कर लेते हैं, शादी करके वो बंदी ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया मूव होने के जाने के बाद भी ये लड़का धीरे धीरे दुखी होते जाता है, ठीक है। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर वो लड़की बोलती है कि भाई मिस्टर एक्स, मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी है, आई वॉन्ट बी अ लॉयर। तो वो बंदा कहता है आई लव दैट यू वॉन्ट बी अ लॉयर, आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिव ऑफ दैट। तुम यहीं पे हमारे जो सिटी में जो कॉलेज है, आई मीन देर आर सम रियली ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ इन स्टेट ओवर हियर, यू शुड टेक एडमिशन इन वन ऑफ दीज कॉलेजेस एंड गेट योर डिग्री इन लॉ। तो कहती है नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मुझे जाना है सिंगापुर जाके पढ़ाई करने। तो वो कहता है कि भाई तो हमारी अभी तो शादी हुई है, तुम सिंगापुर क्यों जाना चाहती हो पढ़ाई करने? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे सिंगापुर ही जाना है, सिंगापुर ही जाना है, वहाँ पे लॉ का बेस्ट कॉलेज है। ऑफ ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड शी डिसाइड्स दैट शी वॉन्ट्स टू स्टडी लॉ एट सिंगापुर। नो, शी डजंट वॉन्ट टू गो टू हार्वर्ड और एनी वेयर एल्स, सिंगापुर इज वेयर शी वॉन्ट्स टू गो। आई मीन आई नो सिंगापुर इज अ ब्यूटिफुल कंट्री बट स्टिल। तो मिस्टर एक्स आउट ऑफ प्रेशर ही सेज ठीक है चलो जाओ, आई मीन आई वॉन्ट टू बी अ सपोर्टिव हस्बैंड, आई एम अ गुड गाय सो आई विल लेट यू गो। तो उसका अपनी वाइफ का वो एडमिशन करा देता है, वो वाइफ वहाँ पे अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब शुरू करती है। लेकिन एवरी टाइम उसकी कॉलेज की छुट्टी होती है, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू सी हर हस्बैंड इन ऑस्ट्रेलिया, विच बाय द वे यू नो ही इज़ पेइंग फॉर ऑल द फ्लाइट्स, ही इज़ पेइंग फॉर हर ट्यूशन फीस एंड हर लिविंग एक्सपेंसेस, ही इज़ सेंडिंग हर क्लोज टू लाइक $4,000 एवरी मंथ सो दैट शी कैन हैव अ कम्फर्टेबल लाइफ। बट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू सी हिम, वो डिसाइड करती है कि वो अपने इन लॉज से मिलने जाएगी। कितनी संस्कारी, कितनी आज्ञाकारी बहू है, वो जाके अपने इन लॉज से मिलेगी दिल्ली में। तो उसका हस्बैंड भी कहता है नहीं ठीक है यार, मेरे पेरेंट्स से मिलने जा रही है, शी मस्ट रियली लव माई पेरेंट्स, लाइक वॉट अ ग्रेट गर्ल एंड वगैरह वगैरह। तो फिर जाते फिर वो जाने लगी, देन वहाँ पे ऑब्वियसली इन लॉज के पास जा रही है, तो इन लॉज आर ऑल्सो वेल्थी, वो इसको कपड़े

पेरेंट्स लाइक व्हाट अ ग्रेट गर्ल एंड वगैरह वगैरह. तो फिर जाते, फिर वो जाने लगी, देन वहाँ पे ऑब्वियसली इन लॉज के पास जा रही है, तो इन लॉज आर ऑल्सो वेल्थी. वो इसको कपड़े दिला रहे हैं, गहने दिला रहे हैं, ये दिला रहे हैं, वो दिला रहे हैं, लैपटॉप दिला रहे हैं, वगैरह वगैरह करके. फिर एक दिन वो वापस अपनी छुट्टी वुट्टी खत्म करके वापस सिंगापुर चली आती है. तब ये मिस्टर एक्स आता है हमारे घर पे. ही इज़ हमारा क्लोज रिश्तेदार, जो भी इसको बोलते हैं. ट्रू स्टोरी है बाय द वे ये गाइस, जस्ट सो यू नो. वो आता है और बड़ा दुखी है. तो हमने पूछा, यार एक्स, वाई आर यू सो सैड? क्या हुआ? तेरी तो अभी शादी हुई है और तेरी तो अभी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है अगले 2-3 हफ्ते में. क्या हो गया है? साल भर भी नहीं हुआ तेरी शादी को, तो तू इतना दुखी क्यों है? कहता है कि यार वो एक्चुअली मैं अपनी बीवी से मिला नहीं हूँ, हमारा ऐसा सच कोई रिलेशनशिप नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है. वो सिंगापुर गई है पढ़ाई करने, एंड देन आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर बिकॉज एवरी टाइम आई कॉल हर शी टेल्स मी दैट शी इज़ वेरी बिजी पढ़ाई में वगैरह वगैरह. तो वो कहता है कि, तो मैंने कहा एक काम कर, तुम लोग ही फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तू अपनी फ्लाइट्स यहाँ से बुक करा. क्या इंडिया में पड़ा हुआ है? तू जा यहाँ से, इंडिया से निकल के यू गो टू सिंगापुर एंड सरप्राइज हर, बुक लाइक अ 5-स्टार होटल का रूम, शो अप एट हर डोर एट हर अपार्टमेंट वेर एवर शी स्टेइंग विद सम अ बिग बुके ऑफ फ्लावर्स एंड लाइक अ ग्रैंड जेस्चर. एवरी गर्ल लव्स अ ग्रैंड जेस्चर, सो यू मस्ट गो एंड टेल हर योर ट्रू फीलिंग्स. तो कहता है हाँ, वो मतलब शी लाइक इट. कहा हाँ यार, एवरी गर्ल लाइक्स इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट टेक द स्टेप. तो वो कहता है ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको इस गाने के बाद बताती हूँ, एंड देन वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक आफ्टर दिस सॉन्ग. तो लेट्स सी.

0: आप अपने अपने दिल का हाल तो ठीक रख रहे हो ना? कई बार क्या होता है ना, दिल का हाल वगैरह वगैरह करने के लिए समटाइम्स वी नीड एक्सटर्नल हेल्प. इसीलिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज राइट देयर फॉर यू. आपका डॉक्टर आपके साथ कितने टाइम स्पेंड करता है? 5 मिनट, 10 मिनट? एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज आपका ध्यान वही रखेंगे. हमसे ज़्यादा तो वही रखेंगे, हम तो गाने बजाते हैं, लेकिन ध्यान आपका आपके डॉक्टर्स ही रखेंगे. बिकॉज एट पैशन हेल्थ Passion.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Aja meri gaadi mein baith ja.
5: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Aaj sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
12: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

तो उसके बाद क्या होता है, मिस्टर एक्स ही डिसाइड्स कि भाई अब तो मैं जाके आई विल सरप्राइज दिस गर्ल एंड आई विल टेल हर मेरी दिल की फीलिंग्स. वैसे दिल की फीलिंग्स तो अब वो उसकी बीवी थी तो उसको आई एम श्योर फीलिंग्स पता होगी, लेकिन वो ऐसे ही दुखी हो रहा था. वो दोनों एक दूसरे से बड़ा दूर दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज हो गई थी. लेकिन इस स्टोरी से आगे बढ़ने से पहले मैंने अपना पिछला वाला अनाउंसमेंट तो कंप्लीट ही नहीं किया गाइस. भाई दिल की प्रॉब्लम सबको होती है, सबको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है. अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज गो टू पैशन हेल्थ केयर, बिकॉज दे विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड दे विल ट्रीट यू लाइक फैमिली. एंड नॉट जस्ट दैट, दे आर ऑल्सो हायरिंग. अगर आप प्राइमरी केयर डॉक्टर हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, दे आर हायरिंग ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और टेक्स्ट 217-454-4639, या फिर एनी जेनेरिक और जनरल इंक्वायरीज यू सेंड इन्फॉर्मेशन टू 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. तो मूविंग ऑन, दिस बंदा ही बुक्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट टू सिंगापुर. अगले दिन की फर्स्ट फ्लाइट जो थी, ही रीच्ड हर डोर स्टेप. जो एड्रेस उसने दे के रखा था मिस्टर एक्स की जो बीवी थी, लीगल बीवी, और शी ही रीचेज द डोर एंड बुके बुके लेके कहते हैं हाय सरप्राइज. गेस दरवाजा कौन खोलता है? कोई और. तो कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर मिसेज एक्स, इज शी हियर? तो जो दूसरे वाले साइड पे थे वो कहते हैं नहीं, वो तो यहाँ पे कभी नहीं रहती थी, वो तो बहुत पहले यहाँ से निकल के चली गई, शी मूव्ड समवेयर एल्स. तो वो कहता है अरे उसने तो मुझे बोल के रखा था यही उसका एड्रेस है, उसने तो मुझे अपना एड्रेस जो चेंज किया उसने बताया भी नहीं. कहता है नहीं, वो तो बहुत पहले, शी लेफ्ट दिस प्लेस, शी लेफ्ट दिस अपार्टमेंट, शी लिव समवेयर एल्स नाउ. तो फिर उसने फिर मिसेज एक्स को कॉल किया, कहता है कहाँ हो तुम? मैं सिंगापुर में हूँ, आई हैव कम टू सरप्राइज यू. मैं तुम्हारे घर गया, पता चला तुम तो वहाँ रहती नहीं हो, वेयर आर यू? तो वो कहती है तुम क्यों आए यहाँ पे? वो गुस्सा हो गई, वो बहुत गुस्सा हो गई, कहती तुम यहाँ पे आए क्यों? पहली बात तो आई वाई डिड यू कम टू माई प्लेस ऑफ स्टे? आई एम लिविंग हियर. तुम्हें किसने बोला था मेरे को आके सरप्राइज देने के लिए? आई एम नॉट रेडी फॉर द सरप्राइज. तो कहते हैं नहीं, आई लव यू सो मच, मैं तो अपनी बीवी को खुश करने के लिए आई एम कमिंग हियर टू गिव हर अ सरप्राइज. तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, तुम यहाँ आके मेरे से मिलो. तो उसने एक दूसरा एड्रेस दिया. तो देन दिस मिस्टर एक्स ही डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अभी सामान वामान पैक करते हैं, वहाँ पे नए वाले एड्रेस पे चल के देखते हैं वेयर इज शी एग्जैक्टली. तो आगे मैं बताऊंगी इस गाने के बाद.

तो गाइस फिर वो गया वहां पे नए वाले एड्रेस पे. नए वाले एड्रेस पे ही मेट हर मिसेस एक्स एंड ही गोज लाइक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं दैट यू लेफ्ट दैट ओल्ड अपार्टमेंट और तुम यहाँ पे रह रही हो. फिर कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे सेमेस्टर का बीच में तुम आ गए हो इस तरह से एंड दिस इज़ नॉट कूल, आई एम रियली बिजी राइट नाउ. फिर बाद में वो देखता है अंदर एंड ही सीज दैट शी इज़ लिविंग विद ए डिफरेंट गाय हु इज़ नाउ करंटली हर बॉयफ्रेंड. शी इज़ लिविंग विद अनदर मैन. मिसेज एक्स हैज़ अनदर बॉयफ्रेंड, अ साइड हसल, अ साइड पीस, ओके, इन सिंगापुर. While she is asking her husband, Mr. X, who lives in Australia, for all the living expenses, he sends her monthly $4,000 for her tuition, her living expenses, her rent, वगैरह वगैरह. और वो वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग से रह रही है. एंड देन इट वॉज सच अ ड्रामा. फिर उस बंदी ने मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स की फैमिली के ऊपर गलत क्रिमिनल केस थोप दिया, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वगैरह का, विच वॉज ऑल बाय द वे फ्रॉड, बिकॉज वो लोग तो इसको इतना प्यार करते थे, उसको कपड़े वपड़े खरीद के सब देते थे, उसका पूरा घर फर्निश किया था सिंगापुर में. एंड शी पुट दिस लाइक फ्रॉड केस, और उसने बोला इन लोगों ने मेरे गहने रख लिए वगैरह वगैरह. और फिर इट वॉज सच अ बिग ड्रामा. एंड फाइनली गाइज यू नो वॉट हैपन्ड, शी गॉट आउट. वी ऑल एडवाइज मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली की भाई यू कैन कीप फाइटिंग दिस केस एंड फाइटिंग फॉर वॉट्स राइट एंड वी नो दैट यू आर राइट, बट वुड यू रादर हैव मेंटल पीस और वुड यू रादर हैव दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ कि इस लड़की को अपनी जगह पे दिखाना, यू नो, वुड यू रादर गेट आउट ऑफ दिस सूनर, या फिर उसको पनिशमेंट देने के चक्कर में आप अपने आप को सालों भर मेंटली टॉर्चर कर रहे हो ताकि आपका ये केस सॉर्ट आउट हो जाए. मतलब ये केस थोड़ा अगली हो रहा था, वहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, ऐसे ऐसे हो चुका था. तो देन फाइनली दे सेटल्ड विद द गर्ल एंड बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड द लॉ वॉज ऑन हर साइड, शी गॉट अ रियली बिग एलिमनी सेटलमेंट इवन दो शी वॉज इन द रॉन्ग. तो कई बार ऐसे भी होता है गाइज, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, धोखा हम सबको हर जगह मिलता है किसी ना किसी मोड़ पे. तो यू गॉट बी केयरफुल, जस्ट वॉच आउट.

0: तो गाइस उस बंदी ने तो मिस्टर एक्स को पूरा ऐसे ही, मतलब शी मूचोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिम. व्हाट टू डू, गहने भी खरीदे, ये भी खरीदे. भाई गहने से याद आया, पीएमजे ज्वेल्स इज नाउ इन डैलस. डिड यू नो दे हैव देयर स्टोर इन फ्रिस्को एंड दे आर ब्रिंगिंग 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सपीरियंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप टू डैलस. भाई अब आपको इंडिया जाके शादी की शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खरीद लो. ठीक है, स्टनिंग गोल्ड डायमंड ज्वेलरी एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइल स्टोन. 20th को उनकी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी. इफ यू मिस्ड इट, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट. द स्टोर इज स्टिल ओपन, यू गो चेक आउट द कलेक्शन. दे आर एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घटमनेनी. पीएमजे इज अ नेम ट्रस्टेड बाई जनरेशन. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. सो विजिट पीएमजे ज्वेल्स ऑन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट, डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. मिस्टर एक्स स्टोरी वॉज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी. इट हैपन्ड इन माई क्लोज सर्कल. आई एक्चुअली नो द पर्सन एंड आई ऑल्सो मेट मिसेज एक्स, हु वॉज द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वी मेट हर. बट या लेट्स नॉट गेट देयर एनी मोर. तो भाई बी केयरफुल गाइज, आप कभी भी अरेंज मैरिज कर रहे हो, शादी मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, या रिलेशनशिप में ही हो, यू गॉट अ बी रियली रियली केयरफुल. आज के ज़माने में कोई किसी पे भरोसा मत करो. जस्ट डू योर बैकग्राउंड चेक एंड देन मेक श्योर वट एवर डील यू साइन, यू डू योर बैकग्राउंड चेक विद इट, वेदर इट्स प्रोफेशनल और पर्सनल. चलो ये गाना सुनते हैं.
1: दिल के मोहल्ले में सब ठीक है,

0: सब जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो?
1: कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं नहीं मुस्कुरा रहे।
0: मुस्कुरा तो रहे हो।
1: नहीं मुस्कुरा रहे।
0: लो लो

Guys, before this Ghana finishes, I'm going to log off. You're listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is me signing off from an evening in Dallas. I will see you guys again in 2 days, Thursday, शाम को 7 से 10 बजे. कल मेरी छुट्टी है. कल मैं थोड़ा सोने वाली हूँ और जल्दी जल्दी खाना भी खाने वाली हूँ. तो मैं अपना कल छुट्टी इंजॉय करूंगी. आप अपना छुट्टी इंजॉय करिए. आई विल सी यू गाइज टुमारो. नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
4: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
6: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
7: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

ओके, गुड इवनिंग डैलिस, या फिर गुड नाइट ही बोल दो क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है हाफ ऑफ यू आर ऑलरेडी लाइंग डाउन एंड प्रिटेंडिंग यू आर जस्ट रेस्टिंग योर आईज. आज ना टॉपिक थोड़ा फनी भी है और थोड़ा रियल भी. आई नो हाफ ऑफ अस आर इन US, वी कम टू US टू डू आर मास्टर्स. सो हम आज इसी बारे में बात करेंगे, मास्टर्स इन USA वर्सेस लाइफ अब्रॉड, अ रियलिटी चेक. और ऑनेस्टली जब हम यहाँ आते ना, पहले 2-3 दिन लगता है हाँ ये तो मूवी वाला फेज है, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अब बस मैं अपनी लाइफ का हीरो और हीरोइन हूँ. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अलार्म बजता है और रियलिटी ऐसे टप करती है लाइक गुड मॉर्निंग बेटा, मम्मी यहाँ नहीं है. और वॉशिंग मशीन, भाई मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वो देख के लगा जैसे नासा का प्रोजेक्ट हो. बिकॉज मोस्ट ऑफ अस जब जब हम घर रहते हैं हमें ये सब आदतें नहीं होती, बट व्हेन यू कम टू US नॉट जस्ट फॉर मास्टर्स बट हम लाइफ भी सीखते हैं. तो हम आज हमारी अब्रॉड लाइफ की इसी छोटी मोटी हंसी मजाक की बातें करते हैं और हमारे शो शुरू करते हैं दिल से डैलिस विद स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM पर. सो माई फर्स्ट सॉन्ग ऑफ टुनाइट शो गाइज़.

That was a beautiful song from Dil Bechara. So hum baat kar rahe the like student lives, like masters in USA versus life in abroad. So when I think about this, like I've been here also for masters and life aage badhte badhte ja rahi hai. So the first thing that comes in my mind, hum jab US pehli baar aate hai, like any abroad, not only specifically here, it's all new things for us. And the bada thing is grocery store ka first experience. I swear, ye na ek alag level ka trauma hota hai. Socho bas ja rahe ho ki milk lena hai, bread lena hai, bas simple mission hi to hai. But andar hi andar dimag slow motion mein chalta hai. Ye aisle ka hai, main kaun si aisle dhoondh rahi hoon jo cheeze mujhe chahiye. Aise nahi hota ki ek kirana shop mein tum jao aur bolo bhai ye sab de do aur mere bill kar do. यहाँ पे आयल भी ढूंढना पड़ता है. यू हैव टू, अगर तुम मिल्क सेक्शन में जाओ तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज़ें रन होते हैं, लाइक आलमंड मिल्क लूँ, ओट मिल्क लूँ या सोए मिल्क लूँ. एंड देन हम सोचते हैं भाई कौ वाला मिल्क का है, मुझे बस वो ही चाहिए. और सबसे फनी मोमेंट, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ स्टूडेंटिंग लाइफ, इट इज़ द बिलिंग सेक्शन. वहाँ पे जब टोटल आता है ना, उस मोमेंट पे इंसान का पूरा इमोशनल सिस्टम रीबूट हो जाता है. लाइक सडनली लाइफ का फाइनेंशियल अनलॉक हो गया विदाउट अ वार्निंग. दैट इज़ हाउ लाइफ इज. छोटे छोटे चीज़ें हम ऐसे ही सीखते हैं कमिंग आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन. सो कमिंग हियर, इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग, भाई ये है वो है, दैट्स जस्ट लाइफ एंड यू आर लर्निंग इट इन द बेस्ट वे बाई योर सेल्फ. नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू.

So that was a beautiful song, Shukrana Allah. Such a nice lyrics, right? I love the lyrics. बहुत meaningful होती है. So हम बात कर रहे थे हमारी हंसी मजाक conversations, like masters in US versus abroad life. एक और चीज़ जो कोई openly admit नहीं करता है, that is the laundry day. इंडिया में ना लॉन्ड्री मतलब सिंपल था, कपड़े दिए, क्लीन वापस आ गए, बस लाइफ इजी. यहाँ पे लॉन्ड्री मतलब होता है, ओके वेट, ये बटन क्या करता है? ये वॉशर है या कुछ मैं मशीन के साथ खेल रहा हूँ? शुड आई पुट इट इन द लोअर मोड? शुड आई पुट इट इन द मीडियम मोड? मैं कॉटन कपड़े करूँ पर मेरे कपड़े तो सारे मिक्स है. मशीन के सामने खड़े होके ही ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ क्या, जिसका सिलेबस किसी ने दिया ही नहीं है. और जब पहली बार रेड सॉक वाइट क्लोथ्स के साथ मिक्स हो जाता है, ब्रो, दैट मोमेंट इज़ नॉट द लॉन्ड्री मिस्टेक, दिस इज़ इमोशनल डैमेज. आई नो देर आर सम पीपल जिनको वाइट कपड़े बहुत प्यारे होते हैं, लाइक मी. अगर थोड़ा भी उसको कुछ हो गया, आई बी लाइक शिट यार मैं अब क्या करूँ. बट आई नो लॉट ऑफ अस हैव लॉट ऑफ कंप्लेन्स जाके ड्रायर्स की, एस्पेशली हु आर इन अ रेंटेड अपार्टमेंट्स. और ड्रायर से जब कपड़े निकालते हैं, वो स्मेल, वो टेक्सचर, ऑनेस्टली लगता है कपड़े नहीं, कोई पैरेलल यूनिवर्स से रिटर्न आए हैं. मैंने जैसे डाला वैसे तो वापस ही नहीं आए. अब समझ आता है अडल्टिंग का मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं होता है, मतलब होता है हर चीज़ का थोड़ा रिस्क लेना, विच इज़ क्वाइट फनी समटाइम्स एंड समटाइम्स इज जस्ट हाउ द लाइफ लेसन्स आर. सो अगेन द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइज, हम अच्छे अच्छे गाने सुन के ऐसे थोड़े हंसी मजाक वाले, आई गेस लॉट ऑफ पीपल कैन यू नो रिलेट टू दिस. आई नो देर माइट बी सम पीपल हु हैव क्रॉस दिस फेज ऑफ लाइफ, बट देर आर स्टिल सम पीपल हु आर स्टिल फिगर आउटिंग ये. क्योंकि मैं तो हर हफ्ते एक नया चीज़ फिगर आउट करती हूँ यार, कितने भी साल मैं यहाँ रह चुकी हूँ, बट आई ऑलवेज हैव समथिंग और द अदर थिंग. अरे ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, एंड देन लाइक इट्स अ होल न्यू ड्रामा. लेट इट बी वीक डे या वीकेंड, काम तो सिर्फ ऑफिस पे नहीं, हर बार 24/7 हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज अग्री? इफ़ यू गाइज अग्री टू दिस अब्रॉड लाइफ के मजाक लाइक जोक्स, प्लीज़ कॉल मी एंड टेल मी योर स्टोरीज भी. Agar, if it's a fun one, I can have a listen and I can share it on air too. The next song for you guys.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट? मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
5: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
6: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
7: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

ओके, सो कीपिंग आवर थीम ऑफ टुडे ऑन, क्योंकि हमारे कॉलर्स को ये मज़ा आ रहा है जिनको यहाँ आके कई साल हो रहे, बट दे आर समवेयर काइंड ऑफ रिलेटिंग टू व्हाट आई एम टॉकिंग. सो हमारी हंसी मजाक ट्यूसडे नाइट वाली वाइब्स जारी रहेंगे. ओके, सो कुकिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस. ओके, बस ये ना अब्रॉड लाइफ का ऑफिशियल टर्निंग पॉइंट होता है. पहले दिन फुल एनर्जी, मैं हेल्दी खाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा. और थर्ड डे पे मैगी को भी बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, जैसे मिशेलिन स्टार की शेफ की तरह हम फील करते हैं. बिकॉज़ यूएस आके ना मैंने बहुत सारी मैगी सीखी है, एक सादा मैगी, एक चीज़ मैगी, एक एग मैगी, कई डिफरेंट तरह के मैगी. बिकॉज़ ये 2 मिनट में बन जाता है और मुझे इसमें बहुत तड़का नहीं डालना पड़ता और मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस पानी उबालो और मैगी तैयार. एंड आई स्वेयर द स्मोक अलार्म, वो अलार्म नहीं होता, वो एक रूममेट होता है जो साइलेंटली जज कर रहा होता है एवरी लाइफ डिसीजन. इज देयर एनीबडी इन योर मास्टर्स लाइफ जिनके घर पे अलार्म बजी हो? क्योंकि मेरे घर पे बजा था. बिकॉज हमारी देसी खाने ना यूएस के अलार्म्स को चुप नहीं करते, बस उसको हु करते. एंड आई मस्ट से सम पीपल माइट हैव दिस मेमोरी, बिकॉज मेरी मास्टर्स की लाइफ में मेरे दोस्तों के हरकतों की वजह से हमारी अलार्म चल गई थी. एंड वी हैड टू, यू नो वॉट वी हैव टू फेस आफ्टर यू डू ऐसे थिंग्स. सो दिस इज़ ऑल लाइक क्यूट मेमोरीज यू कैन मेक ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ. सो वैन यू फील यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, देन जब वैन यू फील इट बैक, आप बस हंसते हो और सोचते हो कि हमने क्या क्या नहीं किया. किचन का स्टेट ऐसा होता है, कभी कभी लगता है कुकिंग नहीं चल रहा है, सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिलेटेड टू दिस? एंड कुकिंग इज समथिंग जो आज भी, लेट इट बी आर कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, वॉट सो एवर, आज भी हम सोचते रहते हैं, हमारी मम्मियाँ सोचते रहते हैं आज खाने में क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ, यार खिलाते ही जाऊँ क्या मैं. अब वी आर इन दैट फेज जहाँ हमें खुद को खिला के सर्वाइवल मोड में रहना पड़ता है. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइस.

That was a beautiful song from movie Zero. So when I heard this movie ka naam Zero, I guess most of you must have watched this movie already. I think however they are, it's just the confidence they hold in us. Anyways, हमारे टॉपिक जारी रहेगी, बट when I was just going, like listening to the lyrics and all, मुझे एक चीज़ याद आ गई. कॉन्फिडेंस इज सो ट्रू. मैं कोई शायरी नहीं सुनाने वाली हूँ, बट आई गॉट टू से समथिंग. इट्स लाइक, हियर यू गो. खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी ताकत ये है, मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड. लोग तुझे नीचे दिखाने की कोशिश भी करेंगे, पर हर मुश्किल से लड़े आगे बढ़ने तेरा काम है. जब तू अपने अंदर की आग को पहचानने लगा, तो कोई भी मंजिल तेरे लिए मुश्किल नहीं होगी. रिमेंबर, द गेम इज़ इन द माइंड. अगर तू अंदर से स्ट्रांग है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती. शाइन ऑन. इट्स फॉर एवरीबडी हु इज़ लाइक, आई वोंट से स्ट्रगलिंग, बट हु इज़ कॉन्फिडेंटली मूविंग अहेड. आई होप मेरे ये छोटे बातें माइट हैव जस्ट ब्रॉट अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस, गाइस. इतना ज़्यादा शायरी वायरी मुझे करनी नहीं आती, बट अगर मुझे कुछ अच्छा लगा हो, एंड इफ़ आई फील दैट इट माइट कनेक्ट टू सम पीपल्स हार्ट एंड सम पीपल माइट स्माइल अबाउट इट एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई फील इस जनरेशन एंड ऑल द जेंजी किड्स एंड एवरीबडी शुड नेवर लूज द कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज शाइन एंड ब्राइटर ऑन.

सो डैलस इट्स 11:06 PM। आप अभी भी ड्राइव कर रहे हो तो जल्दी घर चले जाइए। सो हमारे बातें चल रहे थे अबाउट मास्टर्स इन US वर्सेस लाइफ अब्रॉड। सो इन दिस टॉपिक व्हेन आई वाज थिंकिंग और मैं क्या बात कर सकती हूँ ये टॉपिक में, हम बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजटिंग। ओ गॉड, ये ना एक हिडन पर्सनालिटी अनलॉक होती है यहाँ आने के बाद। सडनली यू बिकम दिस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो हर डॉलर को ऐसे देखता है जैसे एक ट्रेजर हो, बिकॉज यू कमिंग ऑल द वे फ्रॉम योर कंट्री लिविंग योर लव्ड वंस। तो तुम्हें लगता है मेरी मेहनत की जो कमाई है वो सही तरीका और सही डायरेक्शन में जानी चाहिए। और मंथ एंड पे सबका सेम सीन होता है, फ्रिज ओपन करो एंड देन यू फील लाइक यार फिर से ग्रोसरीज लेने, यार मेरे खर्चे खत्म ही क्यों नहीं होते। आई थिंक स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस थिंग कि ये लाओ वो लाओ ये लाओ ये लाओ, मैं कहाँ बचाते करूँ। बट इट्स फाइन, दिस विल पे सम डे। पीपल हु आर सेटल्ड हियर यू माइट यू नो रिलेट टू ऑल दिस कॉन्वर्जेशंस बिकॉज आपने भी एक एक सीढ़ी चढ़े चढ़े होके यहाँ पे घर बनाया, यहाँ पे एक लाइफ बनाई है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग बजटिंग इज़ नॉट दैट ईजी, पर हम सब यहाँ आके बजटिंग का बादशाह बन जाते हैं। सो नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइज, हम ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें बात करते हैं हमारे ट्यूजडे नाइट को एंड करते अंटिल 12 AM। यू लिसनिंग टू दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनी शो 104.9 FM पर।

A.R. रहमान, ही कैन नेवर अपसेट अस, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. सो हम बात कर रहे थे मास्टर्स इन USA वर्सेस लाइफ इन अब्रॉड. सो इसी बातों के जारी रहे. सो व्हेन आई वाज थिंकिंग और क्या बात कर सकते हैं हम, आई वाज लाइक रूम क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग. ओके दिस वन इज़ पर्सनल. हाँ, इंडिया में ना रूम मैजिकली मैनेज हो जाता था, यहाँ पे डस्ट भी फुल टाइम एम्प्लॉय बन गया होता है हमारे घरों में. वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना पहली बार आई स्वेयर फेल्ट लाइक आई गॉट प्रमोटेड इन लाइफ. ओह माई गॉड, ये मेरी ज़िंदगी को इतनी सुकून बना देता है. आई गेस बैक इन होम वी आर नेवर यूज टू वैक्यूम क्लीनर्स अ लॉट, बट हियर वी लिव ऑन वैक्यूम क्लीनर्स. एंड जब पहली बार क्लीन रूम दिखा ना, I literally stood there like, wait, did I do this when I did it? पहली बार this was the feeling, but now it's like my रोज का आदत. And after coming here ना, मुझे OCD का masters कर दिया ही मैंने. It's not I don't know about college masters, but OCD का masters तो हो ही गया. वो moment होता है जहाँ you realize you're slowly becoming that responsible person जिसके बारे में घर वाले बोलते थे कुछ नहीं आता तुझे, तू कुछ नहीं कर सकती एंड ऑल, बट हियर यू मैनेजिंग लाइफ योर सेल्फ. सो दिस इज़ वन मोर पर्क ऑफ डूइंग मास्टर्स एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट लिविंग इन अब्रॉड. सो नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइस, हम अच्छे अच्छे गाने सुन के ऐसे हंसी मजाक पुराने बातें जिनकी आपको याद आती होगी. और राइट नाउ यू स्टिल अ स्टूडेंट, यू कैन रिलेट टू ऑल माई टॉक्स. नॉट गोना बोर यू ऑन अ ट्यूसडे नाइट.

सो डैलस इट्स 11:24 PM ऑन द क्लॉक गाइज. आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM पर. सो इट्स ऑलमोस्ट गोना गेट मिडनाइट. मिडनाइट पे ना सबसे डेंजरस थिंग इज ओवर थिंकिंग. सब कुछ साइलेंट होता है और दिमाग सडनली टेड टॉक मोड में चला जाता है. लाइफ का क्या होगा, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, और फ्रिज ओपन करके बस खड़े रहना. इवन वेन यू आर नॉट हंग्री, बस थिंकिंग. ये अब्रॉड लाइफ का हिडन सिलेबस होता है, ओवर थिंकिंग 101. सो इट इज़ गुड टू ओवर थिंक इफ इट इज़ बेनिफिटिंग यू. नहीं तो ओवर थिंकिंग में आपकी टाइम ज़ाया ना करे एंड ट्राई हैविंग अ हेल्थी हैबिट्स. आई नो इट्स अ ट्यूजडे नाइट. ऑल द पीपल हु वर्क फॉर सॉफ्टवेयर आर वेटिंग फॉर वीकेंड. 3 दिन रुक लो भाई, वीकेंड आ ही जाएगा. बट ये 3 दिन में keep your diets on track.

the habits. I know it's a Tuesday night. All the people who work for software are waiting for weekend. 3 din ruk lo bhai, weekend aa hi jayega. But ye 3 din mein keep your diets on track. Gym jao, healthy banao, healthy shalti khao, zyada samosa na thuzo. Because nowadays I feel health is very important and you need to always make sure you're eating right. Kyunki when we ship from our home countries, hum kuch na kuch kha lete, like, you know, burgers and all. Aapko lag raha hoga, yaar ye kya mummy wali baate kar rahi hai? मम्मी वाली बातें नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव फेस्ड दिस. मैं जब पहली दफ़ा आई थी मैं कुछ भी खा लेती थी, कुछ भी. एंड देन आई थॉट यार मैं तो डोर में भी फिट नहीं हो जाऊँगी. देन आई सॉ सम वीडियोज एंड आई सॉ यू ऑलवेज थिंक दैट यू डोंट गेट गुड फूड इन US, बट इफ़ यू रियली सर्च यू गेट वेरी वेरी न्यूट्रिशनल फूड विच बेनिफिट्स यू एंड योर बॉडीज. और ज़्यादा इंश्योरेंस काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, आप अपनी बॉडी को ऑलवेज कीप इट ऑन अ वर्क मोड. जिम करो, डोंट थिंक अबाउट अगला मंडे से कर लूँगा, कल कर लूँगा. कल से स्टार्ट होगी क्योंकि कल फर्स्ट है. टू पीपल हु आर थिंकिंग कल जुलाई 1st है, मैं स्टार्ट कर लूँगा, स्टार्ट ज़रूर कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू गाइज़.

So we were talking about doing abroad life. So doing abroad life is, I won't say वो बहुत मुश्किल है, but we do face some challenges because we come to abroad leaving our home back. घर की घर ना घर ही होता है. अगर चाहे हम यहीं पर भी घर लेते हैं, आई थिंक द घर वो जो हमारी द ओन कंट्री की फीलिंग है, दैट इज़ ऑलवेज डिफरेंट. सो व्हेन यू ऑलवेज थिंक अबाउट इट, यू फील अ काइंड ऑफ लोनली, राइट? लोनली का ना एक वियर्ड फेस होता है. पहले लगता है सब दूर है, फिर आदत हो जाती है, और फिर खुद से ही बात करना नॉर्मल हो जाता है. कभी हम खुद को मोटिवेट करते हैं, कभी हम खुद की रोस्ट करते हैं, कभी फुल आर्ग्यूमेंट सेशन विद इन योर सेल्फ. एम आई डूइंग दिस राइट? एम आई टेकिंग दिस डिसीजन प्रॉपरली? एंड ऑनेस्टली, यू बिकम योर ओन बेस्ट कंपनी इवन विदाउट रियलाइजिंग इट. यू नो, हैविंग सेल्फ लव एंड हैविंग योर सेल्फ टाइम, अ मी टाइम, इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो टू ऑल माई बिजी पीपल, बिजी लिसनर्स, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, keep time for yourself, make time for yourself and invest in yourself than investing. मैं ये कहाँ invest करूँ, मैं कहाँ बढ़ जाऊँ, मैं कितना पैसे बनाऊँ. Always have some थोड़ा आपकी me time and trust me, you will love it and you will feel. ये हमें करती रहनी चाहिए. Monday to Friday अपने managers को, अपनी boss को अपने time दे देना. Saturday, Sunday, Saturday के दिन family को time देना, Sunday के दिन खुद के लिए थोड़ा time निकालना, और मुझे ज़रूर बताना how you feel. It will definitely feel good in investing yourself always.

म्यूजिक ना थेरेपी बन जाती है। हर गाना एक मूड होल्ड करता है, हैप्पी, सैड, कंफ्यूज्ड, होमसिक, सब कुछ प्लेलिस्ट में शिफ्ट हो ही जाता है। और फिर हम अपनी लाइफ का मॉन्टेज बना लेते हैं सॉन्ग्स पे, लाइक वी आर इन द सेम मूवी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स अ स्लो सॉन्ग, इमोशनल ब्रेकडाउन, हाउ मेनी ऑफ यू इमोशनल सीन्स देख के रो लेते हैं? मैं तो करती हूँ। आई थिंक हाफ ऑफ अस डू, क्योंकि हमारी देसियों का दिल ना थोड़े इमोशनल ज़्यादा ही होते हैं। एंड इफ इट्स अ फास्ट सॉन्ग, यू हैव लाइक योर हीरो मोड ऑन, एनर्जी, येस, कम ऑन कम ऑन, ऑल बॉयज कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि उनको हमेशा हीरोपंती करना होता है। एंड ऑनेस्टली, म्यूजिक इज द ओनली थिंग जो बिना जजमेंट के साथ रहता है और सुनने में भी अच्छा होता है। इट कैन कीप यू इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड। नाचने वाली गाना चाहिए तो नाचने वाले गाना, अगर तुम्हें इमोशनल ठंडक की राहत चाहिए तो इमोशनल गाना, अगर तुम्हें फास्ट पेस्ड म्यूजिक चाहिए तो यू कैन प्ले बादशाह सॉन्ग्स। यू हैव म्यूजिक इन एवरी इमोशन यू फील इन योर ब्रेन। दैट इज़ द मैजिक ऑफ म्यूजिक एंड दैट इज़ द मैजिक ऑफ अ रेडियो शो। सो सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM हमेशा। एंड हियर यू गो फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग। आई नो इट्स ऑलरेडी 11:43, आप सो नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्लीप, बिकॉज मेरी शो अभी 12 बजे तक और चल रहा है। सो कीप लिसनिंग टू द सॉन्ग्स आई एम प्लेइंग फॉर अंटिल अनदर 15 मिनट्स, सो आई कैन कीप यू अप एंड नॉट फील यू बोर्ड ऑन अ ट्यूजडे नाइट।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

लास्ट 10 मिनट्स एंड लास्ट पार्ट ऑफ द शो. ऑनेस्टली ये जो मास्टर्स अब्रॉड लाइफ है ना, इट्स नॉट जस्ट स्टडीज, इट्स कुकिंग, क्लीनिंग, बजटिंग, लोनलीनेस, सब कुछ एक साथ रनिंग ट्रेन मोड में होता है. और धीरे धीरे यू स्टॉप बीइंग जस्ट अ स्टूडेंट, यू बिकम समवन हु कैन एक्चुअली हैंडल लाइफ विदाउट इंस्ट्रक्शंस इन अ गुड वे, नॉट इन यू नो मस्ती वे. Because until you're 25, you can do jo bhi masti, uske baad serious bano aur apne career ko chuno. So next 10 minutes, my next track's for you guys. It's a new track from Cocktail 2 and it's starring our very lovely Kriti Sanon and Shahid Kapoor. What Kriti looks in this movie. If you have still not watched this movie, please go to your nearest theaters and watch the movie for a new modern love twist wala kind of a story.

So, Dallas, you're listening to Dilse Dallas with Snigdha on Phonesia 104.9 FM. पर आज हमारी बात हो रही थी मास्टर्स इन USA वर्सेस अब्रॉड लाइफ की रियलिटी. आई होप इट वॉज फन लिसनिंग टू यू गाइज. आपकी पुरानी यादें जाग गई होंगी जो ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी सेटल्ड है. एंड एनी स्टूडेंट स्टिल लिसनिंग टू Phonesia माइट बी फीलिंग यार ये तो हमारे साथ हो रहा है. दिस इज़ सो ट्रू एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेबल. इट्स जस्ट अब्रॉड लाइफ इज नथिंग बट ये मेसी होता है, फनी होता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है. बट इसी में तो तुम सीखते हो कि खुद को संभालना बिना किसी मैनुअल की. दैट इज द अचीवमेंट यू ऑल हैव. एंड आई होप यू गाइस हैड फन लिसनिंग टू मी टुडे. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. एंड गुड नाइट डैलिस. साइनिंग ऑफ. इट्स मी Snigdha. और सुनते रहिए Phonesia 104.9 FM हमेशा. गुड नाइट गाइज़.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम July 3rd to 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटे

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
5: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: अखियां सोनी तेरी मेरे वल हुण तक दी नहीं।

0: कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
5: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
3: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती, I'm sorry।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
3: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: He's got very little time.

0: Jana Vic.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
9: Hire moti main na chahu.
10: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: It's Lawson.
11: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
12: It's Lawson.
11: Daddy, what is the law?
13: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
17: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
19: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
18: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
19: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
18: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
19: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
20: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
21: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
22: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
21: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
22: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
23: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
21: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
23: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
23: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
2: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB Here everything is better.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड Inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
14: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
18: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
19: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults,
16: festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: This part of our show is brought to you by AG FinTax. It's one of the fastest growing tax firms in the United States, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. Trusted, efficient, and they get you ready for the future. You can call them 469-942-9888, 469-942-9888, or visit agfintax.com, agfintax.com. I have some more messages from our sponsors and advertisers that are coming up right now, and we will continue with the music right after that. Here they are, and thank you for supporting them.
1: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है, और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
2: तो पहनती क्यों नहीं हो?
1: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप,
2: तो रोज वाला ले लो।
3: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roast tazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
8: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
12: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
13: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
12: कैसे?
13: पेज 3 ईटरी?
12: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
13: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
12: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
14: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
15: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
16: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
17: इट्स लॉसन.
16: किससे बात करूं? सारी जानकारी कौन देगा?
17: इट्स लॉसन.
16: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
18: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
19: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
20: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
20: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
20: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
21: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: That track, ladies and gentlemen, was from a movie called Ludo. And the first one to give me that right answer was Kirti Paul. And Kirti wins this free item from Divibe Restaurant. It's an upscale Indian restaurant that is located inside the Foodistan in Aubrey. So congratulations to Kirti for winning this. Let's go ahead and round off this hour of the program. We will have plenty more that is happening in the next hour of the program. If there is a song you want to listen to, I'll take your requests right now. Requests, dedications, comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about. Let's take those calls. 972-235-5555. And you all do know that the Fun Asia Network has five radio stations under it. We, of course, this one that you're listening to right now, 104.9 FM. On 104.1, we have Radio Sangam. We have Tamil Radio, Radio Vanakkam, and also Punjabi Radio, Apna Punjab, that plays for you 24 hours a day. And, of course, Radio Caravan. So five radio stations. You can take your pick for those of you that understand the various languages. There is Telugu, Tamil, and Punjabi. And for everybody else, we have this radio station as well as great music on Radio Caravan also. All right, let's take your calls now. 972-235-5555. And you are tuned to your morning drive time special. Thank you very much for letting me into your cars and helping you drive to your destination. I am with you from 7 to 10 every morning, Monday to Friday. And right now, it is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
6: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है.
7: चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
12: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
7: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
18: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show. This hour of it, we will get you caught up.

0: That's my show for today. And if you would like to reach me directly, let me leave you my direct number. As soon as I leave the studios, you can call me 214-675-1754. And it is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
4: तो पहनती क्यों नहीं हो?
3: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
4: तो रोज वाला ले लो।
5: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me, it's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
8: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: Kehte hain Ayodhya mein ek rasoi thi, Sita ki rasoi. जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को
12: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
11: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: मामू देखो क्या हो गया.
15: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
15: ओए जर्मन का कमाल है.
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
15: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
16: छोटा सा मेरो मदन गोपाल. DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha from June 28th through July 4th, 2026. Experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

सोनू निगम इन दैट सॉन्ग, एब्सोल्युटली ए प्योर ब्लिस टू लिसन टू हिम इन द मॉर्निंग्स. ऐसे ड्राइव कर रहे हो आप अगर डैलस की सड़कों से, तो इस तरह के गाने ना मुझे बड़े पसंद हैं. एंड दैट इज़ व्हाई इट केम टू मी, इट अकर टू मी कि चलो ये गाना लगाते हैं. एक और गाना लगाना चाहती हूँ जहाँ पे सोनू निगम की आवाज़ ऐसी ही बड़ी मीठी सी, बहुत अच्छी सी लगती है, लेकिन लिरिक्स कुछ अलग हैं, थोड़े थोड़े रोमांटिक जोन में होते हुए भी कुछ अलग हैं. यू नो प्रॉबेबली विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. और जस्ट कीप लिसनिंग टू फनेशा रेडियो 104.9 FM. हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फनेशा रेडियो और मेरे शो पे ट्यून इन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब तक आपका साथ दे रही थी शबनम जी. वॉट एन अमेजिंग कंपेनियन दैट शी इज इन द मॉर्निंग ड्राइव टाइम आवर्स. एंड दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उनको एंड टू एवरीबडी ट्यून इन टू माई शो राइट नाउ.

लिसन यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू। तो मेरे शर्ट द बटन से मुझे याद आया कि हमारे सारे शर्ट्स के साथ ना एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है। आप में से कितने लोग एक्चुअली उस बटन को रखते हैं? आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जमाने में रखती थी, फिर मैंने देखा यार बटन टूटते नहीं हैं यार, दे आर प्रिटी नाइसली वोवन इन टू द शर्ट्स। तो फिर उसके बाद से मैंने अब रखना बिल्कुल बंद कर दिया। क्या आप भी उनमें से हैं कि सारे बटन्स आपके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं कि कभी अगर टूटे तो आप उसको ज़रूर लगाएंगे? फायदे का तो होता है दैट एक्स्ट्रा बटन ऑलवेज। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
2: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
3: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
2: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
4: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बार सुपरहिट।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड, व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
13: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route, rerouting, rerouting.
14: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
14: क्यों?
15: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
14: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
15: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभाल लेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.

एंड दैट्स एन ऑफ बीट सॉन्ग दैट आई वांटेड टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. आप किस बिरादरी को बिलोंग करते हो, वो जो कि अपने जो पॉपुलर फेवरेट्स हैं वही सुनना चाहते हो, या आप उनमें से हो जो कुछ नया डिस्कवर करते रहना चाहते हो एंड अपने डेटाबेस को और लंबा और तगड़ा बनाते रहना चाहते हो? वेल, आई बिलोंग टू द लेटर हाफ और इसीलिए कुछ ऐसे ऑफ बीट गाने मैं अक्सर लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए. यू आर ट्यून्ड इन टू गपशप गली विथ मी टू, और ऐसे में एक बहुत ही सुनाया गाना एंड वेरी पॉपुलर सॉन्ग दैट इट इज, उसका एक अलग वर्जन मैंने बहुत बहुत बहुत बहुत टाइम के बाद सुना एक्चुअली. एंड दिस इज द वर्जन जब हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है. सो दिस इज दैट वर्जन ऑफ दैट वेरी पॉपुलर टाइटल ट्रैक ऑफ साथिया. विवेक ओबेरॉय एंड रानी मुखर्जी इन एक्शन इन दिस वन.

इट वॉज क्वाइट इंजॉयबल राइट. मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, टाइटल ट्रैक नहीं था वो, हमदम सुनियो रे का एक अलग वर्जन जो आपने सुना है इस गाने में. होपफुली यू एंजॉयड इट. इट इज ऑल अबाउट इंजॉइंग म्यूजिक दैट ब्रिंग्स अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म फनेशन रेडियो 104.9 FM. बस इसी किस्म का एक और गाना प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन ए आर रहमान का म्यूजिक नहीं. यहाँ पे है जस्टिन प्रभाकरन हु हैज़ कंपोज्ड दिस नेक्स्ट ट्रैक. लेकिन उसके पहले ना कुछ हो जाए यार, ज़रूरी बातें. कुछ अच्छे अच्छे गाने लग रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी यहाँ पे ऑफिसेस, बिजनेसेस, नॉट ऑफिसेस बट बिजनेसेस की बात भी होती रहनी चाहिए. अब ये सारे ना हमारे एक ट्रेजर से हम निकाल के लाते हैं सारे गाने आप लोगों के लिए. मेरे मेमोरी ट्रेजर से मैं निकाल के लाती हूँ, और वैसे ही अगर आप अपना ट्रेजर बिल्कुल खरा रखना चाहते हैं तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज़ द वे टू गो फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. द डिज़ाइंस दैट यू गेट देयर, क्लासिक गोल्ड डिज़ाइंस, स्पार्कलिंग डायमंड्स, आपको इंट्रिकेट कुंदन डिज़ाइंस मिल जाएंगे, स्टनिंग पोल की कलेक्शंस दैट दे हैव. हर पीस में ना, हर ज्वेलरी पीस में एक सेलिब्रेशन है लाइफ के स्पेशल मोमेंट का, जो आप अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं. सो फॉर एनी स्पेशल ओकेजन या यूं ही अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, श्री कृष्णा ज्वेलर्स ज़रूर विजिट करें. 13145 सुइट 220 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को, दैट यू विल फाइंड श्री कृष्णा. इफ़ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड देम, यू नो देयर कलेक्शन. और श्री कृष्णा ज्वेलर्स का नाम यहाँ पे पूरे इज्जत के साथ लेना चाहती हूँ.

in Frisco that you will find Shri Krishna. If you've already visited them, you know their collection. और श्री कृष्णा ज्वेलर्स का नाम यहाँ पे पूरे यू नो इज्जत के साथ लेना चाहती हूँ, क्योंकि यू नो शादियों का जब माहौल होता है तब ज्वेलरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. हमारे देसी कल्चर में ज्वेलरी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, राइट. ये कुछ गाने जो प्ले हो रहे हैं इन द बैकग्राउंड, ये कुछ शादी वाले माहौल को ही क्रिएट कर रहे हैं. तो अगर आपके घर में भी शादी होना तो श्री कृष्णा को ज़रूर याद करें, उस ऊपर वाले को भी और ज्वेलर्स को भी.

वाला है. आज 70s से शुरुआत हुई हमारी और 90s तक जाने वाला है, अपर 90s तक जाने वाला है. बट इट्स गोना फील लाइक इन द लोअर ट्रिपल डिजिट्स फॉर ऑल ऑफ अस नेक्स्ट 3 days, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड ऑफ कोर्स एक जो 10 to 20% चांसेस है हमारे फोकस में रेन चांसेस का, उस पर भी हमारी आंखें रहेंगी. कल या परसों आपको मिल सकता है. एंड देर इज़ अ रेन चांस फॉर 4th of July ऑल्सो, आइसोलेटेड शावर और रंबल बाय द आफ्टरनून ऑन July 4th. दैट विल बी क्वाइट कूल आई विल से. थोड़ा सा तो शायद टेम्परेचर कम हो उससे, क्या पता. एंड वील फाइंड आउट अबाउट दैट. वील कीप एन आई ऑन दैट. बेटर कवरेज ऑफ आइसोलेटेड स्टॉर्म्स जो हैं वो संडे आफ्टरनून यानी कि 5th of July के लिए हमारे लिए लाइंड अप है. सो दिस इज द अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ. इफ यू आस्क मी द टेम्परेचर इज, लेट्स सी, इट इज एट 86 degrees. और आज का हाई, जैसे कि मैंने कहा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 97 विद अ फील ऑफ ट्रिपल डिजिट्स दैट यू विल गेट राइट हियर. एंड सो इज द केस टुमारो एज वेल. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एंड इट इज द वेदर फोरकास्ट लाइंड अप फॉर यू नेक्स्ट. भाई जुलाई की जो शुरुआत हुई है ना, अच्छी खासी गर्मी के साथ, जून का जो एंड हुआ वो भी कुछ वैसे ही, और शुरुआत जुलाई की कुछ ऐसी ही, और वार्म और मगी जो रहने

0: किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: माई टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
3: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
12: तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: भूख लगी
14: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
16: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
17: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
18: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
19: Tracks that put you on the right track.

चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें, और ये हमारी जो राहें जो मिलती हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम पे। तो एज अ फ्रेंड, आवाज़ की दुनिया के दोस्त हैं आफ्टर ऑल, तो एज अ फ्रेंड हम आपको बताना चाहते हैं अबाउट विशाल शेखर का कॉन्सर्ट, ये जो गाना था उन्हीं की कॉम्पोजिशन, एंड 12 जुलाई को कर्टिस कलविल सेंटर में यू हैव दिस चांस टू विटनेस दिम इन एक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन। और बहुत सारी तारीफें सुन रखी हैं मैंने इनके कॉन्सर्ट की, तो मैंने तो अपना टिकट बुक कर लिया है। बाकी आप लोगों की बात रही तो cashpatelproductions.com पे जाकर आप जरूर जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लें। बाकी ये भी बात जो रही वो है कि भाई फनीशा कोड यूज करते हैं तो 30% डिस्काउंट रहता है आपके लिए। और एक और बात है, और वो बात ये है कि मेरे शो पे आज आप जीत सकते हो एक कॉन्सर्ट टिकट टू विशाल शेखर लाइव इन कॉन्सर्ट। मतलब विशाल शेखर कॉन्सर्ट, विशाल शेखर लाइव इन कॉन्सर्ट, आप देख रहे हो ना कि वर्ड्स में भी ऐसे गड़बड़ी हो जा रही है, क्योंकि द एक्साइटमेंट इज रियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल। तो अगर आप एक टिकट जीतना चाहते हो और you know, अपने साथ किसी और को भी लेकर जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये मौका है कि आप हमें कॉल करें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। दैट्स व्हेन आई विल गिव अवे दिस वन फ्री टिकट। और वो कैसे, उसके लिए थोड़ा सा तो पापड़ बेलना पड़ेगा और थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा आपको। इट इज 15 minutes past 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक। 11 बजे के बाद आप लोगों के लिए वो टिकट का ऑप्शन खुलेगा। जरूर कॉल कीजिएगा 9722355555। ये सेगमेंट है डेडिकेटेड टू द फिल्म्स दैट हैव रिलीज्ड ऑन दिस डे, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री। लेट्स टेक यू टू द वन दैट रिलीज्ड इन 2011। फिल्म का नाम दिल्ली बेली, और ये जो फिल्म थी इसे लिखा था अक्षत वर्मा ने, और वो पूरा उन्होंने एंटायरली इंग्लिश में लिखा था उसको। एंड व्हेन आमिर खान डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इट, ही इनिशियली कंसिडर्ड डायरेक्टिंग इट हिमसेल्फ। और उन्होंने तब सोचा था कास्ट में वो रखेंगे रणबीर कपूर, इमरान खान और हरमन बवेजा को एज द 3 main roommates इन द फिल्म। लेकिन फाइनली जो डिसाइड हुआ वो थे इमरान खान, वीरदास और कुणाल रॉय कपूर। एंड दिस वॉज डेफिनेटली ए सुपर हिट। $11 million के बजट पे बनी थी, नहीं एक्चुअली इट ग्रोस $11 million, विच इज अराउंड 92 crore रुपीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये स्ट्रिक्ट एडल्ट रेटिंग के बावजूद, एक्सपेरिमेंटल जो ये नेचर थी इस फिल्म के, इसके बावजूद भी इट हिट द कॉर्ड विथ द ऑडियंस दैट इट फाउंड। उसी फिल्म का ये गाना हो जाए सोना महापात्रा की आवाज में।

एंड दैट्स डेली बेली लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 2011 हॉलीवुड स्पेस में. जानते हैं 2011 में आज के दिन कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? इट वॉज लेडीज एंड जेंटलमैन ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून. टू फिल्म द इंटेंस यू नो एड्रेनलिन पंपिंग विंग सूट फ्लाइंग सीन ओवर शिकागो, माइकल बे डिडंट रिलाई एंटायरली ऑन ग्रीन स्क्रीन्स. ही एक्चुअली हायर्ड रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल बेस जंपर्स हु लेप्ट ऑफ द विलिस टावर वेयरिंग अ हाई डेफिनेशन कैमरा स्ट्रैप्ड टू देयर हेलमेट्स. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ द एक्सटेंट टू विच filmmakers sometimes go to bring that realistic aspect to their film. Well, blockbuster thi ye film, aur saath hi saath ek aur film jo ki July 1st ko hi release hui thi 1998 mein, starring Ben Affleck, ladies and gentlemen. And who else with Ben Affleck? I'm trying to think here. Armageddon, the name of the film jo July 1st 1998 ko release hui thi. And that takes us in that 90s decade. Aur Bollywood film ki baat karun to us din रिलीज हुई थी, यानी कि आज के दिन 1 जुलाई को रिलीज हुई थी मोहरा. एंड द ईयर वॉज 1994. विजू शाह के म्यूजिक में तहलका.com दैट इट बिकेम एंड द फिल्म एज वेल.

0: फर्स्ट जुलाई 1994 को मोहरा रिलीज हुई थी, स्टारिंग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन एंड ऑल्सो नसीरुद्दीन शाह. ही वॉज द मेन विलन इन द फिल्म. संदीप जिंदल का काम उन्होंने किया था और इस साल जो उन्होंने काम किया, ही इज गेटिंग रेव रिव्यूज अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंसेज दैट ही हैज डन. एक तो डिग्निफाइड विजनरी जे आर डी टाटा इन मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी, मैंने बस देखना शुरू किया और मतलब क्या कमाल के लग रहे हैं. और दूसरा ऑफकोर्स बेड रिडन डिमेंशन स्ट्रिकन पार्टिशन सर्वाइवर ग्रेवाल, मैं वापस आऊंगा. मैं कमाल के एक्टर हैं यार नसीरुद्दीन शाह, और उन्हीं को सोचा कि याद करते चलें जस्ट बिफोर वी हिट द ब्रेक.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो.
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में पंचर.
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
18: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
19: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
20: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
21: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
22: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
0: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Phoenicia Radio.
1: वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और ये एक्साइटमेंट मेरी आवाज़ में जो है वो फॉर द रीज़न कि जुलाई 12th आप लोगों ने मार्क कर लिए कि नहीं अपने कैंडल कैलेंडर्स में. और अगर आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो आप जानते हैं. और बाकी जो नहीं समझ पाए, यार मतलब हम कितनी बार बताएं आपको कि भाई कर्टिस कलविल सेंटर इज़ वेयर यू हैव टू बी फॉर द विशाल शेखर कॉन्सर्ट. और अगर अभी तक आपने अपने टिकट नहीं खरीदा तो मैं आपको बता देती हूँ कि 30% डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हैं फन एशिया एज द कोड तो आपको वो 30% डिस्काउंट मिलेगा. और टिकट्स खरीद सकते हैं कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम पे जाके. लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, धमाकेदार ये कॉन्सर्ट होने वाला है. सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू गिव अवे वन फ्री टिकट टू वन ऑफ यू. अगर आप मेरे जो रिडल का शायरी रूप में जो मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आफ्टर दिस सॉन्ग, अगर उसमें उसमें जो गाने इंक्लूडेड हैं वोवन हैं इन दैट शायरी, इफ़ यू कैन टेल मी. सो 972-235-5555. 6 गानों के नाम होंगे इस शायरी में लेडीज एंड जेंटलमैन. और इनमें से जितने से जितना ज़्यादा जो भी लिसनर मुझे बता पाएगा, 6 में से जिसका भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा विल विन द टिकट. यार मैंने कहा ना कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार. आफ्टर ऑल विशाल शेखर इन क्वेश्चन ये. यार 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. तैयार रहें क्योंकि शायरी इसके बाद सुनाई जाएगी जिसमें विशाल शेखर के कॉम्पोज किए हुए 6 गानों के नाम आपको मिलेंगे.

अब अगर खुशी के मारे आपके रोना आ जाए तो बात समझ में आती है, बिकॉज विशाल शेखर विल बी इन टाउन ऑन 12th of July, लेडीज एंड जेंटलमैन. और उसी एक्साइटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए एक फ्री टिकट लेकर आने वाले हैं. मैं राइट नाउ इस शो पे गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये मौका है फिलहाल आपका. इफ़ यू गिव मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ विशाल शेखर दैट यू कैन फाइंड इन द शायरी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और 6 गाने हैं इस रिडल रूपी शायरी में, शायरी जिसमें कि रिडल है. ठीक है, तो 6 गानों के नाम हैं, उनमें से मैक्सिमम जो मुझे दे सके वही है आज का विनर. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ज़रा गौर फरमाएं और आराम से ध्यान से मन लगा के सुने. ऑलराइट, तो अर्ज किया है, तुझे भुला दिया कुछ इस कदर अपनी यादों से, तुझे भुला दिया कुछ इस कदर अपनी यादों से कि अब मनवा लागे ना कहीं और किसी और से. जब भी देखता हूँ वो आँखों में तेरी अजब सी कशिश, जब भी देखता हूँ वो आँखों में तेरी अजब सी कशिश, ये खुदा जाने कि आज भी क्यों बची है वही ख्वाहिश. कि ए जहनसीब कभी पास बैठकर करे तू दिल दिया गल्ला, कि ए जहनसीब कभी तू पास बैठ के करे दिल दिया गल्ला, तो मैं भी कह पाऊँ, हाँ मैं भी कह पाऊँ कि सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ. बताइए किन गानों के नाम विशाल शेखर के कॉम्पोजिशंस के जो हैं वो आपको इस शायरी में पता चले. ठीक है, देर आर 6 सॉन्ग्स इन दिस शायरी, एंड इफ़ यू कैन गिव मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट यू कुड फिगर आउट, टिकट आपका. जी हाँ, 9722355555 गिव मी अ कॉल एंड आई विल टेल यू कि भाई कितने सारे आप क्रैक कर पाए. ठीक है, cashpatelproductions.com पे, अदरवाइज गो एंड बाय योर टिकट्स. फनीशा कोड यूज करने पर 30% का डिस्काउंट भी है, जरूर याद रखें. वंस अगेन आई एम गोइंग टू यू नो शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू. इफ यू कुडंट फिगर इट आउट, ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, बिकॉज कुछ लोगों ने याद करके कॉल करना शुरू कर दिया है. लेट्स इंडल्ज इन अनदर विशाल शेखर सॉन्ग राइट हियर.

ऑल राइट, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी विनर मिल जाएगा. मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि मुझे दोबारा अपनी जो रिडल वाली शायरी है वो बतानी पड़ेगी एंड देन फाइनली आई विल गेट अ विनर. लेकिन गेस व्हाट, आई डू हैव अ विनर. प्लीज बिग हैंड ऑफ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अमित कुलकर्णी हियर, जिन्होंने छः के छः नाम बिल्कुल सही सही पहचाने फ्रॉम द शायरी दैट आई शेयर, जिसमें छः गानों के नाम इंक्लूडेड थे विच आर कॉम्पोज बाय विशाल शेखर. मैं दोबारा से बताने वाली हूँ एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. ओके, छः नाम है तो नाम बता दूँ क्या पहले? ठीक है, चलिए नाम बता देती हूँ, देन यू विल बी एबल टू रियली पॉइंट इट आउट बेटर. ठीक है, तुझे भुला दिया फ्रॉम अनजाना अनजानी, देर इज मनवा लागे फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर, आंखों में तेरी फ्रॉम ओम शांति ओम, खुदा जाने फ्रॉम बचना है हसीनो, जहन हसी फ्रॉम हसी तो फसी, एंड ऑल्सो दिल दिया गल्ला फ्रॉम टाइगर जिंदा है. अब जरा शायरी पे जरा गौर करें और अमित कुलकर्णी को दाद दें. ठीक है, तुझे भुला दिया कुछ इस कदर अपनी यादों से कि अब मनवा लागे ना कहीं और किसी और से, जब भी देखता हूँ वो आंखों में तेरी अजब सी कशिश, ये खुदा जाने कि आज भी क्यों बची है वही ख्वाहिश कि ए जहन नसीब कभी पास बैठकर करे जो तू दिल दिया गल्ला, तो मैं भी कह पाऊँ कि सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ. क्या बात है अमित कुलकर्णी, यू हैव क्रैक्ड इट ऑल. तो फ्री टिकट आपका फॉर श्योर, और ये फ्राइडे तक मैं आप लोगों के लिए जो फ्री टिकट का ये जो लेकर आ रही हूँ ना, बी वेरी वेरी वेरी यू नो एक्टिव ऑन दिस वन, क्योंकि फ्री टिकट फॉर विशाल शेखर कॉन्सर्ट इज लाइक टेरिफिक, मानते हैं कि नहीं? तो इसी बात पे सजदा जो वो गाना था वो लगाएं आपके लिए, सजदे में झुकता हूँ. चलिए, सजदे में झुकता हूँ का ये जो गाना है कॉम्पोज बाय विशाल शेखर, लेट्स गेट इट फॉर यू. और विशाल शेखर की ये कॉम्पोजिशन, इट इज सच अ ब्यूटिफुल वन, आई डिड वॉन्ट टू प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू. सजदे में यूं ही झुकता हूँ. पता है मैं लाइनअप करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ना लाइनअप ही नहीं करके रखा है, बट देर इज नो प्रॉब्लम दैट वी कांट फिक्स, हियर वी गो, लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. अमित कुलकर्णी के लिए एक जोरदार ताली.

इस हफ्ते के हमारे पहले विनर टू विशाल शेखर्स कॉन्सर्ट ए फ्री टिकट दैट वन ऑफ यू हैज वन इज मिस्टर अमित कुलकर्णी. कंग्रेचुलेशंस टू यू. यू नो व्हाट, आई शुड हैव टेकन यू ऑन एयर क्योंकि आपने एक के बाद एक धड़ाधड़ ऐसे आंसर दिए ना कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू विल बी माई विनर एंड दैट एक्साइटमेंट आई लेट यू गो. लेकिन हाँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो गिव मी अ कॉल बैक सो दैट थोड़ी सी तालियां हम आपके लिए ऑन एयर भी बजा लें और थोड़े से लोगों को जला भी सकें कि भाई यू आर द फर्स्ट विनर ऑफ this first free ticket for the concert which is Vishal Shekhar who will be live in action and live in concert on 12th of July Curtis Culver Center mein in Garland. Ladies and gentlemen, baakiyon ke liye bhai cashpatelproductions.com ka rasta saaf hai. Jaye aur Phanisha code use karne par 30% discount ka bhi pura fayda uthaye. And it is the excitement in the air that we are going to continue with, kyunki guess what, England वर्सेज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो ये मैच चल रहा है, इट इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज क्योंकि इंग्लैंड ने कुछ स्कोर नहीं किया है. एंड गेस वॉट, कॉन्गो दे हैव स्कोर्ड अ गोल एंड आई वॉज नॉट इमेजिनिंग दिस. मुझे क्यों लगा था कि इंग्लैंड भारी पड़ने वाली है, लेकिन यू कैन सी वॉट इज अनफोल्डिंग and that we are going to talk about in much more detail FIFA segment mein which is between 12 to 12:30. ye hai Gapshap Gali with me too. We'll let this Vishal Shekhar composition take us to a short commercial break aur wapas aake kuch aur guftagu baatein yahi pe jari rahengi on Phanisha Radio 104.9 FM.

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
1: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
3: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772, that's 972-863-7772.
10: Visit www.senadainc.com today.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई

0: Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
1: Visit www.sanadainc.com today.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
9: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
10: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
11: Tracks that put you on the right track.

लेट्स बी ऑनेस्ट, वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस वो तो कब के हमारे कोल्ड स्टोरेज में चले गए. नहीं, बट हियर इज अ ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट हिटिंग द हाफ ईयर मार्क. इट इज नॉट ए डेडलाइन. ये तो बस एक छोटा मोटा आप समझे कि इंटरमिशन है अभी. थिंक योर ईयर लाइक अ क्लासिक बॉलीवुड फिल्म. ठीक है, क्योंकि हम बॉलीवुड से इतना लगाव रखते हैं तो बॉलीवुड के परे सोच भी नहीं पाते हैं. सो हियर इज द थिंग, फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत ड्रामा हो चुका है हमारा, लेकिन सेकेंड हाफ में सब मसाला है. द रियल मैजिक, द बिग कमबैक, और उसके साथ हैप्पी एंडिंग होने वाली है हमारी इस साल की. सो इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ योर ईयर डिडंट गो एज प्लान्ड लेट्स से, तो कोई बात नहीं है यार, पिक्चर अभी बाकी है. यू स्टिल हैव 183 डेज लेफ्ट टू राइट ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी फॉर योरसेल्फ. और इस स्टोरी में हम आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इट इज 1st of July 2026. लेट्स मेक इट वर्थ वाइल. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: यादें हैं।
1: And take a deep breath, ladies and gentlemen. Almost midday. It's midweek, right? और अपने कैलेंडर की तरफ तारीख देखिए. तारीख है आज की 1st of July, and we are officially starting the second half of 2026, correct? यानी कि पूरे 6 महीने खत्म हो चुके हैं और अगले 6 महीने are standing right in front of us. ऐसा नहीं लगता कि भाई जनवरी जो है पिछले हफ्ते की ही बात लगती है, लेकिन इस बीच हमने कितना कुछ किया यार. सम गोल्स वी एब्सोल्युटली क्रश्ड, कुछ जो शायद टूट भी गए, एंड

दिल गुर्दा जान जिगर, ये सारी बातें हमारी ना फिल्मों के गानों में आती रहती हैं, और ऐसे में आंखों की बातें तो डेफिनेटली आती हैं। और आंखों की बात करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। इट इज अबाउट विजनरी आई केयर, एंड अगर आप सोच रहे हैं टू से गुड बाय टू ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, और आप अगर लेसिक करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देर आर मेनी अदर ऑप्शन अवेलेबल। डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला के साथ आप कनेक्ट करें, या फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो। इनका अप्रोच बिल्कुल सिंपल है कि वो पहले आपको बताएंगे आपकी कंडीशन के बारे में और आपके ऑप्शंस के बारे में, सो यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योर आईज विथ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। मतलब डॉक्टर आपके लिए डिसीजन ना ले, आप खुद इतने समझदार बन जाएं आफ्टर टॉकिंग टू द डॉक्टर दैट यू आर एबल टू फिगर आउट कि भाई आपके लिए क्या सही होगा, एंड टू लर्न अबाउट योर ऑप्शंस एंड सी इफ यू आर ए कैंडिडेट फॉर लेसिक। आप कॉल कर सकते हैं एट 214-972-2020। इनकी वेबसाइट lasik-pleno.com, एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट मिस्टर एक्चुअली डॉक्टर शहजाद, जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, वेल ही विल वॉक यू थ्रू एवरी ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, और अपना ऑनेस्ट रिकमेंडेशन वो आपको देंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही होगा। सो यस, डोंट फर्गेट टू मेंशन फनीशिया 2020 अगर आपको वो फ्री कंसल्टेशन चाहिए हो तो। और वो फ्री किसको नहीं चाहिए होता, इसीलिए फनीशिया 2020 का ये जो कोड है ये बिल्कुल ना भूलें, एंड डू गो टू विजनरी आई केयर इफ यू आर सीकिंग हेल्प इन टर्म्स ऑफ योर आईज। वंस अगेन, आंखों को जो नहीं दिख रहा है वो आपके दिमाग का दिमाग वो फिल अप द ब्लैंक्स कर देता है। यानी कि जो गाने मैं आपके लिए चला रही हूँ ना, आई एम श्योर एक बैकग्राउंड पिक्चर आपके दिमाग में चल रहा होगा इन सब गानों के साथ, राइट? इफ दे आर प्लेइंग, देन लेट्स गेट यू अनदर रीमेक ऑफ अनदर पॉपुलर सॉन्ग एंड सी इफ यू लाइक इट। एज फार एज द सॉन्ग दैट आई प्ले जस्ट नाउ, आई लाइक इट बट नॉट इमेंसली। कैन आई बी रियली ऑनेस्ट अबाउट द सॉन्ग्स दैट आई लाइक एंड डोंट लाइक? ये क्या किसी को ऑफेंड कर सकता है क्या? मैं आई एम जस्ट वंडरिंग।

Listen, this part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US. And इन्होंने ना decades से एक strategic tax planning जो इन्होंने इस्तेमाल की है and bookkeeping experience जो इनके पास है, that has enabled small business owners succeed and build wealth by helping them save hundreds of thousands of dollars. तो अगर आपको भी अपने small business या अगर individual needs पर भी अगर based कुछ business में अगर आपको बचाना है and we are talking about thousands of dollars, ladies and gentlemen, hundreds and thousands of dollars that we are talking about, तो आपको पता होना चाहिए कि the simple way to do it is getting in touch with AG Fintax. AGFintax.com इनकी वेबसाइट है और नंबर है 469-942-9888. Once again, they are trusted, efficient, and they can get you all set for your bright future. Once again, that number is 469-942-9888. Ladies and gentlemen, ये अगली आवाज जो है ये है दर्शन रावल की and I want to wish Lisa a very happy birthday in advance. और Lisa, आपके लिए ये जो sort of re-imagination of एक लड़की को देखा जो लेकर आने वाली हूँ, द वॉइस इज दर्शन रावल्स, एक ऐसी आवाज जो हॉबी के तौर पे शुरुआत हुई थी एंड ही रियली वॉन्टेड टू परस्यू, बट यू नो हमारी जो एक देसी मेंटालिटी हमारे फैमिलीज की होती है कि नहीं यार डॉक्टर इंजीनियर IAS ऑफिसर बनेगा बच्चा, उस तरह का एक कुछ मेंटालिटी था घर का. लेकिन इट वॉज अंटिल ही यू नो स्टार्टेड पोस्टिंग हिज कवर सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड और वो जो एक वायरल हुआ गाना, उसके बाद there was no looking back for Darshan Rawal. So talking about hobbies, we'll see if we can get you to talking about your hobbies on air right after this song.

पता है कितने सारे ऐसे सिंगर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी जो जर्नी है एज अ हॉबी शुरू की है, और वो तो हॉबी के तौर पे जो शुरुआत हुई उसके बाद उसमें गया उनका हार्ड वर्क, उसमें गया उनका पैशन, उसमें गया उनका फिर मतलब कई सारे दिन बहुत सारी मेहनत के, और दैट वॉज दैट इज़ द की इंग्रेडिएंट फॉर ए पैशन टू बिकम ए टैलेंट, राइट? बर्नार्ड शॉ ने कुछ कहा है एंड मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, और सोचा कि आप लोगों से भी पूछा जाए आपके हॉबीज़ के बारे में. आपकी हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए एक शब्द में, व्हाट इज़ योर हॉबी, दैट्स ऑल आई वांट टू नो. क्योंकि बियॉन्ड द वर्क दैट यू डू देर इज इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट टू हैव ए हॉबी, राइट? तो पंचतारा की तरफ से वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू गेट दिस फ्री आलू कुलचे या छोले भटूरे, जो आप जीत सकते हो राइट नाउ राइट हियर. याद रखिएगा अपना punjab.hd3 और फनीशिया को मेंशन करना आप बिल्कुल ना भूलें, और साथ में पंचतारा रेस्टोरेंट का जो इंस्टाग्राम हैंडल है और अपना पंजाब का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो डिपेंडिंग ऑन द डे, यस, वन ऑफ यू कैन विन आलू कुलचा या छोले भटूरे. किस दिन जाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो क्या है ना कि बर्नार्ड शॉ साहब ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि हैप्पी इज द मैन हु कैन मेक ए लिविंग बाय हिज हॉबी. ऐसा होता तो क्या बात है, राइट? लेकिन ऐसा ना भी हो तो कोई बात नहीं. हॉबीज तो ऐसे भी होनी चाहिए दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ डाइव इन टू राइट आफ्टर योर वर्क फॉर ऑफिस योर होम, राइट? टू वाइंड ऑफ द डे इन अ हैप्पियर वे. वाइज पीपल हैव वाउच फॉर द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दैट इट ब्रिंग्स विद इट. तो दो ऐसी हॉबीज आप सोचें, यू नो, थिंक अबाउट देम, या लेट्स से कल्टिवेट करें जो आपको खुशी देती हो, यू नो, आपको जो करने में मजा आता हो. और क्या अमेजिंग बात होगी ना कि अगर खुशी के साथ साथ ये हॉबीज पर्पस भी आपकी ज़िंदगी में ऐड करे. सो व्हाट आर द टू गुड हॉबीज टू हैव? चलिए एक तो मैं आपके नाम कर देती हूँ, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक हॉबी आपके हेल्थ के लिए होनी चाहिए कि आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें. तो बेसिकली सेइंग कि योगा, वॉक, जिम, जुम्बा, वॉट एवर यू थिंक, एक कुछ स्पोर्ट खेलने का एक नया हॉबी कल्टिवेट करें या कुछ. ये तो एक हो गया कि होना चाहिए इंसान में. वो दूसरी हॉबी आपके पैशन के साथ जुड़ा है, वही तो जानना चाहती हूँ. टेल मी योर हॉबी लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप अपने घर के काम के बाद या ऑफिस के काम के बाद कौन सी ऐसी हॉबी है में आप इंडल्ज करना पसंद करते हो. 9722355555 एंड यू आर प्लेइंग फॉर पंचतारा रेस्टोरेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, जरूर कॉल करके मुझे बताइए कि आपकी हॉबीज आफ्टर योर वर्क क्या हैं. जस्ट वन वर्ड आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर, आपकी हॉबी क्या है. दैट स्टेम्स आउट ऑफ पैशन, योर पैशन हियर. एक और रीमेक धमाल 4 के इस गाने से, चलिए हम रीमेक्स का ये जो जर्नी है ये कंप्लीट करेंगे. संजू राठौड़ एट द हेल्म ऑफ इट, गुलाबी साड़ी, वो सुना है ना, वो धमाल 4 में इंक्लूड किया गया है, सुन लीजिए.

0: आई होप दिस सॉन्ग हेल्प नितेश टू डांस अ लिटिल मोर, क्योंकि डांसिंग इज हिज पैशन और वही इनकी हॉबी है. और इसके साथ साथ कृतिका हु सेड सिंगिंग इज हर पैशन एंड हर हॉबी. और हमें कुछ और कॉल्स मिले जहाँ पर इन जनाब का नाम लेना मैं भूल गई, लेकिन ही हैज़ अ पैशन ऑफ रिमेंबरिंग ऑल द बर्थडेज विच आई एम एक्सट्रीमली बैड एट, लेट मी टेल यू ऑल. सो ग्रेट गोइंग देयर जेंटलमैन. एंड एक और जिन्होंने कहा कि वो अपने ऑफिस के काम में और घर के काम में इतनी बिजी रहती है क्योंकि एकता कपूर के वो सीरियल्स देखना उनका पैशन है, उनकी हॉबी है. शी इज़ नॉट एडिक्टेड टू टीवी शी सेड, बट येस शी लाइक्स टू सी, क्योंकि वो ड्रेसअप करना जो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, यू नो मंडे टू सैटरडे नहीं हो पाता है, इतनी बिजी रहती हैं कि इट इज़ लाइक अ रिलैक्सेशन फॉर हर. लेकिन हमारे आज की विनर है नीलू. नीलू जिन्होंने कहा कि कुकिंग इज हर हॉबी एंड शी लव्स डूइंग इट व्हाइल लिसनिंग टू अस ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कुकिंग के साथ साथ वो गाने भी सुनती हैं और इस इन सब के साथ साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है जब वो डांस करती हैं. तो नीलू कॉल मी बैक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
8: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
9: जहाँ हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Documents या parcel भेजनी है?
16: हाँ.
15: घर relocate करनी है?
16: हाँ.
15: गाड़ी भी transport करना है?
16: हाँ भाई, हाँ.
15: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: डॉक्यूमेंट शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: बेटा 95% आए?
18: हाँ मम्मी।
17: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
19: मेरा?
17: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
19: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.

warm welcome to all of you tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. It is literally very, very hot outside, 90 degrees right now, and we are going to reach 97 for a high today. और हमारा जो वो heat index है वो triple digits में होने वाला है, तो वो feel जो है वो triple digit का ही आने वाला है. It is light breeze that we are having today, not as much as what we had few days back. तो थोड़ी बहुत हवा भी is a blessing. Let's count those blessings. And talking about heat, yes, गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है in terms of FIFA fever as well. So we'll talk about that in just a bit, ladies and gentlemen. और अगर बुखार की बात, फीवर की बात हो तो डॉक्टर्स की याद आ ही जाती है. और ऐसे में Passion Health Primary Care is the place that you must remember कि हमने आपको बताया था, ठीक है ना? क्योंकि Passion Health Primary Care एक ऐसी जगह है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम्स उनके साथ हैं, जो आपके इमरजेंसी या हॉस्पिटल एडमिशन्स को कम कर देते हैं. अंडर वन रूफ दे विल टेक केयर ऑफ ऑल योर ए टू जी हेल्थ. सो याद रखें कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और आपका अपॉइंटमेंट जो होता है वो तसल्ली से डॉक्टर्स आपको देखते हैं. दे गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर सो डिजर्व व्हेन यू गो टू द डॉक्टर्स, राइट? तो इसीलिए याद रखें, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है वो नाम. और ये भी याद रखें साथ में कि passionhealthphysicians@gmail.com इज दैट email address for all those primary care doctors, endocrinologists, pediatricians and psychiatrists who are looking for a full-time or part-time opportunities. Aap logon ke liye ye option hai at Passion Health Primary Care. Aap text kar sakte ho at 217-454-4639, and do remember once again, passionhealthphysicians.com is the website. And for the rest of the listeners listening to us right now, 214-666-6259 है इनका नंबर. Passion Health Primary Care. We were talking about our passion, right? And if soccer is your passion, बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं FIFA के बारे में. कुछ अपडेट्स, कुछ ट्रिविया. This is Gapshup Gali with me too.

It is 1st of July, ladies and gentlemen, और FIFA का जो फीवर चढ़ा हुआ है हम सबको, उसी में बताना चाहती हूँ आज 3 गेम से 1 गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है बिटवीन इंग्लैंड एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड कॉन्गो इज लीडिंग बाय ए गोल और इंग्लैंड काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है. एंड दिस इज बीइंग प्लेड at Atlanta Stadium, and we'll find out and we'll keep you posted about this game, England versus Congo का ये जो game चल रहा है. We are already more than an hour into the game, और जैसे कि मैंने कहा कि Congo ने अभी तक 1 goal बना लिया है and England is struggling. We'll keep you posted on that. दूसरा game जो 3 PM को शुरू होगा, it is Belgium versus Senegal, heading to Seattle Stadium. दोनों teams ने अपने group games जो हैं उसमें 5-5 goals बनाए हैं, पर सेनेगल के लिए बिगेस्ट वरी इज देयर स्टार कीपर एडवर्ड मेंडी इज आउट विद अ नी इंजरी. सो एक्सपेक्ट अ प्योर अटैकिंग फेस्ट एट दैट गेम, इन दैट गेम दैट यू विल बी सीइंग. एंड देन ऑफ कोर्स 7 बजे शाम को USA वर्सेस बोस्निया एंड हर्जेगोविना, दैट इज गोइंग टू बी प्लेड, द बिग वन फॉर द होम फैंस. टीम USA को एक मैसिव बाउंस बैक चाहिए आफ्टर लूजिंग द लास्ट ग्रुप मैच, एंड द होम क्राउड विल बी रॉकिंग इट, वी नो दैट. पर इसी वजह से मुझे लगता है कि US टीम पर भी काफी प्रेशर बना हुआ रहेगा. नाउ 3 matches, 0 रूम फॉर एरर दैट इट इज, जो हारा वो इस FIFA से पूरी तरह से आउट होने वाला है. सो जी जान लगा के सब खेल रहे हैं, एंड वी वांट टू विश आवर टीम USA ऑल द वेरी बेस्ट. एंड इट इज द लास्ट सेगमेंट विच ब्रिंग्स यू द FIFA अपडेट्स राइट हियर ऑन माय शो जिसका नाम है गपशप गली.

एंड वंस अगेन द अपडेट फ्रॉम एटलांटा स्टेडियम. और ये कॉन्गो और इंग्लैंड के बीच जो चल रहा है 1-0 राइट नाउ. एंड इंग्लैंड एज आई सेड इज स्ट्रगलिंग. एंड ये काफ़ी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स होगा. मुझे पता नहीं पूरा यकीन था कि इंग्लैंड इज गोइंग टू विन दिस वन. बट येस राउंड ऑफ 32 दैट इज ऑन गोइंग. और बस दो दिन और बाकी है, उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है. एंड देन द राउंड ऑफ 16 फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप बिगिंस ऑन सैटरडे July 4th, ladies and gentlemen. और ये Tuesday July 7th तक चलने वाला है. यानी कि आपका लॉन्ग वीकेंड मुझे कमाल का लग रहा है. बड़े एक्टिव रहने वाले हैं. भले आप खेल नहीं रहे हो, लेकिन हम मैदान में नहीं होते हुए भी वही एनर्जी लेकर आते हैं. और वही एग्जॉस्टन होता है आफ्टर द मैच इज ओवर, राइट? क्योंकि वो एक्साइटमेंट, वो चीयर करना, वो उफ करना, उफ, वो सारी चीज़ें काफ़ी एग्जॉस्ट कर देती हैं आपको, राइट? लेकिन येस, सैटरडे July 4th को इट इज़ गोइंग to be Canada versus Morocco and Paraguay versus France. Sunday July 5th को Brazil versus Norway और Mexico के साथ वो टीम खेलेगी जो अभी जीतेगी. यानी कि either England या Congo. ये तो वक्त ही बताने वाला है on this ongoing match का result क्या होगा. वो टीम Mexico के साथ खेलने वाली है Sunday July 5th को. And then it is Monday July 6th and Tuesday July 7th जिसके लिए अभी tentatively कोई भी टीम नहीं फाइनलाइज हुई है. कोई भी हर टीम टेंटेटिव है बिकॉज वो सारे गेम्स अभी खेलना बाकी है. और भी कुछ अपडेट्स एंड ट्रिविया आप लोगों के लिए राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. एंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिस्टर हुसैन पंजवानी ऑफ ड्रीम होम मॉर्टगेज दैट इज अप फॉर यू नेक्स्ट.

0: पहली बार जब इस गाने को सुना था ना, उसका एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का था. लेकिन एवरी टाइम आई प्ले दिस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, मुझे वो एक्साइटमेंट अभी भी रहती है. दिस एड शीरन एंड अरिजीत सिंह कोलैबोरेशन वाज फैब्यूलस, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. वैसे हर पहली चीज़ की ना बहुत एक्साइटमेंट होती है. अगर आप भी अपना पहला घर लेने की सोच रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट होगी. या अगर आप अपने करंट मॉर्गेज को रीफाइनेंस करना चाहते हैं, डोंट लेट द पेपर वर्क और द मार्केट इंटिमिडेट यू. ड्रीम होम मॉर्गेज आपके लिए एक बहुत ही आसान जवाब है टू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड. लाइसेंस्ड अक्रॉस ऑल 50 स्टेट्स, बट दे आर राइट हियर इन आवर बैकयार्ड इन डैलस. तो ज़रूर आप अपने चाहे बैड क्रेडिट को नेविगेट करना हो, या पहली बार आप यू नो फर्स्ट टाइम बायर हैं, या यू नो रेट लॉक्स करना चाहते हैं, ऑल दैट कम्स विद बाइंग और रीफाइनेंसिंग. आप जरूर ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ जुड़े. मिस्टर हुसैन पंचवानी इज ऑन माय शो एवरी मंडे बिटवीन 10:30 to 10:40. बहुत सारे सवालों के बहुत क्लियर जवाब होते हैं इनके पास. यू कैन इमेजिन इन दोज 10 मिनट्स ही इज एबल टू एक्सप्लेन सो मच टू यू. तो अगर आप इनके साथ कंसल्टेशन अगर करते हैं तो कितना कुछ और समझने को मिल सकता है एंड कितना हेल्प मिल सकता है आपको. फॉर दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर सीकिंग, 9722455626 इज द नंबर टू कॉल. dreamhomemortgage.com इज द वेबसाइट टू गो.
1: I was it. That's what I'm saying now. You're getting me.
2: You guys want to audition? Yeah?
3: Roll ho jayenge. Mat karo.

दिस इज द फीफा फीवर सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, और इस आखिरी सेगमेंट में कुछ मैंने सोचा कि जानकारी आप तक पहुंचाई जाए कि ये शायद कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि फीफा जनरेट्स ओवर व्हाट $11 billion ड्यूरिंग इट्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट साइकिल्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोस्ट ऑफ इट गोज बैक टू द स्पोर्ट इट्सेल्फ, वो जो जितना भी डायरेक्ट इनकम होता है इनका, एंड माइंड यू एवरीथिंग गोज बैक टू फीफा, वो ब्रॉडकास्ट casting rights, sponsorship, ticketing and hospitality, licensing and merchandise, all those go back to FIFA. Aur FIFA usse redistribute karta hai. It distributes a portion back to global football through development programs and prize money, of course, that goes to the winning teams and the players as well and all of that, right? Now, if the direct ticket cash and broadcasting billions go straight into FIFA's bank account, it leaves us with the ultimate question ki to phir ye jo countries hai, ye host karne ke liye itni marti kyun hai yaar? Why do countries fight so hard and spend billions of taxpayer dollars to bring the tournament to their soil if they aren't pocketing the direct profits? राइट, ये एक बर्निंग सवाल है और इसका जवाब आपको आज क्लैरिटी के साथ देने वाले हैं हम राइट हियर इन गपशप गली विथ मी टू. तो फर्स्ट अप, ये पूरा टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए एक जो परमानेंट ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट बन जाता है, दैट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस. इवन आफ्टर द फैंस लीव, द मैसिव एक्सपोजर लीड्स टू ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ऑफ कोर्स फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स फॉर द नेक्स्ट डेकेड एज वेल. दूसरा कारण ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवे एक्सपेंशंस, airport upgrades, beautifying the city, even clearing up city for hooligans, you know, ye sari cheeze jo ki local government ho sakta hai ki gazillion years le, just exaggerating here, but ye kafi fast tracked ho jata hai and it finishes in 4 years. To ye city altering impact jo hota hai ye kitna meaningful hota hai, can you imagine? Or finally, on a geopolitical level, hosting is the ultimate soft power victory, ये कहा जा सकता है. ये host country की जो image है एक तरह से cement कर देती है as a safe, highly capable and technologically advanced global leader, और साथ ही साथ opening doors for massive international trade deals. So it turns out the real prize isn't the money made during the tournament, but the permanent upgrade a country gets on the world stage. Matlab kharcha aaj ka hai, par profit ka silsila agle 10 saal tak iska milk karne wali hai country. For example, Dallas mein jo international hamare fans aaye hue, wo itne sare reels bana rahe hain Dallas ke khane ke, the feel, all of that, right? To Dallas mujhe lagta hai this long term legacy is certainly worth the massive upfront cost. क्या कहते हैं आप? क्या आप agree करते हैं मेरे साथ? Hopefully yes, because मेरे तो भाई जाने का वक्त हो गया है. I'm going to make a way for Simi here.

0: 8:29, ladies and gentlemen, just getting ready to wind up my show right here on Phanisha Radio. मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे. This is me too signing off for the day.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख.
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी.
13: माय टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPS सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर

0: planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com. प्रोफेशनल एडवाइस।
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभाल लेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वैसे आपकी और मेरी प्रेम कहानी जो है उसको तो लफ्जों में ही बयां करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, हम देख तो सकते नहीं एक दूसरे को। आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो दी आफ्टरनून अड्डा। और इससे पहले कि आज का शो का टॉपिक वगैरह के बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि हम विश करें हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ आवर रेगुलर लिसनर मिस्टर राम कुमार। सो हैप्पी बर्थडे डियर। और अभी उन्होंने हमारी बात हो रही थी और हमें पता चला कि बर्थडे है 1 जुलाई। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? और 1 जुलाई से याद आता है कि भाई साल का आधा टाइम तो खत्म हो गया, 2026 का आधा साल ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है गाइज। और ये परफेक्ट टाइम है अपने लाइफ का हाफ टाइम एनालिसिस करने का, गोल्स के बारे में, मेमोरीज, रिग्रेट्स, अचीवमेंट्स और सेकेंड हाफ की क्या प्लानिंग है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सोचिए ज़रा, जनवरी में हम सब ने कितने रेजोल्यूशंस बनाए थे ना, कि जिम ज्वाइन करेंगे, हेल्दी खाएंगे, पैसे बचाएंगे, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम कम करेंगे लाइफ में। और अब जब जून खत्म हो गया है, जुलाई आ चुका है, तो हमें बात कर लेनी चाहिए उन रेजोल्यूशंस के बारे में। सो व्हाट्स योर स्टोरी? हाफ ईयर इज डन और 2026 का हाफ ईयर रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे हम। आपने जो सोचा था जैन में जिन रेजोल्यूशंस के बारे में, उसका क्या हाल चल रहा है? आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 9722355555। और ये गाना तो आज बर्थडे बॉय राम कुमार के लिए डेडिकेटेड है।

Guys, now that 2026 is officially halfway done, what is your plan for remaining part of the year? और जनवरी में जो हम सब ने इतने motivational reels देख के नए इंसान बनने निकल पड़े थे, उसका क्या हालचाल है? फरवरी आते आते motivation और gym membership दोनों थोड़े ठंडे तो पड़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, हो सकता है आप अभी भी track पे हो। तो इस साल का resolution क्या था? क्या आप अभी भी उस पर काम कर रहे हैं? चंगा चल रहा है सब? कौन सा रेजोल्यूशन सिर्फ जनवरी तक ही चला? जिम मेंबरशिप ली थी, कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं? डाइट स्टार्ट की थी या सेविंग्स चैलेंज किया था? एंड इट्स गोइंग वेल और इज इट नॉट गोइंग वेल? सोशल मीडिया डिटॉक्स का क्या ख्याल है? चल रहा है सब सही से? बताइए हमें बाय कॉलिंग अस एट 972-235-5555।

0: आज हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि भाई आपको अपना रेजोल्यूशन कहाँ तक अभी दिख रहा है, क्या ट्रैक पे दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो काफी पीछे छूट गया या छूट गई, बट अभी भी देर नहीं हुई है, अगले 6 महीने हैं, तो जो भी जनवरी वगैरह में सोचा था वो अभी भी कर सकते हैं गाइस। कुछ लेट वेट नहीं होता लाइफ में, जब जागो तब सवेरा, वो तो आपने सुना ही होगा। हमें बहुत सारे लिसनर्स के कॉल आए और बहुत अच्छा लगा उन लोगों से बात करके, और उनके रेजोल्यूशन के बारे में हमने बात की। सुरोमा जी ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि हम जब जिम के बारे में बात कर रहे हैं और जनवरी में सोचा था कि जिम जाएंगे और अभी वो जिम के बाहर ही थी, तो वो काफी प्राउड फील कर रही थी और मुझे भी उनसे बात करके काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला और इंस्पिरेशन भी मिला। एंड द सेकेंड कॉल वॉज फ्रॉम तरल जी, एंड उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव रेजोल्यूशन आई वुड से लिया था कि वो बेडरूम में फोन लेके नहीं जाएंगी, मोबाइल फोन, एंड शी इज मेंटेनिंग इट, कि वो बेडरूम में नहीं लेके जा रही, दैट्स हर पर्सनल स्पेस, वो वहां सिर्फ रेस्ट कर रही हैं और मोबाइल में सोशल मीडिया वगैरह नहीं देख रही। इज इट इंटरेस्टिंग, व्हाट्स योर स्टोरी, बताइए। वैसे वक्त हो गया है अभी ब्रेक का, मिलेंगे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas, simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas, powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen,
2: official tax and finance partner AG FinTax,
1: official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja,
2: in association with Passion Health Primary Care.
3: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Not just that, from July 3rd to 5th, Tandoori Flame celebrates Red, White and Spice Festival. Free mocktail with every entree purchase. And kids under 10 get free ice cream. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
11: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
12: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
13: Calculating route, rerouting.
12: Rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के स्मार्ट लोग जानते हैं, डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत, find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
14: ये तारा वो तारा हर तारा।
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: देखिए, दिल दिया गल्ला तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बिजनेस की गल्ला भी कर लेनी चाहिए। आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। मैं बिजनेस की गल्ला की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का दिल उनके बिजनेस में ही होता है। वो तो चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी लें, बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ नया कुछ अपना करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो होता है फंडिंग का। लेकिन फिकर नॉट, टेंशन नॉट, आज हमारे फोन लाइन पे मौजूद हैं SBL लोन एक्सपर्ट, जो लोगों को बिजनेस परचेस, फ्रेंचाइजी स्टार्टअप और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन ऑप्शन समझने में मदद करते हैं। हाय शाहिद, यू आर ऑन एयर, वेरी वार्म वेलकम टू फाइनेंशियल रेडियो।
1: थैंक्स फॉर हैविंग मी।
0: ओके शाहिद, आपसे एक सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ माय लिसनर्स कि बिजनेस लोन अप्रूवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्रेडिट स्कोर, कोलैटरल या कैश, क्या होता है जिसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए?
1: इसका आंसर सरप्राइजिंग है और हम इसके बारे में ऑलमोस्ट ओवर वीक, दो वीक से बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने पहले इसको मिस कर दिया है, दे नीड टू लिसन टू दिस इन रियल एंड अंडरस्टैंड। अगर आप बिजनेस खरीदना चाह रहे हो या मे बी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो और एग्जिस्टिंग आपके चलते हुए बिजनेस में आपको लोन चाहिए, जब कोई कॉल करता है तो पहला सवाल ये आता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, मुझे लोन चाहिए, या मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ और मुझे लोन चाहिए, और अब क्या क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट है। एंड आई वुड लाइक टू लेट पीपल नो, जब अंडरराइटर या लेंडर आपका लोन रिव्यू करता है तो सबसे पहली चीज बिजनेस लोन में वो कैश फ्लो देखते हैं। क्रेडिट इज नॉट द नंबर वन क्राइटेरिया। दैट डज नॉट मीन क्रेडिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कैश फ्लो। अगर आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो और उसकी महीने की लोन पेमेंट, एक एग्जाम्पल देते हो, अगर $5,000 आने वाली है, एनुअल पेमेंट $60,000 है, सो दैट बिजनेस नीड्स टू हैव सफिशियंट कैश फ्लो, सफिशियंट बॉटम लाइन टू सपोर्ट द $5,000 मंथ पेमेंट व्हेन यू आर बाइंग इट। तो सेलर के पास उतना रेवेन्यू होना चाहिए। आपका अपना बिजनेस चलता हुआ बिजनेस है, आपको वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन का लोन चाहिए, सेम थिंग, जितनी आपकी पेमेंट है उतना कैश फ्लो होगा, then you can qualify for the loan even if you have a score as low as 625. Let's say आपका score 800 है, people assume कि ओ मेरा score तो बहुत अच्छा है, मुझे loan मिलनी है। अगर आपका score 800 है लेकिन business पैसा नहीं बना रहा है या business में room ही नहीं है loan की payment का, तो वो 800 का score काम नहीं आएगा। Bottom line is कैश फ्लो इज द किंग। जैसे कैश इज किंग बोलते हैं, वैसे बिजनेस लोन में do not assume and do not overthink about your credit. Call us, we will help you analyze and see if your business can support the loan payment. Lot of people cannot just look at the P&L and say ki, oh, isme to mujhe kaise pata chale ki isme cash flow hai ya nahi hai. That's where we come in. We can help you. If you're buying a business or you're an existing business owner, either way, call us, provide us your revenue and we'll let you know what loan amount you can qualify for.
0: That's a great, Shahid ji. Would you mind mentioning your website or कैसे आपको contact कर सकते हैं?
1: They can reach me on my direct line 817-786-3338, 817-786-3338. एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक्चुअली क्विकली, ये सेम रूल अप्लाइज टू रेंटल प्रॉपर्टी ऑल्सो। मेनी पीपल हु आर वर्किंग और मेनी पीपल हु आर बिजनेस ओनर, वो साइड पे पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और सेम उनको इश्यू होता है कि मेरी क्रेडिट पे तो मैंने कार ली हुई है, घर लिया हुआ है, मेरे पर्सनल लोन्स है, क्या मैं ये रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कैसे क्वालिफाई होऊंगा? वी हैव लोन प्रोग्राम्स वेयर वी लुक एट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड व्हाट काइंड ऑफ रेंट इट कैन जनरेट। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट बायर्स इनकम, बायर की इनकम, बायर की क्रेडिट को छोड़ के हम प्रॉपर्टी की वैल्यू और प्रॉपर्टी कितना इनकम जनरेट कर सकती है उसके बेस पे लोन कर सकते हैं।
0: That's great. I think listeners को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी जो भी लोन ऑप्शंस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहिद जी, हैव अ गुड डे एंड विल कनेक्ट विथ यू अगेन।
1: थैंक्स फॉर यू।
0: By the way, वो अब एक सॉन्ग का वक्त आ गया है जो काफी फेमस चल रहा है और काफी ट्विस्टी टैंगी सा है। इट इज फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा फ्रॉम इम्तियाज अली।

रात के 2:30 तो बिल्कुल ही नहीं बज रहे, भरी दोपहर के 1:20 हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी पहली बार मोहब्बत की है उनके लिए तो दिन रात दोपहर सब एक ही है। वैसे अब वक्त आ गया है गिव अवे राउंड का, तो तैयार हो जाइए अपनी उंगलियां आपके मोबाइल फोन पे और कान मेरी आवाज पे। जी हाँ, अगर आप जीतेंगे तो आपको मिलेगा $10 ऑफ ऑन बिलिंग ऑफ $50 कहाँ पे, चंडीगढ़ बाइट्स। आई मीन इनका खाना इतना टेस्टी है, और तो और ये मंडे टू फ्राइडे इनके पास स्पेशल थाली भी होती है लंच में, जो हर दिन ऐसा रोटेट करते, यू विल नॉट गेट द सेम डिश एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये लोकेटेड है मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, तो आप जरूर जाएं, और अगर आप जीत गए तो आप तो अपने डिस्काउंट के साथ भी जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, एक छोटा सा क्यूट सा रिडल है जो मैं अभी पूछने वाली हूँ आपसे, और वो ये है कि भाई एक ऐसी चीज़ है जिसके पास सोने की जगह तो है, लाइक बेड तो है, लेकिन वो कभी सोता नहीं है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? आपको बताना है मुझे, समथिंग दैट हैज गॉट बेड बट इट नेवर स्लीप्स, वॉट इज इट? ठीक है, आपको कॉल करके बताना है @972-235-5555।

खैर सुभान अल्लाह, तो हमें आदित्य को कहना चाहिए क्योंकि वो जीत चुके हैं आज का गिव अवे राउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस आदित्य। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास बेड तो है लेकिन वो सोता नहीं है, और इसका आंसर था रिवर। कुछ लोगों ने फ्लावर बेड भी बोला, विच इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन हमारे पास एकदम फटाफट जो कॉल आया ना वो आदित्य का था, तो आज का गिव अवे जो है उनके नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड टिल द ब्रेक प्लीज एंजॉय द नेक्स्ट सॉन्ग विच is a foe.

0: वैसे ओफो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूज और गिव अवेज भी साथ लेके आई हूँ, तो बने रहिए विद फर्नीचर रेडियो 104.9 FM। और अभी अभी हमें एक कॉल आया फ्रॉम मरियम एंड सोहेल रिक्वेस्टिंग फॉर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग तुम्हें दिल लगी, लेकिन लेकिन क्या करे, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा वरना गाना आधा रुक जाएगा ना। बस बस बस वापस आती हूँ, और तब तक आप लोग ये सोचिए कि आज का डे स्पेशल क्यों है, कुछ तो आज सेलिब्रेट हो रहा है जो आपको मुझे फोन करके बताना है। ओके, विल कैच यू सून, बाय।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
16: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
17: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can

0: pressure, no confusion. Just smart choices.
1: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
4: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ा और चमक, थोड़ा और स्पार्कल ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज डू गो टू मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, क्योंकि उनके पास है अमेजिंग कलेक्शन फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स। यहां आपको मिलेगा आपका अपना परफेक्ट पीस, चाहे वो एंगेजमेंट के लिए हो, एनिवर्सरी के लिए हो, सेलिब्रेशंस, या फिर अगर आप खुद को एक ट्रीट देना चाहे, अपने लिए कुछ खरीदना चाहे तो भी आप जा सकते हैं। ये लोकेटेड है फ्रिस्को में और आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां आपको मिलेगा लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स और सब सारी ही डिटेल्स अबाउट मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द रिक्वेस्ट ऑफ मरियम एंड सोहेल एंड गोइंग टू प्ले द सॉन्ग दैट दे रिक्वेस्टेड।

देखिए, मोहब्बत की राहों का तो नहीं पता, लेकिन अगर आपकी राह है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप देख रहे हैं, अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का सोच रहे हैं, तो आपको माई टाइम इक्विटी को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। दिस इज लेड बाई CPA सुधीर पाई, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को एक बेहतर, एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज लेने में। तो अगर आपको चाहिए एक पर्सनलाइज सोल्यूशन विच इज डिजाइंड अराउंड योर गोल्स, आपकी जरूरतों के हिसाब से हो, तो फिर आपको माई टाइम इक्विटी को कॉल करना चाहिए 4697021272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज माई टाइम इक्विटी .com।

वैसे जब तक सुबह शाम है, हम एक ही चीज सोचते हैं, खाने के बारे में और क्या खाएं। ये सवाल तो इतना डिफिकल्ट होता है कि अब क्या बनाएं, नेक्स्ट टाइम क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। लेकिन अगर आपको चाहिए ऑप्शंस, अगर आपको ऐसी जगह जाना है जहां आपका टेस्ट बड्स भी हैप्पी हो जाए, जहां आपको ढेर सारे फ्लेवर्स मिले, जहां बहुत सारे डिशेस हों जिसको आप एंजॉय कर सके, तो आप पेस्ट्री ईटरी जरूर जाए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवरफुल चाट तक, और फ्यूजन बाइट्स से रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी मिलते हैं। गाइस अभी तो लंच का टाइम भी हो रहा है, आप अभी भी जा सकते हैं, और अगर अभी नहीं जा सकते तो डिनर में चले जाना, डेट नाइट पे चले जाना, फूडी मीटअप कर लो अपने गाय फ्रेंड्स और गर्ल फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे आप एंजॉय कीजिए यहाँ का फ्लेवर, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की वाइब्रेंट वाइब्स। कहाँ की? पेस्ट्री ईटरी की, जो कि लोकेटेड है एट हब 121। और आप और अगर एक्सप्लोर करना चाहें इनका मेन्यू या ओपनिंग या क्लोजिंग आवर्स, तो आप जा सकते हैं pastryeatery.com पे, जो कि है इनका ऑफिशियल वेबसाइट।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
18: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
17: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
18: वेट, व्हाट?
19: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
20: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
19: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
21: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
22: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
23: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
24: छोटा सा मेरो मदन गोपाल,
0: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.

अगर विशाल एंड शेखर खुद आपसे ये सवाल पूछेगी यू वांट टू बी माय चम्मक चलो, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स हाँ कहेंगे. एंड एंड एंड द अनाउंसमेंट इज कि भाई विशाल शेखर आ रहे हैं लाइव इन डैलस एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर सुपर हिट टूर. ये लोकेटेड है एट कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड और ये संडे को हो रहा है गाइस, इट्स ऑन जुलाई 12th और टिकट्स भी अवेलेबल हैं, ऑन सेल हैं. आप kashproduction.com पे जाके टिकट्स ले सकते हैं और अगर आपने कोड यूज़ किया फनेशिया का तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट और कोड एग्जैक्टली यही है फनेशिया, ठीक है. और अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे जो हमारा दूसरा गिव अवे है आज का नियॉन कैक्टस की तरफ से जो कि मिलेगा आपको $20 का डिस्काउंट ऑन द डाइन इन, तो मैं उसके लिए सवाल पूछने वाली हूँ और आपको जवाब देना है बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555. और इसके लिए ना मैं एक और विशाल शेखर का सुपरहिट सॉन्ग लगाने वाली हूँ और आपको बताना है कि इस मूवी के जो तीनों लीड एक्टर्स थे वो कौन थे. रेडी? नंबर तो आपको याद होगा ये 972-235-5555.

थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु कॉल्ड एंड आई एम रियली सॉरी मैं कुछ लोगों का कॉल नहीं ले पाई क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और सबने सही जवाब दिया है इसका. मैंने पूछा था कि ये जो सॉन्ग है देसी गर्ल जो मैंने प्ले किया था अभी उसके तीन लीड एक्टर्स कौन हैं और आप जवाब तो मैक्सिमम लोगों को पता है. देसी गर्ल तो अपने प्रियंका चोपड़ा ही है, जॉन अब्राहम है एंड अभिषेक बच्चन भी हैं और कुछ लोगों ने तो पूरी ही स्टारकास्ट बता दी मुझे कि भाई बॉबी देओल भी है, किरण खेर भी है. सो इट वॉज फन, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. और जो सबसे पहले आज के हमारे विनर हैं, जो सबसे पहले कॉल किया था जिन्होंने, वो हैं हर्षल शाह. सो हर्षल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल चुका है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड. और नियॉन कैक्टस इज सच अ ग्रेट प्लेस अगर आप मेक्सिकन फ्यूजन देख रहे हैं विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस, सो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई क्योंकि यहां मिलेगा आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जो भी हलाल ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी मिलेंगे वो भी पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर. और वाइब का तो पूछे ही मत, यंग है, कलरफुल है, मॉडर्न है, एनर्जेटिक है और परफेक्ट है हैंगआउट्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ चिल करना चाहते हैं तो भी आप वहां जा सकते हैं. इनका हैप्पी आवर्स भी होता है मंडे टू फ्राइडे और स्पेशल डील्स होते हैं. बेसिकली आप वहां जाएं और उनसे पूछें कि भाई आज का स्पेशल डील क्या है तो आपको बता देंगे.

हाँ हूँ मैं ड्रामा क्वीन, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो बड़ा मजा आता है ड्रामा क्वीन बनने में, आपको आता है कि नहीं पता नहीं। वैसे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ फ्रॉम द पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके साथ कितना टाइम बिताते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, और आप चैम्बर से निकल जाते हैं, क्लिनिक से निकल जाते हैं, और बाद में आपको याद आता है कि अरे यार ये चीज़ तो बताई ही नहीं, वापस जा नहीं सकते, यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग वगैरह का कितना ज़्यादा सीन है वो तो आपको पता ही है। लेकिन टेंशन नॉट, फिकर नॉट, क्योंकि पैशन हेल्थ केयर के पास ना अगर आप जाएंगे, वहां की अपॉइंटमेंट आपको 30 मिनट है, डॉक्टर के साथ आप लगातार बातें करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने हिस्टोरिकल जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब भी आप उनको बताएंगे, क्योंकि पैशन हेल्थ केयर का मानना है कि आपकी हेल्थ को थोड़ा और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफी ग्रो कर रहे हैं और उनको और से और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट चाहिए उनको अपने कम्युनिटी की केयर करने के लिए, तो वो हायर कर रहे हैं बेसिकली एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियंस है, कोई साइकेट्रिस्ट है, अगर कोई ऐसा है जिसको कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, या आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, या कोई ऐसा ग्रुप है जहां पे आप ये न्यूज शेयर कर पाए तो बिल्कुल कीजिए। उन्हें जाना है पैशन हेल्थ केयर फिजिशियंस @gmail.com पे अपना सीवी या रिज्यूमे भेज दे, या फिर टेक्स्ट करे @217-454-4639 इसके लिए, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। फिलहाल तो मैं आपको बुर्ज खलीफा दिला रही हूँ।

मैं अब इथे आके ज्यादा देर रह भी नहीं सकती, इसलिए मेरा जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बजने वाले हैं 2:30 और मेरा शो होता है 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक। लेकिन किरण जी को हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वो आने वाली हैं। एंड जो आज का शो था द आफ्टरनून अड्डा, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई AG फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। ये आपको दिलाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि यू नो बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं जिसको अभी तक आपने टैप नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स लेवल पे हो या फिर बिजनेस लेवल पे, तो AG फिनटेक्स को जरूर कंसल्ट करें। दे कैन बी रीच्ड एट 4699429888 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज agfintechs.com। और जाते जाते एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ छोड़ के जा रही हूं मैं आपको। टेक केयर।

0: पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: बेटा, 95% आए?
17: हाँ मम्मी।
16: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
18: मेरा?
16: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
18: वो
19: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
5: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 FM Fun HR Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है पांचों दिन. और जो स्पेशल बात, हर रोज लेके आती हूं एक नया फ्लेवर आपके लिए ताकि चीजें रहें हैपनिंग और एक्साइटिंग. और जी, आज वेंसडे है. आज का फ्लेवर क्या होता है? वी बिगिन विद सम रोमांटिक मेलोडीज और फिर 3 बजे से लेके और 4 बजे तक आपके लिए लेकर आती हूं पॉप फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम प्ले करते हैं कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. 3:30 से 4 इज योर फेवरेट सेगमेंट बिकॉज दैट इज व्हेन आई गिव यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास जो कि आपको देखने चाहिए. एटलीस्ट एक दो तो अपनी लिस्ट में आप उनमें से डाल ही लीजिए. ये वो ड्रामास होते हैं जो टीआरपी चार्ट्स पे टॉप रेटेड होते हैं, यानी कि पिछले हफ्ते कौन से ड्रामे ने ऑडियंस को किया सबसे ज्यादा महसूस, ये आपको बताया जाता है. और उसके बाद 4 से 5 तक लेकर आती हूं आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक्स, यानी कि सम अवार्ड विनिंग फिल्म्स एंड सम अवार्ड विनिंग म्यूजिक. ऑल दिस एंड मच मोर लाइंड अप हियर राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बट राइट नाउ इट इज रोमांटिक मेलोडीज विद मी.

रोमांटिक मेलोडीज का सिलसिला यहाँ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण पे जारी है. 3 बजे तक आपके लिए कुछ खूबसूरत रोमांटिक मेलोडीज एंड देन वी विल एंटर इनटू पॉप फ्रीक्वेंसी. बट बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट ब्यूटीफुल नंबर आई मस्ट टेल यू, अगर आप H1B, F1 या L1 वीजा पे हैं या फिर कोई भी और नॉन इमिग्रेंट वीजा है आपके पास एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US permanent residency, तो फिर the law offices of Seema Mehta are here to help you. Attorney Seema Mehta और उनकी experienced team specialize करती है exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas, साथ ही साथ family and employment visas, PERM यानी कि perm labor certification, as well as US citizenship. आपको कोई भी information चाहिए ये बात सुन के आपके जहन में कोई सवाल उठा है तो उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा by sending this email at the email ID जो मैं अब आपको दूंगी. That email ID is info at seemamehtalawfirm.com, which is SEEMAMEHTA lawfirm.com. Once again, that email ID is info@seemamehtalawfirm.com. कोई भी आपका सवाल for more information on the immigration process as well as on EB-5 investor visa program, please drop them an email. This is the law offices of Seema Mehta.

जरा हटके जरा बचके फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले करूंगी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोमांटिक मेलोडीज आजकल के जो पिछले 10 सालों में मैंने सुनी, मतलब वन ऑफ द नॉट दी बेस्ट, क्योंकि बहुत सारी दी बेस्ट तो बनती हैं, लेकिन एक ऐसी जो कि बंदा सुनता है और थोड़ा सा यू नो उसकी मेलोडी में गुम सा हो जाता है, क्योंकि इट इज रॉ, इट इज पीसफुल एंड इट इज एब्सोल्युटली हॉन्टिंग. दिस इज फ्रॉम गोलियों की रासलीला, रामलीला लाल इश्क़.

0: फिल्मी गाने के लिए।
1: और इसी के साथ, इस अगले गाने के साथ मैं आपको लेके जा रही हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आकर वी विल ऑफिशियली बिगिन आवर पॉप फ्रीक्वेंसी सेगमेंट, जिसमें हम कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक प्ले करेंगे। 3:30 से 4 तक मेरे साथ बने रहना, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेके आऊंगी आपके लिए द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स। यू आर ट्यून्ड इनटू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, राइट हियर विद योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
0: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
6: माई टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
9: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
10: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
13: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
14: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
16: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
17: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

पॉप फ्रीक्वेंसी में आपको वेलकम करती हूँ. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ये है मेरा और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम फन एजियो रेडियो. बिल्कुल चैनल मत चेंज कीजिए. यू आर एट द राइट प्लेस. आई हैव सो मच मोर फन लाइंड अप फॉर यू. 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ और हर आधे आधे घंटे में आपके लिए स्विच होने वाला है. जो कुछ भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, कुछ डिफरेंट एवरी हाफ एन आवर. और ये आधा घंटा हम पॉप फ्रीक्वेंसी करेंगे. अगला आधा घंटा मैं आपको बताऊंगी द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स, जिन्होंने मचा रखा है तहलका, ऑडियंस के दिलों को कर रखा है अपने काबू में. तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए लाइंड अप. और आज का जो पॉप फ्रीक्वेंसी है हम शुरू कर रहे हैं दी सेंसेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज हसन जहांगीर. क्योंकि आज 1 जुलाई को हसन जहांगीर करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट. 1 जुलाई 1962 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस अमेजिंग पॉप सिंगर, जो कि एक अर्ली आप कह लीजिए सिंगर्स थे, पॉप सिंगर्स ऑफ द कंट्री. और जाना जाता है उन्हें एज काइंड ऑफ अ माइकल जैक्सन ऑफ पाकिस्तान. तो लेट्स एंजॉय. आपने ये गाना जरूर सुना होगा, उनकी आवाज में नहीं तो किसी रेंडिशन में सुना होगा. दिस इज द एवर पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ हिस्ट्री. दिस इज हवा हवा.

0: more entertainment. Log on and subscribe.
1: अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है तो ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है. यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनी, एज वेल एज आपकी अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपकी तरफ से आपका केस फाइल करें एंड टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज और ऑल द निटिग्रिटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड अराउंड दिस सिचुएशन. And that attorney is attorney Umar Khwaja. Na sirf ye ki wo aapke liye behtareen aapka case fight karenge, balki he will get you the best compensation that you deserve. And the best part is ki aapko kuch pay nahi karna unko jab tak ki aap case jeet nahi jate. So this is an absolutely win-win situation for you. Wo jaise kehte hain na, is stressful situation mein ek rahat ki khabar aapko de rahi hoon. Aap ya someone you know is going through something like that, it is time to call attorney Umar Khwaja. That is the best thing that you can do for yourself or your loved one right now. That number for attorney Umar Khwaja is 469-300-5046. 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, दैट इज attorneyomar.com, विच इज OMAR, attorneyomar.com. ठीक है जी, ये तो हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. देखिए, फन एंटरटेनमेंट तो जिंदगी में चलता ही रहता है, लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट चॉइसेस इन द राइट डिसीजंस, एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर यू आर गोइंग थ्रू दिस, मेक द राइट चॉइस, गिव अटर्नी Umar Khwaja अ कॉल. और अब हम बात कर रहे हैं बैक टू हसन जहांगीर. हसन जहांगीर ने जो 1987 में ये ब्लॉकबस्टर गाना गाया था हवा हवा, दैट बिकेम एन इंटरनेशनल फेम. दैट सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज स्टिल समथिंग दैट पीपल रिमेंबर हिम फॉर. ही इज स्टिल एक्टिव, 1982 से एक्टिव हैं, और सितारा इम्तियाज और साथ ही साथ यू नो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं. एंड अनदर सॉन्ग दैट गेट गॉट हिम अ लॉट ऑफ रिकग्निशन वॉज हटो बच्चो, जो कि बड़ा ही मजे का गाना था और उस दौर के लिहाज से बड़ा मॉडर्न गाना था. तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, दिस इज हटो बच्चो.

0: जी हाँ, विशिंग हसन जहांगीर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आइकॉन विद द सॉन्ग हवा हवा. कुछ गाने होते हैं जो सारी उम्र के लिए अमर होते हैं, एंड दिस हवा हवा इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. हर जॉनर का बंदा, हर उम्र का बंदा, किसी भी किस्म का आपका शौक हो म्यूजिक का, हवा हवा कहीं ना कहीं आपको जरूर टच करेगा. सो वी हैव अनदर 10 मिनट्स और उसके बाद हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ. अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, और उससे पहले मैं आपको बताती चलूं जी कि मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर हमारी बात सुने, हमें टाइम दे. हमारा आधा मसला तो मुझे लगता है कि जब डॉक्टर आपको तहम्मुल से बैठ के सुन रहा होता है, दैट इज़ व्हेन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. सो पैशन, अब और कई बार हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिलते. सो मैं आपको बताती हूँ कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ऐसी ही जगह है जहाँ हर अपॉइंटमेंट 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल की जाती है, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम, एंड यू एज अ पेशेंट नीड समवन हु कैन सिट विद यू एंड लिसन टू योर प्रॉब्लम्स. इसीलिए बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, आपको फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ our community, passion health primary care is operating, and this is not just it, passion health primary care is growing as well. So agar aap patient nahi balki agar aap ek experienced primary care doctor hain, endocrinologist hain, pediatrician hain, psychiatrist hain, and you're looking for a full time or a part time opportunity, to phir passion health primary care is the place for you. Please join their team, send them your resume, their ईमेल आईडी, पहले ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जहां आप अपना रेज्यूमे या अपना इंटरेस्ट ईमेल भेज सकते हैं. दैट इज पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com. वंस अगेन, दैट ईमेल आईडी इज पैशन हेल्थ फिजिशियंस at gmail.com. You can also text your interest as well as your resume at this number. Number hai ji 217-454-4639. 217-454-4639 पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं. वंस अगेन, दैट ईमेल आईडी इज पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com. कोई आपका सवाल है, लॉग ऑन टू देयर वेबसाइट, दैट वेबसाइट इज पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज ऑफकोर्स देयर पैशन, एंड यू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ. Be passionate about it. They will be more passionate about it. Once again, that number is 214-666-6259.
1: Choice this evening. Do I sound a little cheesy?
2: Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance.
1: Oh, yeah.

0: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. Or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: Kyun?
2: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: Achha. तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
4: ये तेरा घर ये मेरा घर
5: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस आई एम नवनीता योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
0: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
7: इट्स लॉसन
6: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
7: इट्स लॉसन
6: डैडी व्हाट इज द लॉ
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 द ट्रैवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रैवल
9: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
10: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
13: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
12: नहीं
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है
12: नहीं
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
12: वो भी नहीं
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को
15: first ever authentic sattvic flavors with no onion and garlic
14: where every divine food is an offering open daily from 7 AM located at independence and eldorado श्री अयोध्या भवन where taste meets divinity
16: coughing or sneezing at home your air duct may be to blame and clogged dry vents can even cause fires duct time removes dust pollen allergens and lint giving you cleaner air better health energy savings and peace of mind serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Aur aage badhte hue, we are officially entering into our top trending dramas, TRPs ke lihaz se. Lekin usse pehle main aapko batati chaloon. If you're looking to buy, sell, or you're looking to relocate in DFW area, to phir Navneeta Khemka aapke liye maujood hain aapke real estate issues ko solve karne ke liye. Ji haan, Navneeta Khemka with Keller William Realty will guide you step by step. Throughout आपका जो प्रोसेस होगा उसको बहुत ईजी बनाने वाली हैं आपके लिए. पर्सनलाइज सर्विस देती हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एंड शी जेन्युइनली केयर्स. एंड आई नो शी जेन्युइनली केयर्स बिकॉज आई नो हर पर्सनली एंड शी इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सन. जरूर आप Navneeta Khemka से कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपका कोई भी बाइंग, सेलिंग या रिलोकेशन का आइडिया है इन DFW. बिकॉज every home has a story and let her help you create yours. Call Navneeta Khemka today. That number is 347-449-4242. 347-449-4242. Unka number, give her a call and you will definitely find the place you're dreaming about. Acha, isi ke saath ji, ye to hui aapke liye ye maze ki baat, aur is maze ki baat ke saath hum ja rahe hain top 10 trending dramas of last week, yani ke week of June 22nd till June 28th. दसवें नंबर से कहानी को शुरू करते हैं कि दसवें नंबर पे टीआरपी चार्ट्स पे कौन सा ड्रामा रहा. टेंथ पोजीशन पे रहा जी पहली बारिश, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे आता है फ्राइडेज को 8 बजे से 10 बजे तक. दो घंटे का ये ड्रामा होता है और अब तक अराउंड मेरे ख्याल द ड्रामा हैज 31 और 32 एपिसोड्स. इसका मतलब बस अब कंक्लूड होने ही वाला है बहुत जल्द, तो जरूर चेकआउट कीजिए पहली बारिश. नाइन्थ नंबर पे जिस ड्रामे ने जगह बनाई लास्ट वीक, वो अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स इज मिल्क जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है. एयर होता है जी आपके लिए, देखिए कौन से चैनल पे, जियो एंटरटेनमेंट पे ही हर रोज आता है. ये एक डेली सोप ऑपरा टाइप का ड्रामा है, 9 बजे शाम को आता है हर रोज. और इसमें हमें नजर आ रहे हैं मोहसिन अब्बास हैदर और सानिया शमशाद. इसी के साथ आठवें नंबर पे जिस ड्रामे ने इस हफ्ते अपनी जगह बनाई है, वो ये वो ड्रामा है जो कॉन्स्टेंटली टॉप 10 में रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे. एंड दिस इज मिर्जा की हीर, जो कि एक यू नो हीर इज अ प्योर हार्टेड यंग वुमन हु विशेस टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और शी फाइंड्स हर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इन मिर्जा. और यू नो उसके बाद क्या होता है और उनकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट आते हैं, और विलन ने तो आना ही आना होता है, मोहब्बत के दुश्मन तो हैं ही दुनिया में, तो वो जी आ चुके हैं विलन, और क्या होता है फिर आगे, यही कहानी है. हिना अफरीदी एज हीर एंड अली रजा एज तैमूर मिर्जा. और छठे नंबर पे, एक्चुअली सातवें नंबर पे जिस ड्रामे ने पिछले हफ्ते टीआरपी लिस्ट पे अपनी जगह बनाई, दैट इज हमराही. दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये ड्रामा जो कि आता है जियो एंटरटेनमेंट पे एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM. इट स्टार्टेड एट अ वेरी हाई नोट, लोगों को, पीपल हैड रियली हाई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज दानिश तैमूर का ड्रामा हो तो ये हाई एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं. सो इट इज स्टेड इन, मेरा ख्याल था कि ये ड्रामा टॉप 3 में ही रहने वाला है थ्रू आउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लक्चुएट करता है, ये नीचे चला जाता है, बट स्टिल इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स पोजिशन इन द टॉप 10 ड्रामाज थ्रू आउट इन ऑल द वीक्स. तो ये हुए आपके लिए द 7, 8, 9 and 10 ड्रामाज. अब जब हम इस गाने के बाद वापस आएंगे तो आई विल टेल यू अबाउट द 4th, 5th and 6th पोजिशंस.

जी हाँ, अब हम आ गए हैं छठे नंबर पे जिस ड्रामे ने टीआरपी चार्ट्स पे लीड किया लास्ट वीक, एंड दैट ड्रामा इज महनूर। ये भी एक डेली सोप ऑपरा टाइप का ड्रामा है, हर रोज आता है ये मंडे टू फ्राइडे 9 बजे शाम को ERY डिजिटल पे। खदीजा सलीम एज महनूर और हुमायूं अशरफ हैं इसमें, रुबीना अशरफ हैं। काफ़ी ज़बरदस्त स्टेबल स्टार कास्ट है और इसीलिए शायद वजह है कि लोगों को ये ड्रामा पसंद भी आ रहा है और बार बार आपको टॉप 10 में इसका नाम सुनने को मिल जाता है। पांचवें नंबर पे जिस ड्रामे ने पोजीशन हासिल की वो भी एक डेली सोप ड्रामा है जो कि हर रोज आता है शाम 7 बजे ERY डिजिटल पे, और उसका नाम है रहमत। ये एक ड्रामा है दैट फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है, हु इज सपोर्टिंग हर फैमिली आफ्टर हर फादर अबैंडन्स हर टू सीक अ मेल एयर। और फिर क्या होता है इस कहानी में और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ रहमत। और चौथे नंबर पे जिस ड्रामे ने पिछले हफ्ते अपनी जगह को बनाया टीआरपी चार्ट्स पे, ये ड्रामा आपको कॉन्स्टेंटली टॉप 5 में नजर आ रहा है, एंड दिस इज शेदाई। फिरोज खान के जो लॉयल फैंस हैं वो इस ड्रामे को टॉप 5 से एक्चुअली नीचे जाने नहीं दे रहे फिलहाल। फिरोज खान एज अली खान एज वेल एज सहर हाशमी एज मिराल, और सहर हाशमी आजकल आपको बहुत सारे ड्रामों में नजर आ रही हैं। आई थिंक शी इज हेयर टू स्टे अ वेरी पावरफुल परफॉर्मर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वॉचिंग हर। सो द ड्रामा इज डूइंग really good Wednesdays and Thursdays 8 p.m. for you at Geo Entertainment. I think 20 episodes ab tak ho chuki hain and the drama is at a quite critical stage. So ye tha aapke liye 4 5 6 and drama ka number, aur ab jab hum wapas aayenge to main aapko bataungi the top 3 trending dramas of last week. TRP charts pe wo kaun se drama the jinhone mere aur aapke dil ko chhu liya, yani ki humne itna mehsoos kiya ki humne unhe TRPs pe top 3 रखा।

Welcome back to the Drama Fever segment right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Top three dramas tak hum pahunch gaye hain. Teesre number pe TRP charts ko lead karne wala drama was Dr. Bahu. Mere khayal mein maine pehli hi baar Dr. Bahu ko teesre number pe dekha hai. Maybe it is one of the reasons ke ab drama almost wrap ho chuka hai aur log jo hain wo ikhtitam ko samajh bhi chuke hain ki kya hone wala hai. So jab cheezein ikhtitam ki taraf pahunchne lagti hain to shayad unka charm thoda sa kam hone lagta hai. That's the only reason I can see. Dr. Bahu जो है आपके लिए air होता है AR देखिए ARY Digital पे Fridays and Saturdays को 8 बजे और जहाँ तक मेरी मालूमात है बस अब इस हफ्ते Saturday और Sunday को आपके लिए actually Friday और Saturday को last 2 episodes air होने वाली हैं. The drama has wrapped up really brilliantly. जो reviews लोगों के हैं वो यही बता रहे हैं कि they are quite satisfied with how things have turned up in Dr. Bahu. अच्छा जी इसी के साथ second number पे जिस ड्रामे ने अपनी ये जो दो ड्रामाज हैं ये आजकल 1 और 2 की रेस में अब लगे हुए हैं और जिस तरह से दानियाल जफर ने इस ड्रामे को और सज्जल अली तो खैर हैं ही वो तो अपने कंधे पे पूरा ड्रामा लेके चलती हैं लेकिन दानियाल जफर हैज बीन एन एक्सट्रीमली आप कह लीजिए एक शॉकर की तरह सामने आए हैं एंड अ वेरी पॉजिटिव शॉक एक्चुअली. सो दिस इज जंजीरें जो कि हम टीवी पे आता है अराउंड 20 एपिसोड्स हो चुकी हैं. बहुत ही क्रूशल वैसे तो हर एपिसोड के बाद लगता है बड़ी क्रूशल स्टेज पर ड्रामा पहुंच चुका है पर अभी एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बड़ी क्रूशल स्टेज पे ड्रामा मौजूद है. सो अगर आपने जंजीरें देखना नहीं शुरू किया तो आई थिंक इट इज टाइम नाउ दैट एड इट टू योर वॉच लिस्ट एंड स्टार्ट वॉचिंग वन बाय वन. यू आर गोइंग टू हैव फन. और नंबर 1 पे जो ड्रामा है अनस और अंसा की केमिस्ट्री इज एब्सोल्युटली रॉकिंग. एंड अच्छा पहले मैं आपको बता दूं अनस और अंसा कौन है. ये ड्रामा जी फरहान सईद एज अनस एंड सना जावेद एज अंसा. दिस इज बस तेरा साथ हो. ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है ड्रामा. पिछले कई हफ्तों से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे इसने अपने आप को बरकरार कर रखा है. ऑन गोइंग ड्रामा है जो कि अनस की कहानी बताता है एक यू नो टिमिड एंड एन ऑर्फन यंग मैन हु हैज बीन मिसट्रीटेड बाय हिज रिलेटिव्स ऑल हिज लाइफ. और एक और लड़की अंसा की कहानी बताता है हु इज अ स्ट्रांग विल्ड वुमन हु एडवोकेट्स फॉर हिम एंड हेल्प्स हिम फाइट फॉर हिज राइट्स. वो अपने राइट के लिए भी लड़ती रहती हैं क्योंकि वो खुद भी अपनी फैमिली में इसी तरह का परेशानी बर्दाश्त कर रही हैं और इनके लिए भी लड़ती हैं. दैट इज हाउ द कहानी इज. शादी हो चुकी है दोनों की और अब कहानी क्या मोड़ लेने वाली है. रोज एक नया झगड़ा होता है घर में और एक नई कहानी इस्टेब्लिश होती है. आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर लविंग. दिस इज द नंबर 1 ड्रामा ट्रेंडिंग लास्ट वीक बस तेरा साथ हो. इफ यू हैवंट स्टार्टेड वॉचिंग इट आई थिंक इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट एटलीस्ट 1 or 2 ड्रामाज. दिस वॉज योर टॉप 10 trending dramas for last week according to the TRP charts right here exclusively on Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran.

0: And it is time now to connect you with our One World Business segment, जिसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शाहिद पंजवानी. काफी लोग जो है, शाहिद जी, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून.
1: थैंक्स फॉर हैविंग
0: मी. शाहिद जी, सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल ऑल अबाउट, और साथ ही साथ काफी सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना या फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फंडिंग कहाँ से आएगी और क्या होगा, थोड़ी सी रोशनी डालिए, हाईलाइट प्लीज.
1: वन वर्ल्ड बिजनेस कैपिटल, एज द नेम से साउंडेड, बिजनेस कैपिटल इज व्हाट वी डू. वी हेल्प इंडिविजुअल्स एज वेल एज बिजनेस ओनर्स जब उनको कैपिटल की जरूरत है, अगर बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस खरीदना है या एक्सपांड करना है, इधर वे वी कैन हेल्प देम गेट कमर्शियल लोन्स. एंड दैट्स, वी प्राइमरीली स्पेशलाइज इन SBA, विच इज स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और इफ अगर कोई SBA के लिए क्वालिफाई नहीं होता है, SBA के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर एनी रीजन दे डू नॉट वॉन्ट SBA, then we can also help them get a non-SBA, which is also known as conventional loan. So out and out commercial, land khareedna hai, rental property khareedni hai, business khareedna hai, existing business owner ho, working capital chahiye, whatever your commercial needs are, we can customize the loan based on your needs.
0: All right, perfect. और ये भी बताइए शाहिद जी कि बिजनेस लोन अप्रूवल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्रेडिट स्कोर, कोलैटरल या फिर कैश फ्लो?
1: मिथ ये है कि क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन आउट से आउट कि जब बिजनेस लोन आपको चाहिए, चाहे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो या चाहे आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, क्रेडिट इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी व्हाट एन अंडरराइटर इज लुकिंग एट. व्हाट अ लेंडर और व्हाट एन अंडरराइटर व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो और आप लोन चाहते हो, तो आपके बिजनेस में सफिशियंट कैश फ्लो होना चाहिए उस लोन को सपोर्ट करने के लिए. और इस क्रेडिट के मिथ की वजह से काफी लोग हेजिटेंट होते हैं कि या तो ये अज्यूम कर लेते कि वो क्वालिफाई नहीं होंगे, या वो ये इस चक्कर में कॉल ही नहीं करते कि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत लो है और मैं क्वालिफाई नहीं होंगे, बट हालांकि उनके बिजनेस में सफिशियंट कैश फ्लो होता है. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि आपका 800 का स्कोर है लेकिन कैश फ्लो नहीं है, तो आप क्वालिफाई नहीं होने वाले हो. लेकिन अगर आपका स्कोर 600 है लेकिन आपके बिजनेस में इनफ कैश फ्लो है टू सपोर्ट दी लोन पेमेंट, देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर द लोन. सो प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट क्रेडिट स्कोर, कॉल अस, विल गो वन ऑन वन कंसल्टेशन, लुक एट योर कैश फ्लो, लुक एट योर PNL, एंड देन वी कैन हेल्प यू डिटरमिन कि आप कितने लोन के लिए, अमाउंट के लिए क्वालिफाई होते हो. सेम रूल अप्लाइज, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, अपने क्रेडिट स्कोर की फिक्र मत करो, उस बिजनेस का PNL मांग लो सेलर से, ब्रोकर से.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform, real-time rate कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट MyFamilyHomeLoan.com और कॉल 469 734 3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke नए DFW स्टोर्स मिड-सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
10: जीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
11: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
11: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
10: और एंटरटेनमेंट
11: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
10: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
11: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
12: इस शहर को हुआ क्या कहीं पे अंधविश्वास का काला साया कहीं पे काला जादू धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का
13: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
14: विजिट psychicramnath.com कॉल 469-347-4401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स नॉट जस्ट दैट फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
19: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
20: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
19: Kya matlab?
20: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
19: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
20: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
19: Ab to karna hi padega, madam.
21: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
22: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
18: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
22: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
18: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
22: सच में सब संभाल लेंगे
18: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
23: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. सुन रहे हैं आप मेरे साथ यानी के किरण और जी ये तो रेडियो स्टेशन हम सबका फेवरेट 104.9 FM Fun Asia पे कनेक्टेड रहिए, बने रहिए, क्योंकि अब जो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ वो सुन के आपको होने वाली है बहुत खुशी. और वो क्या है जी? जी हाँ, एक कॉन्सर्ट का टिकट गिव अवे जो मैं आपके लिए लेके आऊंगी एक्सक्लूसिवली ऑन Fun Asia Radio. और सबसे पहले तो आपको बताऊं कि कौन सा कॉन्सर्ट है ये. अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं, गानों के फैन हैं, अच्छे गानों के फैन हैं, या फिर इस जोड़ी के फैन हैं, या किसी एक के फैन हैं, इन दोनों में से सब कुछ के लिए आपके लिए आ रहे हैं विशाल एंड शेखर, द ड्यूएबल बिहाइंड सम ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड हाइलाइट्स, सुपरहिट सॉन्ग्स. और ये है जी द सुपरहिट टूर एंड इट इज कमिंग टू डैलस फॉर यू. विशाल और शेखर आपके लिए यहाँ मौजूद होंगे संडे जुलाई 12th को एट द कर्टिस कलवल सेंटर जो कि गार्लिन में लोकेटेड है. और टिकट्स ऑलरेडी सेल पर जा चुके हैं. cashpatelproductions.com पे आपको लॉग ऑन करना है, KASH cashpatelproductions.com एंड बाय योर टिकट्स नाउ. एंड जब आप चेकआउट कर रहे हो तो बिल्कुल मत भूलिए Fun Asia प्रोमो कोड यूज करना, FUNASIA. और क्या मिलेगा आपको? 30% ऑफ मिलेगा आपको वेन यू विल यूज द प्रोमो कोड Fun Asia एट योर चेकआउट एट cashpatelproductions.com. और अब मैं लेकर आई हूं आपके लिए ये गिव अवे. दिस गिव अवे इज गोइंग टू बाय यू और गेट यू वन फ्री टिकट टू द कॉन्सर्ट. तो आप इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और ये बताइए कि विशाल शेखर आपके फेवरेट क्यों हैं, कौन सा आपको स्टाइल. वैसे तो उन्होंने रोमांटिक गाने हो, एक्टिव गाने हो, हैपनिंग गाने हो, लड़ाई झगड़े वाले गाने हो, हर तरह का गाना विशाल शेखर ने कंपोज किया है, विशाल ने गाया है, शेखर ने गाया है. तो मुझे बताइए कि विशाल शेखर आपके फेवरेट क्यों हैं. और बेहतरीन जवाब को मिलेगा ये एक टिकट राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग दिस वन टिकट फ्रॉम फॉर द कॉन्सर्ट ऑफ विशाल एंड शेखर संडे जुलाई 12th. आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि व्हाई डू यू लाइक विशाल एंड शेखर सो मच. Fun Asia रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: Hi, my name is Rosina.
0: Hi, Rosina. Bataiye, what is, why are they your favorite, or why do you want to go to the show?
1: Because they are really entertainer. मुझे बहुत अच्छा लगते हैं. और ना वो जज भी जो बनते हैं, I think विशाल है, I think शेखर, I am not sure the name.
0: जी जी.
1: जो जिसके हेयर नहीं है.
0: विशाल. विशाल. जी.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो जिस तरह वो लोगों को कमेंट करते हैं, ऐसा आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, तो उसका मुझे वो चीज बड़ा अच्छा लगता है कि वो हमेशा नए लोगों को चांस दिया करते हैं.
0: आपने बिल्कुल सही कहा, ही इज अ ब्रिलियंट जज ऑन इंडियन आइडल. एंड थैंक यू रोजीना, प्लीज सुनते रहिए. इफ यू आर द विनर आई विल आस्क यू टू गिव मी अ कॉल बैक. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट जी, कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं. यू वांट टू बी अ विनर फॉर दिस टिकट, गिव मी अ कॉल 972-235-5555. Fun Asia Radio, अपना नाम बताइए.
2: हाय, माय नेम इज मनीष.
0: जी मनीष, बताइए.
2: Yeah, I think they are one of my favorites. The reason being, they are very consistent. Mm-hmm. They're very unique. And they have, as I said, yeah, they're very consistent. They have given like one of the best melodies out there. They are original, which is like most of their music is very original. The way they started, it's the uniqueness, the originality is very clear. So of course, they're my favorites.
0: That is a brilliant, brilliant explanation of Vishal and Shekhar. Manish, thank you so much. Sunte rahiye. If you are the winner, I will ask you to give me a call back. Guys, you have to keep listening to me because if you miss this opportunity, the ticket is gone. I will announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
3: Aftab baat kar raha hoon.
0: Ji, bataiye Aftab saab.
3: Vishal Shekhar, one of the greatest singer as well as music director. तो और जैसे कि मैं वैसे पाकिस्तान से हूँ तो हमारी उनको लाइव देखना इट्स एन अचीवमेंट.
0: यस फॉर श्योर. Lovely, lovely. Aftab, thank you so much for your call. Please sunte rahiye. If you are the winner, I will ask you to give me a call back. Fun Asia Radio, you are live in air. What is your name?
4: Hi, my name is Kunal.
0: जी कुनाल, बताइए.
4: So I think both Vishal and Shekhar, they are different backgrounds se hain. And Vishal, basically he used to play from Indian rock and Shekhar is basically he's do most of the time is the classical soft, bland, emotional, and जो उनका combination होता है it's like a completely different background. Vishal is a powerhouse, Shekhar is mostly piano and vocal, so that's make it more unique and more favorable.
0: Absolutely. That is a brilliant definition of Vishal and Shekhar Kunal. Thank you so much for telling us why you like them. Please sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. RIG, we are going on a short song break. Is gaane se jab hum wapas aayenge, ye gaana bhi Vishal aur Shekhar ka hi banaya hua hai, to main is silsile ko continue karungi. You want to win the ticket? Give me a call and tell me why Vishal and Shekhar are your favorite.

0: फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: हेलो, माय नेम इज मोनिका, हाउ आर यू?
0: वेरी गुड मोनिका, बताइए.
1: यस, सो आई रियली लाइक देम बिकॉज दे हैव बीन देयर फॉर लॉन्ग, मोर देन 20-25 प्लस इयर्स, एंड आई रियली लाइक देयर सॉन्ग लाइक द बेशरम सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पठान. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर देम लाइव, सो आई रियली लाइक देम.
0: Brilliant. Thank you so much, Monica, for your call. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. RIG, we are still in the process of giving out one ticket to Vishal Shekhar's concert, which is happening on Sunday, July the 12th at Curtis Culwell Center. Buy your tickets at cashpatelproductions.com. Fanisha Radio, you are live on air. What is your name?
2: जी, मैं सईदा बोल रही हूँ.
0: जी बताइए.
2: ये विशाल एंड शेखर बहुत ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनर हैं और सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर, और उनके बहुत फिल्म के साउंड ट्रैक्स भी हैं और गाने बहुत जबरदस्त हैं. धूम अगेन के देसी गर्ल, शीला की जवानी, चमक चलो,
0: बिल्कुल सही
2: जी. और ये उसमें भी आते थे, जज भी बनते हैं लोग शोज में.
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल
2: जी. और बहुत
0: परफेक्ट, थैंक यू सईदा जी.
2: इनका प्रोग्राम देखना हम लोग के लिए खुश नसीबी होगी.
0: चलिए जी, दैट इज अमेजिंग. थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन का. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. ऑलराइट जी, दिस इज द लास्ट कॉलर. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
3: नितिन.
0: दोबारा बोलिए.
3: नितिन.
0: जी नितिन, बताइए.
3: हाँ जी, बात तो अभी मतलब बता सकते ना उनके लिए कभी खत्म हो गया.
0: नहीं नहीं, आप बताइए, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
3: विशाल शेखर के लिए मैं एक ही बताऊंगा कि एज ए ह्यूमन बींग दे आर बेस्ट, बिकॉज दोनों जजिंग करते जो रियलिटी शो में वो तब दिखता है उनकी ऑनेस्टी और हेल्पिंग नेचर, इमोशनल समटाइम्स दे आल्सो इमोशनल विद द पीपल. एंड सेकंड थिंग, दे आर सिंगिंग ऑल टाइप्स, दे आर इमोशनल एंड पेट्रियोटिक, जिससे वाले जितने भी है सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स, एवरीथिंग. सो एक एंजॉयबल पार्टी होती है वो, अगर उनके जो भी गाने हैं वो अच्छे कंपोजर भी है. दैट्स ऑल.
0: Perfect. Thank you, Nitin. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner in a bit. All right, that was all the time I had for this giveaway. Agla giveaway, agle show mein aapke liye Fanisha ye tickets leke aata hi rahega. So, you know, if you cannot participate in this one, we will have another opportunity for you. Ab main aapke liye gaana laga rahi hoon aur ab main winner decide karne wali hoon. Aapka math formula mein dal ke jawab niklega aur kis tarah se hoga. Aur phir main aapko announce karungi. Sunte rahiyega. Agle 5-4 minute bahut crucial hain kyunki it might be योर नेम जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ. अच्छा, अभी मैंने आपको गाना सुनाया विशाल शेखर का बनाया हुआ चमक छल्लो, एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर का गाना था, हैपनिंग पार्टी, यू नो, एक्साइटमेंट. और अब मैं आपको सुनाऊंगी उनका गाया हुआ और बनाया हुआ एक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, जो कि मेरी रोमांटिक गानों की लिस्ट में हमेशा टॉप 10 पे रहता है. बने रहिए मेरे साथ.

और जी लकी विनर निकल आया है नाम, और आज के हमारे लकी विनर हैं मनीष. मनीष अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो सो दैट आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन फॉर यू टू अटेंड द कॉन्सर्ट. एंड टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड, बहुत बहुत शुक्रिया. इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज अभी अगले 5-6 दिन फन एजा आपके लिए लेकर आता रहेगा. स्टे ट्यून्ड.

0: जी हाँ जी, ये जबरदस्त गाना सुन रहे थे आप, प्रोड्यूस एक्चुअली कंपोज्ड फॉर यू बाय विशाल शेखर। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पे जाते हुए आपको बताऊं कि अगर आप देख रहे हैं यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी और साथ ही साथ फ्रेश गन्ने का जूस, तो एक अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है, दैट इज फूडिस्तान इन ऑबरी। फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग देसी ऑल इन वन प्लेस, और खास तौर पे ऑफर करते हैं लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज, और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles। तो मतलब देर इज नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विद इट। फूडिस्तान आप जरूर विजिट कीजिए, और आपके लिए फूडिस्तान की तरफ से एक गिव अवे लेके आने वाली हूँ, और वो गिव अवे आएगा ब्रेक के बाद। सो बने रहिए मेरे साथ, यू विल हैव अ चांस टू विन समथिंग एक्सक्लूसिव फ्रॉम फूडिस्तान राइट हियर, स्टे ट्यून्ड।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: जा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
16: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
15: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
18: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
14: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
0: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
19: कैसे?
0: पेज 3 ईटरी?
19: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
0: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
19: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
2: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.sanadainc.com today.
0: Zindagi
13: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
20: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia, 104.9 FM.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में अभी मेरा और आपका साथ अराउंड 20-22 मिनट मजीद बाकी है. लेके आई हूँ आपके लिए वेदर अपडेट के वेदर कहाँ स्टैंड कर रहा है. और आज वेंसडे है जी, July 1st, 4:38 PM इन द स्टूडियो. एंड वेदर इस वक्त सिटी ऑफ मेकिनी का है 93 degrees. हाउ एवर इट फील्स लाइक 98 राइट नाउ. दिन रहा सनी, हाईज इन द मिड 90s, काफी गर्म दिन है बाहर. और शाम रहेगी क्लियर विद lows in the upper 70s. Pollen count aaj ka 5, which is medium, jabki UV index is 11, which is extremely high. Keep your sunscreens handy if you're planning to go outside, walk outside, jo bhi aapki sham ki activities hain, keep yourselves hydrated, which is very important. Sunrise aaj ka hua 6:20 AM, 6:20 AM, aur aaj ka sunset hoga 8:39 PM. This weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

और ब्रेक पे कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था कि फूडिस्तान की तरफ से एक गिव अवे आपके लिए लेकर आएंगे, एंड दैट इज यू कैन विन अ फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, जो कि एक अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट है लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी. तो अगर आप जीत जाएंगे तो आपको इस लोकेशन पे जाना है टू गेट दिस फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान. और आपको क्या मुझे बताना है, क्या जवाब देना है, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से रिपीट करती चलूं कि फूडिस्तान में आपको ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस और भी बहुत कुछ मिलता है, अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही साथ यू नो हर तरह का खाना और पीने का एक्सपीरियंस मिलता है और शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी मिलता है. दे ऑफर लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन एन ऑर्डर ओवर $30 विद इन 5 miles. तो अब मैं आपके लिए जो गाना प्ले करने वाली हूँ, आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि ये एक रीमिक्स गाना है, यानी कि न्यू रेंडिशन है इस गाने की. आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि ये गाना कौन सी फिल्म से ओरिजिनली लिया गया, यानी कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें ये गाना सालों पहले आपको सुनाई दिया था. फिल्म का नाम और साल ऑफ रिलीज, यानी कि ईयर ऑफ रिलीज एंड द नेम ऑफ द फिल्म, यू हैव टू टेल मी. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

जी हाँ, गाना ये तो आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, लेकिन आपसे सवाल किया था कि इस गाने को ओरिजिनली कौन सी फिल्म में पिक्चराइज किया गया था, और जी ओरिजिनली ये गाना लिया गया था मूवी जवानी दीवानी से, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, और इसे डायरेक्ट किया था नरेंद्र बेदी ने, रणधीर कपूर और जिया बच्चन पे था ये गाना पिक्चराइज, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी दैट वाज टेकन फ्रॉम. सो द आंसर इज जवानी दीवानी 1972. और हमारी जो आज की लकी विनर है वो है नेहा कार्निक. नेहा कंग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट लोकेटेड इनसाइड फूडिस्तान इन Aubrey. Thank you so much, guys. And now it is time to give you the currency update. US dollar kahan stand kar raha hai? Euro is trading at 0.87 right now, jabki British pound is trading at 0.75. Indian rupee 95.45, jabki Canadian dollar 1.42. Pakistani rupee is waqt trade kar raha hai ji 278.22 pe, jabki Nepali is rupee 152.75 पे ट्रेड कर रहा है. इसी के साथ बांग्लादेशी टका 123.22 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

0: And with that, it is a wrap from my side. I will see you tomorrow. Same place, same time. Bani rahiye mere saath. This is Sunehri Kiran.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Ye set sirf shaadi ke liye theek hai. Ye wala bahut heavy hai. Aur ye kab pehna tha last time?
9: To pehenti kyun nahi ho?
8: Kaise pehnu? Ya to heavy ya fir special occasion type.
9: तो रोज वाला ले लो.
10: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: It's Lawson.
11: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
12: It's Lawson.
11: Daddy, what is the law?
13: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
14: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को.
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
14: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
16: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स, रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स? मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न. आरती वेदुला, अ सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड कोच, हैज हेल्प्ड कपल्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
17: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
18: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
17: नहीं.
18: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
17: नहीं.
18: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
17: वो भी नहीं.
18: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
19: Mamu, देखो क्या हो गया.
2: ओ, क्या हो गया?
19: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
2: ओए, जर्मन का कमाल है.
19: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
2: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
0: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
12: coughing or sneezing at home, your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
20: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
21: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
22: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
23: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. Namaskaram, Assalamualaikum, Satsriyakal, Kem Cho DFW, Majama, Yali Madad Sabko Ji. You're listening to your evening drive time show right here on Fun Asia Radio. 104.9 FM, bringing the community together. It's 5:07 in the studio clock, 5:07. और ये height भी है मेरी, 5:07. काश को छोड़ो, काश को क्या करना, काश पटेल आपको याद रखना है, cashpatelproductions.com पे अवेलेबल है टिकट्स फॉर विशाल एंड शेखर. दिस इज योर वेरी ओन शो. इफ यू सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी खुशी की बात आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर खुशी. ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock. नए गानों की, अच्छे गानों की रिक्वेस्ट हमेशा ऑन होती है जी मेरे पास. एंड अगर वैसी कोई बात आज करना चाहते हैं मेरे साथ शेयर, आई एम ऑल इयर्स फॉर यू. लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विद दिस नेक्स्ट ट्रैक लाइंड अप फॉर यू, चको. एक फेवर करना यार मेरे को आप लोग, यार किसी के पास तमीज का नंबर है तो मेरे को भेज दीजिए प्लीज. वो काफी लोग कह रहे थे मार्विन तमीज से बात किया करो. Slow.

This part of the show is brought to you by attorney Omar Khwaja. If you are ever involved in an accident, please, please remember this name. वैसे तो दुआ करते हैं हम कभी भी आपको accident, slip and fall में ना आना पड़े, but अगर by chance ये चीज़ हो जाए, कहीं नीवी मिर्ची किसी और का काम कर गया, तो आपको अपने पास एक नाम याद रखना है, अटर्नी ओमर उनका नाम है. द वेबसाइट इज attorneyomar.com एंड ही इज समबडी हु विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. चाहे आपको इंश्योरेंस कंपनी से डील करना है या आपके मेडिकल बिल्स हैं, गाड़ी का रिपेयर है, दे कैन हैंडल इट ऑल. योर स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली टेकन अवे एंड फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर दिस नेम इन योर माइंड, अटर्नी ओमर या फिर अटर्नी ओमर ख्वाजा. बट ऑन द वेबसाइट इट्स वेरी सिंपल, इट इज attorneyomar.com. यू नो, एक बाबा जी थे, वो कहते थे उनकी सारी दुआएं ना जो भी लोग उनके पास आए करते हैं वो कबूल हो जाती है. एक ने दुआ मांगी कि वो सदा मुस्कुराता रहे, आज वो पागलखाने में. दूसरे ने दुआ मांगी कि दुनिया में मतलब मेरे इशारे पे ही चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है. तीसरे ने दुआ मांगी कि ज़िंदगी में फूल ही फूल हों, आज वो स्कूल में माली है. चौथे ने दुआ मांगी कि सदा चमकता रहूं, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है. अगर आपको भी ऐसे बाबा जी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास आ जाइएगा, आई हैव हिज नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मेरा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सीधा कॉल करें एंड अपनी अपनी दुआएं उन तक पहुंचाएं, फिर देखिए क्या होता है. और नहीं कुछ तो जिंदगी में मज़ा ही आएगा. जिंदगी इज गुड, यू जस्ट नीड टू एंजॉय इट. लाइक दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट इज कमिंग अप एंड दिस इज द ट्रैक दैट हैज बीन क्वाइट पॉपुलर फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊँगा. और इस गाने के बाद मैं भी आऊँगा.

0: It is totally okay not to be perfect. It is okay to make mistakes. It is okay to do something that you haven't done before. Because if we don't do those things, we will never grow. कई बार हम ये सोचते हैं यार कि मैं क्या मैं कविता लिख सकता हूँ, can I write poetry? हम लिखना शुरू करते हैं फिर कहते हैं छोड़ दे यार, हमारे बस की बात नहीं है. अरे ट्राई तो करो, कोशिश तो करो. एंड वन यू डू द कोशिशें, वो कोशिशें कामयाब होती हैं भैया. एंड अगर आपसे कोई गलती हो गई है लाइफ में, उसको कोसते क्यों रहते हो, काश मैंने वो गलती ना की. अरे वो तो हो चुकी है. यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड चेंज इट. वॉट यू कैन चेंज इज द फ्यूचर. वॉट यू कैन चेंज इज टूडे. वॉट यू कैन चेंज इज योर नेक्स्ट वेरी मोमेंट. सो इट इज़ ओके अगर आपने गलतियाँ की हैं. मैंने बहुत की हैं, अभी भी करता हूँ, कई बार होती हैं. बट दैट्स द ह्यूमन इन अस. वी आर नेवर परफेक्ट, बट वॉट वी कैन ट्राई टू achieve is to do something better with the next very moment that we have. Taking you to the next track, bahut chala tha ji ye gana bhi. Govinda was a little out of work that time, but Salman got him back with Katrina Kaif. Sajid Wajid ka music. This is Pomp.
1: What an idiot. God, what is he doing? God. Cool.

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
3: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
2: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेज है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
8: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
8: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
9: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: Hello Texas Parivar, kya aapko pata hai there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
11: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस.
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
14: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.

आप लोग अगर मूंगफली खरीदने जाते हो ना, मूंगफली, और मूंगफली खरीदते वक्त अगर आप एक दो खोल के उनको खाते खाते रेट नहीं पूछते ना, हाँ भाई मूंगफली कैसे लगाई, तो बाय गॉड आप असली देसी नहीं हो, आपके संस्कार खत्म।

0: हमारा सभ्याचार हमारे जो पूर्वजों ने सिखाया है वो यही सिखाया है कि भैया जब भी मूंगफली लेने जाओ रेडी वाले के पास, पहले जाके थोड़ा चक्कर लगाओ इधर उधर उसके पास, फिर जाके मूंगफली उठाओ, उसको तोड़ो, कट कट कट दो चार दाने खाओ, बात करते करते एक पहले खानी है, उसके बाद उससे बात करनी शुरू करनी है जब आप दूसरी उठा रहे हो, और फिर उससे पूछना उसको तोड़ते हुए, हाँ भाई कैसे लगाई। ये होता है प्रोसेस मूंगफली खरीदने का।
1: बिंदास है रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है।
0: मेरे को ना सब्जी मंडी में बहुत ले जाया गया है, क्योंकि एक तो ये था कि बड़े भैया जो थे वो मतलब हैं वो एस्मेटिक हैं, तो वो बहाना उनका ये था कि मुझे मिट्टी बड़ी चढ़ती है, तो बस बचता मैं था। तो दूसरा वजह ये थी कि मुझे मटन खाना बड़ा अच्छा लगता था, तो दादा जब हमारे लेके जाते थे हमें सब्जी मंडी, तो उनके पास कैनेटिक होता था लाल कलर का, उसको हम कहते थे लाल परी, तो लाल परी पे मैं जाता था दादा के साथ अपने कैनेटिक पे, सब्जी भी लेते थे और साथ में उसके बाद मीट लेते हुए घर आते थे। उसके बाद जब दादाजी चले गए तो पिताजी को रोल मिला जी सब्जी का, अब उन्होंने फिर मुझे देखना थैला लेके मैं उनके साथ साथ। तो मेरे बाप की ना आदत है कि जब भी उन्हें सब्जी लेनी है ना, उन्होंने हर दुकान पे रुक के देख के मतलब चुन चुन के सब्जी, यानी कि डाल दो ना ना ना, भिंडी भी उठाएगा तो एक एक कच्ची भिंडियाँ मेरे को बताते हैं ऐसे तोड़ के देखा हर कच्ची होती है। तो ये मूंगफली लेने वाला प्रोसेस मैं वहीं से सीखा हूँ। अब वो कच्ची मूंगफली भी लेने जाते हैं ना बाय चांस, अभी भी पटेल ब्रदर वगैरह में जाता हूँ मैं, यहाँ पे किसी ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ, इंडिया बाजार में जाता हूँ, वहाँ जाके मैं पहले कच्ची मूंगफली को खाता हूँ, दो तीन पीस लेने नहीं होते मुझे, बस वैसी। It's 5:27 in the studio clock. अगर आपके पास भी कुछ ऐसी यादें हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं शेयर 9722355555। और जो मज़ा बाई गॉड मंडी में जब जाते हो आप, सब्जी मंडी में स्पेशली, वहाँ पे जब आपको मूंगफली गरम गरम मिले एक तो उसका मज़ा, कहीं अगर बेर वाला बैठा हो, वो लाल बेर होते हैं ना छोटे वाले, वो बैठा हो और काला नमक वो अपने लगा के दे मसाले उस पर, या फिर छल्ली का भुट्टा जो है, भुट्टा यू नो छल्ली होती है, भुट्टा छल्ली का भुट्टा नहीं होता, भुट्टा छल्ली इज द सेम थिंग मार्विन, हाँ वो जो छल्ली होती है ना वो ताज़ी ताज़ी बनवा के वहाँ पे कोयलों पे खाई जाए वहीं पे, और वहीं उसका गंदा वाला नींबू का रगड़, मज़ा उसी में है लाइफ का। खैर आप फिलहाल इस गाने को इंजॉय करें, मैं आया वापस आपके पास व्हाइल आई टेक योर कॉल्स अबाउट योर सम मेमोरीज ऑफ सब्जी मंडी या छल्ली या पकौड़े वाले अंकल। आ जाओ करते हैं बातें कुछ।

0: स्वीटी तेरा ड्रामा और ड्रामे जो होते थे ना, मैं बड़ा मजा लेता था सब्जी मंडी में। मैं क्या करता था कि सब्जी मंडी में ना किसी को दूर से देखा मैंने, जैसे अब मेरे को मस्ती सूझ रही है क्योंकि कुछ और करने को है नहीं मेरे पास, पापा सब्जी ले रहे हैं, तो मैं ना किसी के भी जाके ना सिर पे या पीछे गर्दन पे ना थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ मार कहता था, ओए राकेश तू यहाँ क्या कर रहा है। जैसे उसने घूमना घूमना मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी सर, सॉरी राकेश नहीं, सॉरी सॉरी, गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज शिवानी।
0: आई शिवानी, शिवानी जी कैसी हैं, आपकी क्या है कहानी शिवानी?
1: एकदम बढ़िया। और मुझे तो एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि जब भी सब्जी लेना है या कुछ भी शॉर्ट ट्रिप में कुछ लेना है तो आई यूज्ड टू हैव अ मोमो शॉप नियर माय प्लेस। सो मोमो वाज माय मिनी लंच और मिनी डिनर एवरी टाइम।
0: मोमो का लंच? अच्छा, जो मोमो खाती थी आप वो मेयोनीज और लाल चटनी के साथ था कि सिर्फ लाल चटनी के साथ?
1: बिल्कुल मेयोनीज लाल चटनी दोनों। और समहाउ मुझे फ्राइड मोमोज बिल्कुल समझ भी नहीं आते। स्टीम इज द बेस्ट वन, सो पनीर मोमोज ऑसम।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मोमोज और मंडी की बात, ये कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग फनेजा।
2: हाय मार्विन।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? ज्योति जी। ज्योति जी कैसी हैं?
2: बस सब ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया हैं, बढ़िया हैं। ज्योति जी आप बताइए क्या चक्कर है, मंडी गई हैं आप कई बारी सब्जी लेने माँ बाप के साथ?
2: हाँ जी, मेरे को 3-4 किस्से याद है, टाइम हो तो मैं बता दूंगी।
0: एक ही बताइए फटाफट, बेस्ट वाला, उसमें से सब सुन रहे हैं।
2: अच्छा, मेरे पापा कहते थे कि आप जैसे अगर 1 किलो चीज लेनी हो ना तो आधे किलो दो बार थोड़ी ज्यादा ज्यादा मिलती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो ठीक है उनकी, क्योंकि वो जो कांटा होता है वो जब देख लेते हैं आधा किलो हो गया तो 1-2 दाने और ऊपर से बरसाते हैं। बहुत बढ़िया, देख लो क्या क्या टैक्टिक्स सीखने को मिलते हैं आपको फनेजिया रेडियो से। रेडियो का वॉल्यूम कम कर ले अपना, बढ़ा लें। गुड इवनिंग, हु इज दिस?
3: हाय, दिस इज प्रिया हियर।
0: हाय प्रिया, हाउ आर यू?
3: I'm good, how are you? मेरी आवाज सुन के आपकी आवाज में क्या चमक आई है।
0: अरे ये बस मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को जब जहाँ से चमकीली आवाज दिख जाए मैं वहाँ चमकीला हो जाता हूँ। बस अमर सिंह चमकीला नहीं बन सका, वो दिलजीत भाई ले गए, कोई बात नहीं। आप बताइए कैसी हैं और कोई आपकी खास एक्सपीरियंस सब्जी मंडी या रिलेटेड या कोई स्नैक आइटम, कुछ मसालेदार चटपटा?
3: मसालेदार चटपटे से याद आया, तो जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं क्लासेस वगैरह जाया करती थी तो मैं मतलब अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है पर पानीपुरी वॉज माई गो टू थिंग। और मेरा एक भैया अंकल फिक्स थे, वो मैं दूर से जैसे उनके तरफ वॉक करके जाती थी वो प्लेट निकाल के खड़े हो जाते थे कि हाँ भाई मेरी रेगुलर कस्टमर आ गई। एंड शी ही न्यू कि मेरे को कौन से टाइप की चाहिए, कितनी मीठी कितनी तीखी, तो वो एग्जैक्टली देते थे। तो मैं क्लासेस से आते हुए कॉलेज से आते हुए तो खाते हुए आती थी, फिर मम्मी के साथ भी अगर मैं सब्जी वब्जी लेने गई हूँ तभी भी खा लेती थी।
0: क्या बात है जी, पानी पूरी की शौकीन थी आप, कितने गोलगप्पे खा लेते थे आप एक बारी में?
3: वैसे मेरी एपेटाइट इतनी नहीं है बट 2 प्लेट तो खा ही लेती थी।
0: वाह वाह वाह वाह, खाते जाएं ना गिने, खाते जाएं बस ना गिने, खाते जाएं और मजे लेते जाएं जिंदगी की, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है प्रिया जी, और उसमें अगर अपने मन के प्रिय काम नहीं किए तो क्या किया यार, कुछ नहीं किया। चलो जी एक गाना और उसके बाद आता हूँ आपके पास, एंड विद दैट सॉन्ग राधा एक गिव अवे है मेरे पास, एक्चुअली 2 हैं आज। पहला तो है जी मिराज लाउंज, जो आपको दे रहा है $20 ऑफ विद देयर $50 बिल, और दूसरा आ गया है मेरे पास, दिलों को छाम के बैठ जाइए क्योंकि विशाल और शेखर की टिकटें हैं जी मेरे पास। यस आई हैव अ टिकट ड्रैगन गिव अवे फॉर विशाल एंड शेखर, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून ना थोड़ी देर, क्यों नहीं, अभी के लिए वो जो आती नहीं वो जो जाती नहीं पता नहीं काय को। अब मेरे को ये बात नहीं समझ आती, खेतों में रात को काय को आपने बुलाना है? एक तो रात को खेतों में लाइट नहीं होती, और लाइट नहीं होती तो कहीं गोबर गोबर पे पैर आ गया तो अलग परेशानी।

काटी रात इन्होंने खेतों में, वो आई नहीं बिकॉज उसके पहले एक्सपीरियंस हो चुका है। रात को खेत में जा रही थी, वहां से एक तो गोबर आ गया नीचे पैर के और चप्पल में सारा लिपट गया, उधर से एक उसने काला सांप देख लिया था जाता हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, अब मैं खेतों की तरफ नहीं जाऊंगी, तो सॉरी बॉयज, दिस थिंग इज नॉट गोन हैपन फॉर यू, बट व्हाट्स गोन हैपन इज दैट आपके पास एजी फिनटेक्स का नंबर नहीं है, तो ले लीजिए मेरे से, बिकॉज दिस इज वन नंबर दैट यू नीड टू रिमेंबर। दीज आर द पीपल दैट विल मेक श्योर कि आपके टैक्सेस बिल्कुल सीधे साधे तरीके से किए जाए, एंड उसके साथ साथ दे विल मेक श्योर दैट दे मैक्सिमाइज योर टैक्स बेनिफिट्स व्हाइल रिड्यूसिंग योर टैक्स लाइबिलिटीज। agfintax.com इज दैट वेबसाइट, दैट्स agfintax.com। एंड विद दैट आई डू हैव गिव अवे कमिंग अप, एक्चुअली चलो कर ही देते हैं आज। मैं गाना लगाने वाला हूँ, आपको बताना है कि ये जो गाना है ये किसने गाया है। इफ यू गिव मी द राइट आंसर यू गेट योर सेल्फ वन क्या $20 off $50 bill at Mirage Hookah Lounge. This is in McKinney, right on the McKinney Ranch Parkway. तो आप अगर मिकिनी जा सकते हैं, यू लाइक सम हुक्का एंड गुड फूड, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। आप जीत सकते हैं मेरे से $20 ऑफ योर $50 बिल। कुछ भी लीजिए, हुक्का लीजिए, खाना लीजिए, $50 का बिल आएगा तो $20 आपको ऑफ मिलेंगे, एंड दैट इज अ ग्रेट डील। वंस अगेन लोकेटेड इन मिकिनी, आई एम आस्किंग यू हु इज दिस पर्सन वॉइस दैट सिंगिंग दिस ट्रैक 972-235-5555। And I'm talking about the male voice, okay?

0: हुकम मेरे आका,
1: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
0: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
0: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता
8: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: I've been researching retirement planning.
14: Oh really? Where?
13: Google, YouTube, a guy on TikTok.
14: Or you could just talk to WealthActive.
13: What's the difference?
14: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
6: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
15: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
16: हाँ जी, तो गाना मैंने लगाया था ये वाला और मैंने पूछा था कि इसको गाया किसने है, तो एक लेडी आई, उन्होंने बोला सोनू निगम। मैंने कहा सोनू निगम मतलब? सोनू निगम तो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इस आवाज़ के साथ, बट मैं फिर से आवाज़ सुनवाता हूँ, आपने बताना है किसकी बात कर रहा हूँ। हु सिंगिंग दिस ट्रैक, द मेल वॉइस? ऑलराइट।

एक्चुअली जो बात है उनकी वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो जो आवाज़ है वो सोनू निगम की ज़रूर है। तो ये जो गाना है ना, एक्चुअली इसको गाया दो आवाज़ों ने, एक है सोनू निगम, दूसरे हैं जी ये वाली आवाज़ जो आप अब मुझे बताइए, क्योंकि इसमें भी दो सिंगर हैं बट इसमें वो आवाज़ फिर से है जो पहले वाले में थी। अब आपको बताना है कि वो दो आवाज़ें सेम जो आ रही हैं वो कौन सी है। Here we go.

0: तो एक तो आवाज है मोहम्मद अजीज साहब की, दूसरी आवाज कौन सी है जो कि भारी आवाज स्टार्टिंग में भी थी, एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, वो पूछ रहा हूँ मैं। देखते हैं हमारे साथ कौन है। गुड वाला इवनिंग टू यू फनीश। रेडियो रेडियो का वॉल्यूम कम, आपका वॉल्यूम ज्यादा। कैन यू मेक आउट द टू सेम वॉइस इन द टू ट्रैक्स? सुदेश भोसले कहते हैं आप। आर यू एबल टू गो टू मकीनी? हुक्का शुक्का एंजॉय करते हैं आप?
1: Yeah, we can definitely.
0: All right. And what is your name?
1: Gaurav.
0: गौरव भैया मुबारक हो। इट इज इंडीड सुदेश भोसले, जिनकी आवाज यूजुअली अमिताभ बच्चन साहब की मिमिक्री करने में भी लगी। एंड दैट वाज बोर्न ऑन टुडेज डेट, आज उनका जन्मदिन भी है। आप मेरे लिए होल्ड कीजिए, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन। बट बोर्न ऑन टुडेज डेट 1 जुलाई 1960 सुदेश भोसले साहब की थी वो आवाज, जिन्होंने बहुत सारी एक्टिंग करी है अमिताभ साहब की आवाज में एज अ वॉइस एक्टर, एंड बहुत सारी फिल्मों में काम किया। इवन संजीव कुमार साहब के लिए डब भी किया व्हेन ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन। तो जो आवाज संजीव कुमार जी की है उस फिल्म में, वो आधी उनकी अपनी थी और बाकी थी नन अदर देन मिस्टर सुदेश भोसले साहब। आज इनका जन्मदिन है जी, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड सुदेश भोसले साहब का ये एपिक गाना आप कंटिन्यू करिए, मैं आया वापस।

0: ऑलराइट, इस कॉन्टेस्ट में दो विनर सेलेक्ट करने हैं हमने। सेकंड नंबर पे कौन है मेरे साथ? गुड इवनिंग टू यू फनीजिया, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज दिवेंद्र। गुड इवनिंग।
0: दीपेंद्र, दिवेंद्र,
1: दिवेंद्र,
0: दिवेंद्र साहब, डू यू नो द नेम ऑफ द टू वॉइसेस दैट आई जस्ट मेड यू हियर फ्रॉम टू डिफरेंट सॉन्ग्स? क्या आपको मालूम है?
1: यस सर, वन इज फ्रॉम द मेजर साहब अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन, मेजर साहब को अमिताभ बच्चन ने गाया? आर यू श्योर?
1: वॉइस तो उन्हीं की है, एक पंजाब वाला, आई थिंक दैट इज द सॉन्ग, राइट?
0: वॉइस उनके जैसी है।
1: Then okay, I know that person, but I can't remember his name. I know that.
0: कभी कभी blank हो जाता है इंसान जब वो नाम सामने ही हो पर गुमनाम हो जाता है. But I appreciate you calling. Good evening, Fanisha. Radio volume low, please. Your volume up. Can you put your radio volume low? Can you put your radio volume low? अब मैं मतलब बहुत प्यार से बोल के यही बातें 10 बारी, 15 बारी, 20 बारी, एवरी डे, एवरी टाइम, तो चौथी पांचवी बारी मैम गुस्सा आ ही जाता है. आप भी अपने हस्बैंड को या भाई को या जीजा को, जिसको भी बाल बुलाती होगी, सुनो सुनो सुनो, फिर वो नहीं सुनते, फिर आप चिल्ला के बोलते ना सुनो, तो प्लीज ऐसा मेरे साथ मत किया करो, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लिया करो. आपका नाम क्या है ये बताइए?
2: सोनल.
0: सोनल जी, सोनल जी कैसी है? सब ठीक है?
2: हाँ सब ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ. आपने फाइनली बॉम्बे साइड पे सोनल खोल ही दिए, बारिश हो गई वहाँ? सोनल जी,
2: सोनल, हाँ
0: मैं वही कह रहा हूँ, सोनल, सोनल, सोनल.
2: एक्चुअली मैं जहाँ जाती हूँ बारिश हो ही जाती है. मेरी शादी के दिन बारिश हुई, बेबी बॉर्न हुआ तब बारिश हुई, नया घर लिया तब बारिश हुई.
0: ओए शाबाश, क्या बात है. मतलब कहीं ना कहीं आपका वो मल्हार राग से रिलेशन,
2: इंद्र देवता प्रसन्न है,
0: आपकी आवाज में मल्हार राग बरसता होगा शायद, ये बात है. अच्छा अब ये बताइए कि जो दो आवाजें सिमिलर थी, सोना सोना और ये वाले गाने में, वो कौन सी थी?
2: सुदेश भोसले.
0: वेरी गुड. मिकिनी जा सकती हैं?
2: हाँ जी,
0: होल्ड द लाइन फॉर मी. यस, सुदेश भोसले साहब थे. जो दूसरे भाई साहब ने मुझे कॉल किया था, देवेंद्र भाई, वो जो नाम आप ढूंढ रहे थे उसको बोलते हैं सुदेश भोसले. एज अ वॉइस ओवर एक्टर ही इज डन मेनी वॉइसेस फॉर अमिताभ बच्चन, इंक्लूडिंग वन फॉर संजीव कुमार साहब इन द फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन. फॉर नाउ इट इज टाइम टू टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक. हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर सुदेश भोसले फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास. चलो अगले गाने की तरफ ले चले, ये लीजिए.

सोनल जी, व्हाई डिड यू हैंग अप माय फोन? आई नीड योर इन्फॉर्मेशन। कॉल कीजिए वापस। आज ना सोया सारी रात दिल मेरा। कंग्रेचुलेशंस सोनल एंड गौरव भैया जो जीते जी, ये हमारी तरफ से मिराज लाउंज का $20 ऑफ देयर एनी $50 बिल व्हेन यू गेट टू मिराज लाउंज एंड रेस्टोरेंट।

सोनल बारिश करवाने वाली 972-235-5555 इज द नंबर टू क्लेम योर गिफ्ट फ्रॉम मिराज लाउंज एंड रेस्टोरेंट. Alright, with that, let's move on to one more track. इसके बाद लेंगे छोटा सा commercial break. But the gana that I want to play for you is a very beautiful सा गाना यार. इस गाना जो I think the music and the way आतिफ भाई sang this song is fantastic. और वही गाना मैं आपके सामने कर रहा हूँ जी. This is Jal Pari. I just love this track and I hope that you enjoy it. सुनो इसको, break के उस पार आता हूँ वापस with tickets available for Vishal and Shekhar जो आप जीत सकते हैं.

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
7: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

क्या आप गर्मी से परेशान हैं? क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर हाँ तो मैं क्या करूं, मैं कौन सा सीजन लेने बैठा हूं, मैं भी गर्मी से परेशान हूं यार। बाई गॉड, ऐसी गर्मी चल रही है ना बाहर, इस पूरे हफ्ते जो टेम्परेचर है ना उन्होंने पटाखा बजा के रखा हुआ है। मतलब फाइनली बड़े लोग कह रहे थे ना गर्मी आ नहीं रही, टैक्सेस की गर्मी आ नहीं, ले लो टैक्सेस की गर्मी के मजे। अब ना कहना कि भाई टैक्सेस की गर्मी जा नहीं रही, जा नहीं रही। 93 डिग्री इज द करंट टेम्परेचर, टुडेज लो वाज 78 कहीं देखने को मिला था, टुमारो वी आर लुकिंग एट 94 फॉर अ हाई, परसों 95, सैटरडे 95, संडे 92 एंड द होल वीक आफ्टर दिस इज ऑल्सो 90s। मैन ये गर्मी बहुत सताए है रे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड आपके लिए लेके आए हैं जी, एक बढ़िया सा शोरूम। और अपने जो मलाबार की खासियत है ना, वो डील्स बड़ी अच्छी लेके आते हैं आपके लिए। दे आर ऑफ कोर्स समबडी हुज बीन इन दिस फील्ड फॉर अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इफ यू आर लुकिंग टू ऐड अ लिटिल मोर स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, देन हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन, फ्रॉम ब्यूटीफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डैजल नेकलेसेस, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, फाइंड द परफेक्ट पीस। चाहे एंगेजमेंट करवा रहे हो, एनिवर्सरी पे जाना हो, किसी सेलिब्रेशन पे आपको जाना हो, भाभी वो पुराने सेट पहन पहन के ना आजकल बोर हो चुकी हैं, और आपको पता है ना वो पिछली बारी उन्होंने फोटोग्राफर इतने अच्छे रखे थे कि उन्होंने हर सेट की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू सेट, एंड भाभी गोल्ड इज ऑलवेज गोना अप्रिशिएट। कितनी बार अच्छी बात, मतलब जस्ट लाइक ट्रंप, मैं भी अच्छी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्ड जो है वो कभी डिप्रिशिएट नहीं करेगा दीदी। तो आप फटाफट से हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लीजिए या अपना भी ले लीजिए, उनको बोलो कि मैं जा रही हूँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड, इंजॉय सम शॉपिंग इन फ्रिस्को, एंड डोंट फॉरगेट डाउनलोड द मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ऐप। एक गिव अवे की बात की थी जी मैंने, जिसकी खुशी में अगर सही जवाब देंगे आप तो आपको मिलेगा जी एक इनाम, एंड दैट इज टिकट टू द विशाल एंड शेखर कॉन्सर्ट ओपनिंग हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ जुलाई विच इज संडे। आपको ये कॉन्सर्ट बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। विशाल एंड शेखर आर द पीपल बिहाइंड बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस 12 जुलाई एट द कर्टिस कलवेल सेंटर। टिकट्स आर अवेलेबल एट cashpatelproductions.com, that is cashpatelproductions.com, and when you use code funasia you get 30% off. Now is the opportunity for you to win a ticket, and that ticket is absolutely free. फ्री का टिकट है, और उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। मुझे कॉल पहले ही करे जा रहे लोग, जब आप ऐसा करते हो ना पहले ही कॉल करने लग पड़ते हो तो आप फिर आपका नंबर और पीछे चला जाता है, इसलिए पहले क्वेश्चन सुनो उसके बाद आप मुझे कॉल करके जवाब दीजिए। ऑलराइट, आज ही के दिन इन द ईयर 1979, आज ही के दिन इन द ईयर 1979 अ वॉकमैन, जो वॉकमैन था जिसमें कैसेट डलती थी, अ पोर्टेबल कैसेट प्लेयर इन बिकेम एन इंटरनेशनल सेंसेशन एंड द डिवाइस चेंज द वे पीपल लिसन टू इट। आई वॉन्ट टू नो द ब्रांड ऑफ द कंपनी दैट फर्स्ट ब्रॉट अ वॉकमैन आउट टू पीपल ऑन द 1st of July इन द ईयर 1979। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ब्रांड और द कंपनी दैट मेड द फर्स्ट वॉकमैन दैट केम आउट इन द ईयर 1979। एंड ये कोई है हमारे साथ, इनसे बात कर लीजिए। रेडियो का वॉल्यूम कम अपना ज्यादा। कौन बोल रहे हैं? ये आपके पीछे सर डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं ये सवाल थोड़ा आपको मैरिनेट होने देता हूँ। मैं चलता हूँ एक गाने की तरफ और उसके बाद आता हूँ वापस टू यू। वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे ऑफ एन अमेरिकन हिप हॉप आइकन। आई एम गोना प्ले हर ट्रैक व्हाइल यू थिंक कि वो वॉकमैन कौन सी कंपनी ने बनाया था जो आज ही के दिन पहली बार दुनिया ने दर्शन किए

0: आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डिवाइस, वो जो छोटा सा आईपॉड, या एप्पल आईपॉड वॉज द वन दैट हैड म्यूजिक इन इट. सो आई थिंक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस कम एज वी पास्ड डाउन द ईयर्स, बट सोनी वॉज द फर्स्ट वन दैट ब्रॉट दैट वॉकमैन आउट. और उसके साथ हेडफोन्स होते थे, वो ऊपर हैंडल होता था उसके, एंड देन दे वुड जस्ट कम अप टू योर ईयर्स. दे वुड कॉल द ओरिजिनल हेडफोन्स, उसके बाद ईयरफोन्स, एंड देन ईयर प्लग्स. बट नॉनदलेस इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर सम ऑफ द ओल्डन डेज. हियर वी गो विद वन मोर ट्रैक. इसके बाद ले रहे हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. रिया चक्रवर्ती इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, एंड दिस ट्रैक इज फ्रॉम हर मूवी विच वॉज, गाने फिल्म का नाम क्या था बताता हूँ, सोनाली केबल, दैट वॉज द नेम.
1: रघु
2: सोनाली दत्ताराम तांडेल
0: कैसी

0: राजकुमार रघु का हाथ मेरे हाथ में 20 साल से है। बस अब इस हैंडशेक को ना नाम देना बाकी।
1: प्यार करता हूँ तेरे से।

0: मामू देखो क्या हो गया।
1: ओ क्या हो गया?
0: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
1: ओए जर्मन का कमाल है,
0: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
1: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
2: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
10: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड Realtor with Keller Williams Realty. I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
5: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
13: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।